0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: हरे कृष्णा, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM। भगवत गीता हमें स्वास्थ्य के बारे में भी एक बहुत सुंदर बात बताती है। स्वस्थ शब्द का अर्थ क्या है? स्व में स्थित होना। इसीलिए अगर स्वास्थ्य सही से समझना है तो स्व की परिभाषा को समझना आवश्यक है। भगवत गीता हमें बताती है कि जो हमारा शरीर है ये एक समय बाद समाप्त हो जाएगा। इसीलिए ये शरीर हम नहीं है, ये केवल एक गाड़ी है और इसके ड्राइवर हम हैं जो कि आत्मा है। अर्थात कि हम स्व से समझ सकते हैं कि स्व हम आत्मा के प्रकार हैं। सो भगवत गीता हमें बताती है स्वास्थ्य की सही परिभाषा। स्वस्थ अर्थात स्व में स्थित होना। स्व में स्थित होने के लिए हमें स्व को जानना बहुत आवश्यक है। स्व अर्थात मैं। अब ये मैं क्या है? अगर मैं को शरीर माने तो एक दिन ये शरीर समाप्त हो जाएगा। मैं को मन बुद्धि माने तब भी जीवन के समाप्त होने पे ये समाप्त हो जाएंगे। परंतु अगर इस स्व को हम आत्मा माने जो कि कभी जिसका नाश नहीं होता, ऐसी आत्मा सही में स्व है। तो स्व में स्थित होने का अर्थ है कि हम आत्म साक्षात्कार के लिए कार्य करें। अर्थात कि अपने को जीवन के कर्तव्यों के साथ साथ अपनी आध्यात्मिक चेतना पर भी कार्य करें। इससे हम हमेशा स्वस्थ रहेंगे, तनाव से मुक्त रहेंगे। हरे कृष्णा।
2: अमृत बाणी हर हर तेरी, तेरे मिठे मिठी बाणी, तेरी मिठे मिठे बोल दाता।

ये जन्म सफल होएगा। एक दिन आना और जब कबाड़ खोल देना मेरी ये तीसरी अख खोलो ये भी खुल जानी है, ये सहसरा चक्कर खोलो ये भी खुल जाना, ये सुषमनी नाड़ी खोलो ये भी खुल जानी है, ये भोले पाच। बड़ी सोहनी कबीर साहब ने बात कही है अपनी बाणी च, वो कहिंदे ने रब नूं ढूंढिया नहीं लभ सकदे तुसी, ओदी कृपा हुंदी है वो मिलदा, वो किदां कहो कबीर भगत कर पाया भगती करनी पैंदी, भोले पाए मिले रघुराया भोले पाच लेना पैंदा, भोले भाव च चलाकियां चतराइयां नहीं, भोलिया पा महाराज जी तुही मैनूं मिलना, मैनूं तां रस्ता ही नहीं पता मैं कित्थे जावां, मैनूं तां टिकाणा ही नहीं पता मैं कित्थे जावां।

आवाज मारो मारा इन आ जाओ प्रभु, अही उड़ीक रहे हैं, तड़प रहे हैं, तेरी यादा आ रही ने, राती सोने हैं। तो ये देखो सारे, आप बताओ मुझे, आप सब लोग इतना घूमते हो, इतना खाते पीते हो, सब जगह जाते हो, कभी कभी किसी खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट, कभी कहीं जाते हो, कभी किसी शहर जाते हो, कभी घूमते हो फिरते हो, जहाजों की सैर करते हो, नए नए कपड़े खरीदते हो, शादियों ब्याहों में जाते हो, फिर भी आपका मन उदास है। पूछो क्यों मन उदास है आपका? मन तो खुश होना चाहिए था। क्यों उदास है मन? पति आपके साथ है, बच्चे आपके साथ हैं, फिर भी आपका मन उदास है। क्यों है उदास मन? क्यों अंदर रोने वाला मन है, रोने जैसा मन है? क्यों? ओ बिछड़िया हुआ, बहुत जन्म बिछड़े थे मन नहीं, हे प्रभु बिछड़े हो तुम।

कोई नहीं बिरथा जा सकता, मालो माल करके भेजना मेरे महाराज ने। तुम जो घर जाना तुहाडे घर भर जाने ने रहमतां नाल, क्यों तुम मेरे गुरु की शरण में बैठे हो, मेरे गुरु ने तो दृष्टि पा के मालो माल कर देना है।

सुनन नाल चार पौड़ियां गुरु नानक देव जी सच्चे पातशाह ने सुनन ते लिखियां ने जपजी साहब जी दे नाल। क्यों? एक पौड़ी कहती है सुनिए सत संतोख ज्ञान। सुनन नाल किनू? सुनन नाल उस पार ब्रह्म परमात्मा ने उरे बारे गल करन नाल रब परमात्मा हरी वाहिगुरु ए उस मालक दी गल करन नाल सुनिए सत संतोख ज्ञान। संतोख आवेगा, ज्ञान आवेगा, सुख आवेगा। सुनिए 68 का इशनान, 68 तीर्थ दा फल मिलेगा। सुनन नाल सुनिए पढ़ पढ़ पावे मान। जिहड़े लोग पढ़ नहीं सकते, अनपढ़ नहीं पढ़ सकते, उन्होंने पढ़न वाला मान मिलेगा। नहीं ने पढ़ते कई बार वो भी मान मिलेगा सुनन नाल। पढ़न तो भी चंगा सुनना है। सुनिए लागे सहज ध्यान, ध्यान लगन लग पे। अख बंद करोगे रब नाल जुड़ जाओगे सुनन नाल। हुण सुन ही रहे हो तुसीं ते जुड़े कि नहीं जुड़े? ध्यान लगन लग पे क्योंकि रब दीआं गल्लां हो रहीआं। जिथे रब दीआं गल्लां होणा ते रब आ जांदा, फिर अपने नाल जोड़ लैंदा। सुनिए लागे सहज ध्यान, नानक भगता सदा विगास। सुनिए दुख पाप का नास। सुनन नाल दुख मुकदे ने, पाप भी मुकदे ने। किन्नू सुनना? किन्नू सुनना? उस पार ब्रह्म बारे जिथे ओदी गल हो रही होवे, जिथे रब की कथा हो रही होवे, जिथे रब की गलबात हो रही होवे, उथे सुनना। मेरे हर प्रीतम की कोई बात सुनावे, मेरे हर प्रीतम की, मेरे हरी की कोई गलत करे,

मेरे वाल है जो तू मेरे नाल है महाराज जी ता क्या मुछंदा मुछंदे का मतलब है मेनू मोहताज मैं किसी का क्यों बना मैं किसी को क्यों मंगा जो तू मेरे कोल है मैं तेरे को ही मंगना मैं तेरे अगे हाथ अड्डने ने महाराज तू ही दो मेनू है ना मोहताज नहीं मैं बनना दुनिया का इस शब्द का बड़ा सुंदर जिक्र आता है जो महाराज नाल हुंदे ने फिर की हुंदा है।

ये जिहड़े शब्द ने लक्ष्मी तोट ना आवई खाए खर्च रहंदा, जिन्ना मर्जी खर्ची जाओगे जदों गुरु नाल आ गया रब नाल आ गया तुहानूं पैसे की कमी नहीं आनी। याद रखना ये वेख लो फरमान है महाराज का हुक्म है। लक्ष्मी तोट ना आवई, लक्ष्मी मतलब पैसा, लक्ष्मी दी तोट नहीं आती किन्हां नूं जिहड़े मनुख अपने गुरु दे नाल प्रभु दे चरणां च बैठे हुए ने। खाए खर्च रहंदा, खर्ची जांदे ने खाई जांदे ने तां वी कमी नहीं आउंदी।

ये वैरी मित्र सब कीते हैं। वैरी महाराज जी जो नाल आ जान किसी नाल भी दुश्मनी ना रखना, सब नू अपना मित्र बना लो। सारे मेरे मित्र ने, किसे ना मेरा वैर विरोध नहीं, कोई भी लड़ाई नहीं किसी ना। जे लड़ाइयाँ हैगियां भी ने तां भी खत्म कर लो कि हुण महाराज जी दे नाल आ गए हाँ, महाराज के चरणी आ गए हाँ। तो जिहड़े महाराज नू प्यारे ने तुहाडे सारे महाराज, तुहाडे ते सारी दुनिया प्यारी है, तो साढ़े भी प्यारे ने, है ना। कोई वैर विरोध नहीं रखना। महाराज कहिंदे वैरी मित्र सब कीते हाँ, ना ही मंगे मंदा। मैं मंदा भी नहीं मंगना, ये नहीं वैर नहीं तो सड़ना भी नहीं कि तरक्की क्यों कर गया, ये मेरा भरा तरक्की क्यों, मेरी भैन तरक्की क्यों कर गया, मेरा ये क्यों तरक्की कर गया, वो भाई क्यों तरक्की कर गया, वो बंदा क्यों तरक्की, मेरा पड़ोसी क्यों तरक्की, सड़ना भी नहीं। ये चीज़ां याद रखने वाली ने, जो रब नाल जां तू मेरे वल है तां क्या मुँह छंदा। महाराज जो तुम मेरे नाल हो फिर मैनू की करना है, वो दस रहे ने महाराज जी।

ये सिमरन ही काम आना है। ये जो हुण तुसीं सिमरन कर रहे हो ना सारे कट्ठे होके, जो तुहाडे ते औखी घड़ी आउणी है, कोई मुसीबत आउणी है, कोई दुख माड़े समा आउणा, माड़ा दिन आउणे ने, ये सिमरन काम आउणा। उदों तुहानूं इन्हें जान बचाउणी है सिमरन ने। सत

जा हर बख्शंदा, जदों हरी ने बख्श दिता, बख्शंदा मतलब हरी हरी कर लिया, गुरु दे कोल बैठ के की कीता, वाहेगुरु वाहेगुरु की है, हरी हरी करना, रब रब करना, वाहेगुरु वाहेगुरु करना, ईश्वर ईश्वर। जदों मारे कहते लेखा कोई ना पूछे, लेख पलट दिते मारे ने, लेख बदल दिते सारे मारे ने, नहीं लिखिया तो लिख के विखा दे, मैं रब तेनू ता मनना, मेरा मेरा विछड़िया गुरु मला दे, मैं रब तेनू

भगवान दो जिक्र आए। इस पौड़ी दे अंदर पंचम पातशाही दा शब्द है। महाराज जी कहंदे ने आनंद पया सुख पाया। कदों आनंद आया, कदों सुख मिलिया, जा महाराज कहंदे मिल गुरु गोबिंदा। मैनू गुरु मिल गया ते मेरा भगवान मेरा प्रभु मिल गया, मेरा वाहिगुरु मिल गया। देखो उदो सुख मिलता है, उदो आनंद मिलता। आनंद पया मेरी माए सतगुरु मैं पाया। जो गुरु मिल जाता है आनंद।

सबे काज सवारी है। हुण इस पंक्ति ते महाराज कहिंदे ने सब काज सवर जांदे ने, जां तुद पावंदा जो तेनू पा गया, मैं तेरा बन जा तेनू मैं पा गया, सारे काज तू सवार के रख देने, सब कुछ ठीक कर देने। ते तुसीं महाराज दे क्यों नहीं तुसीं लड़न लगदे? कहो महाराज जी अहीं की लेना इधर उधर, जां तू मेरे वल है, तू मेरे वल है, मैनू किसे

0: Hi, this is Sharmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.
1: जिस प्रकार एक मोमबत्ती बिना आग के नहीं जल सकती, उसी प्रकार व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन के बिना अधूरा है, ये कहना है भगवान गौतम बुद्ध का। नमस्कार, मैं हूं गगन और आप सुन रहे हैं शारदा सवेरा, सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.
2: हरे कृष्णा, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा। आज मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कि भगवद गीता एक बहुत सुंदर चीज हमें बताती है। यह हमें बताती है कि आप जीवन में कभी भी आपका रिजल्ट आपके कंट्रोल में नहीं है, परंतु हमारे साथ एक छोटी सी परेशानी है कि हम रिजल्ट के लिए ही कार्य करते हैं और इसीलिए आगे जाके फ्रस्ट्रेशन मिलता है। जैसे कि किसान अपना खेत में बीज बो सकता है परंतु वो वर्षा नहीं ला सकता। इसीलिए हम अपने कर्म को बहुत ईमानदारी से कर सकते हैं परंतु जो रिजल्ट है वो भगवान फाइनली हमें देते हैं। इसीलिए मैं आपसे एक छोटी सी बात कहूंगा, इसको हमेशा याद रखें कि डू योर बेस्ट एंड लेट कृष्णा डू द रेस्ट। हरे कृष्णा।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया, फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
4: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशाद 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजेइंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: So, where are you? The world is here at Sharda University.
4: Sharda School of Media, Film and Entertainment, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
5: राम राम दोस्त, राम सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं गगन आपके साथ, वो गगन जो हमेशा गगन को छूने की बातें किया करता है, दिलों को जीतने की। मैं कोशिश करता हूं अपने इस खास प्रोग्राम के माध्यम से, इसका नाम है बिंदास सुबह, बिंदास बोल, बिंदास बातें। मंडे टू सैटरडे सुबह 9 से 10 लाइव में रहता हूं आपके साथ। कोई शख्स अगर आपके इस घर में आ रहा है, आंगन में आ रहा है, लेकिन उससे पहले उसकी कामयाबी के चर्चे चहुंओर हो जाते हैं, तो निश्चित तौर पर कोई चर्चा, कोई खास विषय जिस पर बहुत सारी बातें होने वाली है, तो बहुत अच्छा लगता है कि कोई हमारे साथ आज जुड़ रहा है। विषय ही कुछ ऐसा है, विषय है खोजी पत्रकारिता, यानी कि इसके विषय में जानने में, सुनने में बहुत अच्छा लगता है। और कौन शख्स हैं, कौन शख्सियत हैं, तो थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा। 1.5 दशक से ज्यादा समय से आप पत्रकारिता में सक्रिय तौर पर काम कर रहे हैं, और आपका जो अनुभव है, जी न्यूज के साथ आप जुड़े रहे हैं, न्यूज एक्सप्रेस के साथ जुड़े रहे हैं, न्यूज चैनल है, डीडी न्यूज है, और तमाम सारे चैनल्स के साथ बहुत बड़ा अनुभव के साथ आप आते हैं, आप हैं। और वर्तमान समय की अगर मैं बात करूं तो न्यूज 18 में आप इस समय कार्यरत हैं। आनंद तिवारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत सुनो शारदा 90.8 FM पर।
6: बहुत बहुत धन्यवाद, शारदा यूनिवर्सिटी ने मुझे यहाँ पर बुलाया स्टूडेंट के साथ 1-to-1 गेट टूगेदर करने के लिए। अच्छा लगेगा मुझे अपना एक्सपीरियंस यहाँ पर स्टूडेंट के साथ शेयर करने के लिए पत्रकारिता का।
5: बेशक सर, जब मैं आपके बारे में पढ़ रहा था, जानने की समझने की कोशिश कर रहा था, सीनियर जर्नलिस्ट आप हैं और आपका जो एरिया आता है वो है इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म, तो सबसे पहले मैं सबसे स्टूडेंट्स के ब्याह पे यही जानना समझना चाहता हूँ कि खोजी पत्रकारिता का जब जिक्र आता है तो पुराने समय का हम जब जिक्र करें तो गुप्तचर हुआ करते थे, हनुमान जी का जिक्र आता है, तो वर्तमान समय में इस डेजिग्नेशन को कैसे हम परिभाषित करेंगे, किस तरीके से हमारे स्टूडेंट्स को आप समझाना चाहेंगे?
6: देखिए, मैं 2005 से क्राइम इन्वेस्टिगेशन जर्नलिज्म कवर कर रहा हूँ। तो जब मैं 2005 में इस फील्ड में नया नया आया था तो एक चैनल के साथ मैंने इंटर्नशिप शुरू करी। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप क्राइम इन्वेस्टिगेशन फील्ड में आपको काम करने का किसी भी स्टूडेंट को मौका मिलता है तो पहले तो उसके अंदर झिझक नहीं होना चाहिए किसी भी तरह की।
5: क्या बात।
6: और उसके अंदर एक ऐसी डेयरिंग होना चाहिए कि वो किसी से भी फोन करने में, बात करने में, मिलने में हिचकिचाए नहीं, घबराए नहीं, डरे नहीं। क्योंकि आप अपने प्रोफेशन के लिए अगर किसी से बात कर रहे हैं, मिल रहे हैं, या आप कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको टाइमिंग या पर्सन ये सब डिपेंड नहीं करता है, आपको अपना काम डिपेंड करता है। और उसके लिए आप किसी भी हद तक
5: जा सकते हैं, जाना चाहिए
6: और जाना भी चाहिए। अगर आपको एक अच्छा मेहनती जर्नलिस्ट बनना है और आज के सिनारियों में अगर आपको वो सर्वाइव करना है तो उसके लिए मुझे लगता है कि इसके लिए आपको जुनून होना बहुत जरूरी है, चाहे आप क्राइम इन्वेस्टिगेशन की फील्ड में हो या
5: किसी भी फील्ड में,
6: स्पोर्ट्स में हो, एंटरटेनमेंट में हो, आप किसी में हो, बिजनेस में हो, आपको उस फील्ड में आपको
5: जुनून चाहिए, पागलपन
6: करना पड़ेगा आपको।
5: क्या बात है,
6: जब आप उससे प्यार करने लगेंगे तो जाहिर तौर पर अपना पूरा समर्पण उसके लिए देंगे।
5: क्या बात है। तो लिसनर्स, कहने का आशय सिर्फ और सिर्फ हमारा यही है कि बात जो निकल कर सामने आई है कि जुनून, पागलपन, जब आप प्यार करेंगे तो निश्चित तौर पर वो क्षेत्र भी आपको प्यार करेगा, लोग भी आपको बेशुमार प्यार बरसाएंगे। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड ऑन सुरशादा 90.8 FM विद मी मेरे यानी गगन के साथ।

0: वेलकम बैक, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना काम यूनिटी रेडियो स्टेशन विद मी, मेरे यानी गगन के साथ। और आज हमारे साथ एक खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं, मिस्टर आनंद तिवारी जी। बहुत अच्छे बड़े अनुभव के साथ आप आते हैं और खोजी पत्रकारिता के यूं कहें कि महारथी हैं। मैं हिंदी में बात कर रहा हूं और ये बातें कहीं ना कहीं हमें टच करती हैं। खोजी पत्रकारिता का जब जिक्र होता है तो जिक्र होता है गुप्तचरों का, जिक्र होता है हनुमान जी का, क्योंकि वो खोजी पत्रकारिता की ही वजह से पता लगा आए थे कि सीता मैया कहां हैं। तो कहीं ना कहीं जो सर ने जिक्र किया कि एक जुनून होना चाहिए, पागलपन होना चाहिए, प्यार करेंगे जब आप अपने क्षेत्र से तो निश्चित तौर पर उसका जो रिवर्ट आता है तो वो काम आपको आगे लेकर जाता है। तो सर मैं आपसे एक बार फिर से आपका सुरशादा 90.8 FM पर बहुत बहुत स्वागत है।
1: शुक्रिया।
0: जुनून पागलपन का आपने जिक्र किया, इस बात को मैं आगे लेकर यूं जाना चाहूंगा कि खोजी पत्रकारिता नो डाउट हिम्मत का काम है। उसमें कहीं ना कहीं एक डर घबराहट है, कोई जरा सा भी थ्रेट दे देता है तो मैं समझता हूँ कि इंसान डर सकता है, घबरा सकता है या अपने करियर को वहीं रोक देगा, स्टॉप कर देगा। तो कहीं ना कहीं दिक्कतें परेशानियां आपके सामने भी आई होंगी, क्या कहना चाहेंगे आप सर?
1: देखिए बिल्कुल, जब 2006 में मैं एक चैनल से जुड़ा था, S1 उसका नाम था, वो दिल्ली NCR का काफी बड़ा फेमस चैनल था। तो एक रिटायर्ड ACP मुझे मिले फील्ड में। उस समय एक व्हाट्सएप के फोन तो होते नहीं थे, या तो लैंडलाइन से बात करिए या अब जो नॉर्मल फोन होते थे उनसे बात करिए। तो ऐसा अब बहुत इजी हो गया, जर्नलिज्म पहले नहीं था उतना 2005-06 में। तो उन्होंने मुझे बताया कि मेरी बेटी के साथ एक ने चीट किया है और वो वर्ल्ड बैंक में अपने आप को बताता था। और वो उस समय जो UP में जो सत्ता थी उसमें वो टॉप के 10-14 ब्यूरोक्रेट्स में उसका बेटा था।
0: अच्छा।
1: तो मैंने अपने एडिटर को वो स्टोरी बताई, हमने कहा कि बड़ी पढ़ी लिखी लड़की है और जो काफी ज्यादा डॉबरी वगैरह उन्होंने ले रखी थी। तो हमने वो लड़की का इंटरव्यू किया और इंटरव्यू करके वो स्टोरी ऑन एयर हुई और वो काफी चली, डिबेट शो टाइप में हुआ, मेरा लाइव हुआ। उसके बाद शाम को मेरे को फोन आना शुरू हो गए, बेसिकली पावर का मिस यूज जिसको कहते हैं, मतलब मेरे खिलाफ गाजियाबाद पुलिस से बहुत सारे फोन आए मेरे एडिटर को कि आपके रिपोर्टर को अरेस्ट करेंगे, फेक न्यूज चलाइए। तो हमारे पास तो डॉक्यूमेंट्स थे, हमारे पास तो विक्टिम था, हमारे पास सारी चीजें थी। और जैसा आपने बताया ना, वो डर उस समय मेरे अंदर नहीं था क्योंकि मैं तो उनके जहाँ पे वो लोग रहते थे हम वहाँ पे कैमरा लेके शूट करने चले गए, गार्ड्स के इंटरव्यू किए, अंदर नहीं घुसने दी, मतलब जो सारा टीवी का ड्रामा होता है वो हमने सारा करके दिखाया। उसमें
0: सबूत थे आपके पास?
1: सबूत थे, मतलब उसको टीवी की भाषा में आप ड्रामा हो सकते हैं, बेसिकली हमने एविडेंस कलेक्ट करे थे सारे। उसके बाद वो केस बेस हुए, बहुत सारे थ्रेट कॉल आने लगे। मैं थोड़ा डर भी गया क्योंकि मैं जर्नलिज्म में नया इंटर्नशिप करके। मेरे एडिटर ने बोला कि तुम्हारी अगर न्यूज सही है तो डरने की जरूरत नहीं।
0: क्या बात है, क्या
1: उस समय बस मैंने एक दिमाग ये लगाया कि मेरा चैनल उस समय दिल्ली NCR का चैनल था, मुझे पता था कि ये न्यूज नेशनल कैसे बनेगी। तो मैंने एक मेरे सीनियर थे वो दूसरे चैनल में थे, मतलब देश का नंबर वन चैनल था उसमें थे, मैंने उनसे वो स्टोरी डिस्कस की शाम को स्पेशली फिल्म सिटी आके
0: जी।
1: उनको वो बड़ी कैचिंग लगी।
0: हाँ।
1: तो मैंने सारा रिसोर्सेज अपना उनको दे दिया,
0: ट्रांसफर कर दे दिया,
1: कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह सारा।
0: अच्छा अच्छा अच्छा।
1: सारा कुछ और सारी डॉक्यूमेंट जो थे फोटोकॉपी करके उनको दे दी
0: जी।
1: उस दिन तो कुछ नहीं हुआ। हाँ। अगले दिन भी कुछ नहीं हुआ। आप यकीन, उसके नेक्स्ट डे जो प्राइम टाइम शो आता है 8 बजे का, उसमें वो स्टोरी खुली
0: दूसरे चैनल पे जी
1: ऑन एयर हुई।
0: हाँ।
1: और उसके बाद मतलब शायद ही कोई मीडिया होगा दिल्ली NCR का जिसने वो स्टोरी फॉलो नहीं की। उसके बाद वो लड़का जेल भी गया जो था ब्यूरोक्रेट्स का, और फिर वो फैमिली हमारे चैनल्स में आई, उन्होंने हमारा थैंक्स करा, उनकी बेटी ने थैंक्स करा, उनके फादर ने थैंक्स करा कि आपकी स्टोरी से हमें ये बेस मिला। वो एक्चुअली वो जो मैंने स्विच करी थी स्टोरी वो मेरा अपना खुद का दिमाग था।
0: क्या बात है,
1: क्योंकि उस समय मैं थोड़ा सा डरा हुआ था, नया था जर्नलिज्म में, और फिर मुझे लग रहा था ये न्यूज अगर नेशनल नहीं बनी तो फिर बहुत सारे प्रेशर्स हम पे आएंगे और हम फिर मतलब एक मोरल डाउन होता है आपका, वो डाउन नहीं। और वो स्टोरी इतनी पिक हुई कि मतलब वो उसको
0: मैं समझ गया ना सर, सर मैं
1: उसकी गूंज थी।
0: मैं आपको रोक रहा हूँ लेकिन मेरा जो सवाल करने का मतलब मकसद सिर्फ और सिर्फ यही था कि आपकी स्टोरी से हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जो इस क्षेत्र में आ रहे हैं काम कर रहे हैं क्या सीख मिलती है। निश्चित तौर पर आपकी बात से उनको जरूर सीख मिलेगी कि आपको डरना नहीं है, धमकी भरे फोन भी आ सकते हैं, आपके बारे में कुछ उल्टा सीधा बोला जा सकता है, आपको अपनी जॉब से भी हाथ धोना पड़ सकता है। तो मुझे लगता है कि उस दिन अगर आनंद तिवारी जी रुक गए होते तो यहां तक आनंद भरी यात्रा नहीं कर पाते। ये जो सफर रहा है वाकई बहुत सुहाना सफर रहा है, तभी आप कुछ अपने अनुभव को शेयर कर पा रहे हैं, स्टूडेंट्स को बता पा रहे हैं। और मुझे यही कहना है स्टूडेंट्स कि अगर आप इस क्षेत्र में आ रहे हैं तो निर्भीक होकर, यानी कि डरेगा बिल्कुल मत, अच्छी तरीके से पत्रकारिता करिए और निश्चित तौर पर ये समय, ये वक्त आपका है, कह सकते हैं कि वक्त हमारा है। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक और कहीं जाएगा मैं, सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम विद मी मेरे यानी गगन के साथ। और मेरे साथ जुड़े हुए हैं हमारे खास मेहमान आनंद तिवारी जी, जो कि इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के बारे में बहुत सारी बातें कर रहे हैं सिर्फ सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।

0: एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना काम यूनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम विद मी मेरे यानी गगन के साथ। स्टूडियो में आज मेरे साथ एक खास मेहमान जुड़ रहे हैं। आप हैं मिस्टर आनंद तिवारी जी, सीनियर जर्नलिस्ट फ्रॉम न्यूज 18 इंडिया से, जो कि खोजी पत्रकारिता का क्षेत्र सर का है, उस क्षेत्र में बहुत महारत हासिल है। उनके अनुभवों को हम जान रहे हैं। निश्चित तौर पर जो मीडिया के स्टूडेंट्स हैं इनसे जानेंगे, सीखेंगे, समझेंगे कि इस फील्ड में अगर आप आ रहे हैं तो क्या करें क्या ना करें, ये जान लेना समझ लेना बहुत जरूरी। तो सर एक बार फिर से सुरोशादा 90.8 एफएम पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं बहुत खुश हूँ आज आपसे मिलकर, आपसे बात करके अच्छा लग रहा है।
1: नहीं नहीं मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। अभी तक हम लोग इंटरव्यू लेते थे एक तरीके से, दे रहे हैं ऐसा लग रहा है।
0: ये तो सर मेरा सौभाग्य है कि आपने मुझे चुना, अदरवाइज आपके पास समय कहाँ।
1: शारदा यूनिवर्सिटी का थैंक्स जो उन्होंने हमें इतना ऑनर देके यहाँ बुलाया।
0: थैंक यू सर। सर मेरी बातों बातों में बात निकल कर ये सामने आई कि क्या करें क्या ना करें। कुछ एथिक्स होंगे, कुछ रूल्स रेगुलेशन होंगे, कुछ स्किल्स जो स्टूडेंट्स डेवलप कर सकता है। तो स्टूडेंट्स को आप क्या कहना चाहेंगे कि जब इस फील्ड में आ रहे हैं, इस पत्रकारिता के क्षेत्र में आ रहे हैं, तो किन किन बातों को ध्यान रखते हुए आगे बढ़े?
1: देखिए बिल्कुल आपने बहुत जायज सवाल पूछा है। सबसे पहले तो आपको मीडिया एथिक्स पता होना चाहिए कि क्या करना है और क्या नहीं करना है।
0: जी
1: फेक न्यूज बहुत ज्यादा स्प्रेड हो रही है आजकल, आपको उससे बचना है। आपको किसी लाभ लालच में नहीं आना है। आपको बिल्कुल खबर की डेप्थ तक जाना है तब आपको उसको ऑन एयर करना है। ये नहीं कि आपको कोई ने खबर दे दी उसका सर पैर नहीं पता आपने उसको ऑन एयर कर दी, या किसी कोई कितने ही बड़ा रिनाउंड अफसर हो कोई हो, जब तक आप उसकी डेप्थ नहीं पता करेंगे वो स्टोरी की, जब तक आपको उसको ऑन एयर नहीं करना चाहिए।
0: जी
1: दूसरा बात होता है आपको सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज बहुत ज्यादा जरूरी होना चाहिए। आप जिस फील्ड में काम कर रहे हैं भले चाहे वो क्राइम जर्नलिज्म हो या कोई और, आपको उसके बारे में जितना ज्यादा पढ़ेंगे, जितने ज्यादा जो करंट न्यूज आ रही है उनको ज्यादा फॉलो करेंगे या उनका फॉलो अप रखेंगे तो आप एक बेहतर जर्नलिस्ट बन सकते हैं। और जो अभी मास कम्युनिकेशन के स्टूडेंट हैं जिनका अभी लास्ट ईयर है या जिनका फर्स्ट सेमेस्टर है, जो अभी यहाँ से पास आउट होकर निकलेंगे या कहीं जॉब करेंगे, उनको बेसिकली अभी से एक अपना गोल और एम तैयार करना पड़ेगा कि उन्हें करना क्या बेसिकली।
0: जी
1: और जब वो ये डिसाइड कर लेंगे कि मुझे इस फील्ड में ही काम करना है, मुझे क्राइम जर्नलिज्म ही करना है, इन्वेस्टिगेशन करना है, तो उसमें आपको पुराने बहुत सारे केसेस है जिनके बारे में पढ़ना पड़ेगा। और मैं तो कहता हूँ कि आपको आजकल इतनी सारी वेब सीरीज आ रही है जो रियल स्टोरी पे बनी हुई है, आपको उनको देखना चाहिए। उससे आपको बहुत सारा नॉलेज मिलता है जो रियल स्टोरी पे बनी, लोगों की डॉक्यूमेंट्री बनी, बायोग्राफीज बनी है, आप उनको देखिए, उससे आपको पता चलेगा कि वो बंदा क्या था, उसकी लाइफ स्टाइल कैसी थी, वो कैसे क्राइम की दुनिया में आया। जैसे हम लोग अभी सडनली हमने बहुत सारी सीरीज करी न्यूज 18 ने, शायद न्यूज 18 पहला ऐसा चैनल होगा देश का जो देश के करीबन 8-9 गैंगस्टरों के घर गया। मैं खुद होके आया हूँ। जब हम गए तो हमें पता चला कि वो जो गैंगस्टर थे उनका एक एक पार्ट क्या है लाइफ का, दूसरा पार्ट
0: क्या है,
1: क्राइम की दुनिया से अलग वो क्या है। तो वो आप तभी कर सकते हैं जब आप ग्राउंड पे जाएंगे, आप फोन पे जर्नलिज्म नहीं कर सकते। आपको फील्ड पे जाना जरूरी है, लोगों से मिलना जरूरी है, जितने ज्यादा कॉन्टेक्ट बनाएंगे उतना ज्यादा जरूरी है। और आपको अपने फील्ड के बारे में मुझे लगता है जितना ज्यादा सीखेंगे उतने ज्यादा आप अच्छे जर्नलिस्ट बनेंगे आगे जाके।
0: बेहतरीन सर, बहुत अच्छी अच्छी बातें आपने हमारे लिसनर्स तक, हमारे श्रोताओं तक, हमारे दोस्तों तक, हमारे स्टूडेंट्स तक पहुंचा दी। मुझे लगता है कि इन बातों को अगर वो गांठ बांध लेंगे तो निश्चित तौर पर इस फील्ड में कहीं रुकेंगे नहीं, थमेंगे नहीं। सर आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें शेयर की। कभी कभी शिकायत तो होती होगी जब आप देखते होंगे कुछ इंटर्न्स आपके यहाँ काम करने आ रहे हैं, वो चाहते हैं कि हथेली पर सरसों तुरंत उग जाए। आपको कहीं ना कहीं उनके अंदर कमी भी दिखती होगी कि कहीं वो ललक है, लगन है या नहीं है। तो वो जब आप मिलते हैं स्टूडेंट से तो उस के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
1: हाँ बिल्कुल आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। मतलब मैं इसमें स्टूडेंट की गलती नहीं मानूंगा। मतलब आज का स्टूडेंट जो है मास कम्युनिकेशन का, उसको बहुत सारी चीजें जो है वो फास्ट चाहिए।
0: जी
1: हम लोग जब इंटर्नशिप करते थे तो हमने 6-6 महीने इंटर्नशिप किए फ्री ऑफ कॉस्ट। और हम अब तो मतलब आपके पास रिसोर्सेज बहुत सारे हैं।
0: जी
1: पहले रिसोर्सेज उतने नहीं थे जिसमें आपको काम करना होता था। अब के इंटर्नशिप क्या होते हैं, उनको बहुत सडनली एक महीने के इंटर्नशिप में अगले महीने उनको नौकरी चाहिए। और वो बहुत कम ही स्टूडेंट मैंने ऐसा देखा है जो बहुत दिल से सीखना चाहते हैं चीजों को। हमारे ऑफिस में भी बहुत सारे इंटर्न्स आते हैं, हमारे साथ उन्हें फील्ड में भी भेजा जाता है, तो उसमें 10 में से केवल 2 इंटर्न्स ऐसे होते हैं जहां हमें जहां लगता है कि जो सीखना चाहते हैं, जो हमसे कुछ पूछना चाहते हैं
0: उन्हीं को नौकरी ऑफर करते
1: हैं। बाकी कुछ ऐसे होते हैं जो बस वे बोलते हैं कि सर हमारी शिफ्ट खत्म हो रही है, हमको घर जाना है, हमको मेट्रो स्टेशन पे ड्रॉप करा दीजिए। तो वो लगता है कि वो सिर्फ एक डिग्री लेने के लिए मास कम्युनिकेशन कर रहे हैं। मतलब मैं और भी यूनिवर्सिटी में जाता हूं तो वहां पे मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को देखा जो जिनको अपना बेसिक फील्ड का नॉलेज होना चाहिए जो नहीं होता है, और बहुत सारे ऐसे होते हैं जिन्हें अपने फील्ड के नॉलेज से ज्यादा होता है, मतलब वो सीखना चाहते हैं। तो मैं स्टूडेंट को मतलब उनका मनोबल नहीं गिरा रहा हूं, मतलब बेसिकली बोल रहा हूं कि अगर आप जर्नलिज्म की फील्ड में आए हैं, आपको अगर जर्नलिज्म ही करना है या पीआर एजेंसी में जाना है या क्रिएटिविटी में जाना है,
0: तो तैयार होकर आइए,
1: तैयार होकर आइए,
0: माइंड मेकअप करिए।
1: और अगर आपको कोई भी न्यूज चैनल या अखबार या छोटा डिजिटल प्लेटफॉर्म या आपको इंटर्नशिप का मौका दे रहा है, तो आप वहाँ बहुत ज्यादा सीखिए। आपको सिखाएगा नहीं बड़े चैनल्स में,
0: बिल्कुल
1: आपको खुद सीखना पड़ेगा। आपको वहाँ पे सीनियर से जाना पड़ेगा कि या आउटपुट है, इनपुट है, असाइनमेंट ऐसा होता है, ग्राफिक्स ऐसे बनते हैं, वॉइस ओवर ये रूम है। जब आप खुद सीखेंगे तो सामने वाला भी आपको सिखाने की कोशिश करेगा, नहीं तो वो तो आप बोलेगा 8 घंटे की शिफ्ट है आप करिए और घर चले जाइए।
0: सही बात है,
1: वो आपको सर्टिफिकेट थमा देंगे एक महीने।
0: क्या बात है, बिल्कुल बिल्कुल। डियर स्टूडेंट्स, मैं तो ये कहूंगा कि इन बातों को जान लीजिए, समझ लीजिए, अपने जहन में बैठा लीजिए, अप्लाई करेगा तो निश्चित तौर पर कहीं कोई दिक्कत परेशानी आपको होगी ही नहीं। वक्त अगर आपने अभी देखा तो निश्चित तौर पर आपका वक्त नहीं आएगा, लेकिन जब आप वक्त नहीं देखेंगे तो एक ना एक दिन आपका वक्त जरूर आएगा। दुनिया आपको सलाम करेगी, आपके काम की पूछ होगी। और इन बातों का यहाँ डिस्कशन करने का मतलब मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि इन बातों को जान लीजिए, समझ लीजिए। इसलिए मैं ये सवाल कर रहा हूं अपने गेस्ट से कि ताकि उन बातों को आप समझ पाए जो आप अपनी जिंदगी में अपनाना चाहते हैं। वक्त है यहाँ पर एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, और मेरे साथ आनंद तिवारी जी जुड़े हुए हैं न्यूज 18 से। बहुत सारी बातें हो रही हैं, बातों का जो सिलसिला लगातार जारी है सिर्फ सुरुषादा 90.8 FM पर।

0: वेलकम बैक, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम विद मी मेरे यानी गगन के साथ। और स्टूडियो में मेरे साथ आज एक खास मेहमान है मिस्टर आनंद तिवारी जी, जो कि न्यूज 18 से ताल्लुक रखते हैं। बहुत पीछे बहुत बड़ा अनुभव है, अलग अलग चैनल में काम किया है और खोजी पत्रकारिता में आपकी महारत हासिल है। बहुत सारी बातें मैंने यहाँ की, इसलिए बातें की ताकि एक खूबसूरत जवाब की मैं उम्मीद रख रहा था, उससे भी बेहतरीन जवाब हमें मिले। सो मैं समझता हूँ कि जो स्टूडेंट्स इस क्षेत्र में आना चाह रहे हैं, तो उन बातों को जब आप अपनाएंगे तो अच्छा होगा, बेहतर होगा। सर, कभी कभी इस क्षेत्र में जब आप पत्रकारिता के लिए जाते हैं, कहीं ना कहीं डर घबराहट, जैसे उसके बारे में आपने बताया कि वो सारी चीज़ें पीछे छोड़कर आप आगे बढ़ रहे होते हैं, लेकिन कभी कभी आपके सामने दिक्कतें आई होंगी, आपको लगा कि मैं आज बच ही गया, थैंक गॉड, अदरवाइज तो आज मेरी जान चली जाती। इसके अलावा दूसरी बात भी मैं इसमें जानना चाहूंगा कि जब कोई विक्टिम होता है तो आजकल हम देखते हैं कि किसी को फेस दिखा देते हैं, फिर हमें समझ में आता है कि भाई फेस नहीं दिखाना चाहिए, एथिक्स में है। तो कुछ ऐसी बातें जो हमारे स्टूडेंट्स को ध्यान रखनी चाहिए।
1: देखिए, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि आप जो भी जुबिनाइल होगा उसका फेस नहीं दिखा सकते हैं, चाहे वो विक्टिम हो या नहीं हो, इनोसेंट हो। दूसरा, जो रेप विक्टिम होते हैं या जो सेक्सुअल असॉल्ट के जो विक्टिम्स होते हैं, आपको उनका फेस कभी नहीं दिखाना चाहिए, ना उनका नाम। सुप्रीम कोर्ट की तो ये तक गाइडलाइन है कि आप उनके रेडियस के आस पड़ोस के घर के वीडियो फोटो भी नहीं दिखाएं, उनके फैमिली मेंबर्स के किसी के फोटो नहीं दिखाएं। तो बेसिकली रेप और या सेक्सुअल असॉल्ट की खबरों में ये बहुत बचना चाहिए। इसमें कोर्ट कचहरी के चक्कर भी काटना पड़ सकता है और आपके पर्सनल जो आपका प्रोफेशन है उस पे भी आपको
0: हाथ धोना पड़ सकता है।
1: तो बेसिकली इसमें ये बहुत ध्यान रखना चाहिए। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा स्टूडेंट्स को कि जब भी कोई रेप विक्टिम्स हैं या आप सेक्सुअल असॉल्ट वाले विक्टिम्स हैं, उनके इंटरव्यू करने भी अगर आप जाते हैं तो कोशिश करिए कि उनका फेस ब्लर करें या उनका फेस ना दिखाएं। आप बैक साइड कैमरा लगा के और फिर उनका इंटरव्यू करें जिसमें उनका बैक केवल पीठ दिखे और उनकी वॉइस जाए
0: जी।
1: और कोशिश करें कि उनमें उनका नाम नहीं पूछें, उनके फैमिली के बारे में नहीं पूछें, कोई ऐसी चीज नहीं पूछें जिससे कि उनकी फैमिली की आइडेंटिटी रिवील हो। वो एक्चुअली कोर्ट ऑफ कंडक्ट भी है और होना भी नहीं चाहिए, मतलब वो। बाकी दूसरा आपने बताया, जब आपको ऐसी जगह पे रिपोर्टिंग करने जा रहा है जहां आपको लग रहा है कि लाइफ थ्रेट है या आपकी जो इक्विपमेंट है उनको चोट पहुंच सकती है,
0: जान का खतरा हो सकता है,
1: जान का, तो आपको वहां पर ना आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड रख के रिपोर्टिंग करना पड़ेगा। आपको बहुत भीड़ में जाने की जरूरत नहीं है, आपको तो इन्फॉर्मेशन देना है, अपने चैनल्स को विजुअल दिखाना है। आप किसी ऐसी जगह जाके विजुअल दिखाई जहाँ पे आपको पुलिस प्रोटेक्शन हो या पैरामिलिट्री फोर्स के लोग हो। जैसे हम भी राइट्स कवर करने जाते हैं तो हम उसी एरिया तक रहते हैं जहाँ पे कि
0: फोर्स
1: प्रेजेंस हो, पुलिस फोर्स, क्योंकि वो मीडिया को हार्म नहीं करेगी। कई मौके ऐसे आते हैं जब पुलिस वाले भी पत्रकारों को आपने देखा होगा कि उनको हार्म दौड़ाते हैं, लाठी बढ़ाते हैं। तो आपको वो देखना पड़ेगा, वो आपका दिमाग आपको ओपन रखना पड़ेगा। अभी वक्त की नजाकत क्या, उस हिसाब से आपको जर्नलिज्म करना, ये नहीं कि आप जुनून में अंदर घूम गए उस समय पत्रकारिता में वो
0: शहीद हो जाएंगे।
1: ध्यान रखने वाली बात है, इक्विपमेंट का भी ध्यान रखना, अपना भी ध्यान रखना। तो जब राइट्स वाली स्थिति आए तो आप एक ऐसी जगह पे जाके लाइव करें जहां से कि आप व्यूअर्स को वो विजुअल भी दिखा सके और अपनी बात भी रख सकते हैं और खुद भी सेफ होकर अपना रिपोर्टिंग करें, चाहे वो आप बाढ़ की रिपोर्टिंग कर रहा हूँ या जो दिल्ली में या और भी जगह जो दंगे हुए उनकी रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, या कोई ऐसी जगह जहाँ पे बहुत बड़ी आग लग गई हो, या आप कोई ऐसी जगह चले गए हो जहाँ बहुत ज्यादा लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब हो सकती है, पब्लिक भड़क सकती है,
0: ध्यान रखने
1: आपको रखना पड़ेगा। ये ऑफिस भी लगातार बताता है, आप न्यूज चैनल्स भी एथिक्स के बारे में बताते हैं और ये रिपोर्टर को फील्ड में या कैमरामैन जो आपके स्टूडेंट जो कैमरा पर्सन बनना चाहते हैं आगे, उनका इंटरेस्ट वीडियोग्राफी में है, स्टिल फोटोग्राफी में है, तो उनको भी ध्यान रखना पड़ेगा कि किस तरह से करना है। फोटोग्राफी में भी है कि आप माइनर के फोटो ना लें, छोटे बच्चों के फोटो ना दिखाएं चैनल्स पे। अभी बहुत सारी न्यूज में ऐसा होता है जब छोटे बच्चों के फोटो दिखा दिए जाते हैं, सोशल मीडिया बढ़ चढ़ कर दिखाता है, रेप विक्टिम के फोटो दिखाता, वीडियो दिखाता।
0: सर, आप इस बात को हम को रिलेट कर सकते हैं, अभी शिवाय की एक घटना घटी थी, उस बच्चे का पिक्चर नहीं आना चाहिए था, मुझे ऐसा लगता है, अगर मैं सोच रहा हूँ तो आप मुझे भी करेक्ट करेंगे, क्योंकि अगर पिक्चर आएगी तो हो सकता है कि वो दिक्कतें उसके आने वाले फ्यूचर में भी हो सकती हैं, क्योंकि शिवाय का ग्वालियर की घटना थी, बच्चे का अपहरण होता है उसके बाद वो मीडिया के सामने होता है।
1: बिल्कुल नहीं दिखाना चाहिए, किडनैपिंग की तो खबरें नहीं दिखाना चाहिए। किडनैपिंग की न्यूज तब आपको दिखाना चाहिए जब या तो बच्चा रिकवर हो जाए या एक्यूज जब अरेस्ट हो जाए, क्योंकि उससे बच्चे की लाइफ पे थ्रेट हो सकता है। आप एक न्यूज चला देंगे वो पूरे देश में चली जाएगी, किडनैपर्स डर के हो सकता है बच्चों को मार दें, और बहुत सारे ऐसे केस में हुआ है जब किडनैपर्स तुरंत जब उनको लगता है कि मीडिया में न्यूज आ गई तो वो उस बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने जिसमें विक्टिम्स की मर्डर कर दिए गए हैं, बाद में उनकी डेड बॉडी रिकवर होती है। तो ये पुलिस भी इसमें बहुत कोशिश करती है कि मीडिया को सारी चीजें लीक ना हो, और अगर आपकी भी एथिक्स है कि आपको ऐसी चीजें नहीं चलाना चाहिए,
0: जिससे
1: कि कोई की लाइफ थ्रेट आपकी न्यूज से अगर हो रही है तो
0: बहुत अच्छा सर। लिसनर्स कहने का आशय सिर्फ और सिर्फ ये कि इन बातों को जान लीजिए, समझ लीजिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए, जिंदगी बहुत खूबसूरत है, प्यार का एक माहौल बना के चलेंगे, सब अच्छा होगा, बेहतर होगा। और जो ये बातें बताई गई हैं इन बातों को जरूर जानिएगा, समझिएगा। और वक्त का इशारा हो चुका है, वक्त का जब इशारा होता है तो मैं होता हूँ 9:11। सर दिल की गहराइयों से मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने बहुत वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन हमारे लिसनर्स तक, स्टूडेंट्स तक पहुंचाई, इस बात के लिए दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, आभार सर।
1: आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके स्टूडेंट्स का भी, रेडियो स्टेशन का।
0: थैंक यू सर। सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM विद मी, मेरे यानी गगन के साथ। 01204060205 पर कॉल कर आप हमें बता सकते हैं कि ये चर्चा, ये वार्ता, ये इंटरव्यू कैसा लगा। मुझे यानी गगन को दीजिए अनुमति, नमस्कार।
2: चलो अब तुम लोगों ने बहुत पढ़ाई कर ली, अब टेंशन वेंशन छोड़ दे, बच्चा हो जा फुल्ली।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

0: नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं आज आपसे टीबी की बात करने आया हूँ। अब सरकार द्वारा सभी आरएनटीसीपी नोटिफाइड टीबी मरीजों को आर्थिक रूप से सहायता उपलब्ध है। इलाज के समाप्ति तक हर मरीज को प्रति महीने 500 रुपए उपलब्ध किए जाएंगे। इससे मरीजों की नोटिफिकेशन, इलाज अनुपालन, सही पोषण और इलाज के अंतर्गत होने वाले खर्चों में सहायता मिलेगी। आइए मिलकर भारत को टीबी मुक्त बनाएं।
1: अधिक जानकारी के लिए 1800 111 6666 पर संपर्क करें।

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास्क।

राम राम दोस्तों, आप सत श्री अकाल आदाब। मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम विद मी मेरे यानी गगन के साथ। और मंडे टू सैटरडे सुबह 9 से 10 लाइव में रहता हूं आपके साथ और हमेशा ईश्वर से, खुदा से, पिता परमेश्वर से यही दुआ, यही प्रार्थना करता हूं कि आपका दिन शुभमय गुजरे, मंगलमय गुजरे, कहीं कोई दिक्कत परेशानी न हो। इसके लिए जरूरी है कि आप हर रोज अपने आप को स्वस्थ रखने के प्रयास करते रहिए, यानी कि योग करेंगे तो अपने आप को आप निरोग रख पाएंगे। भागती दौड़ती जिंदगी में तनाव बहुत ज्यादा है, स्ट्रेस फ्री रहना चाहते हैं तो योग करिए, म्यूजिक का सहारा लीजिए, अपनी फैमिली के बीच में जाइए, नेचर के बीच में जाइए, पशु पक्षी जानवरों, बेजुबान जानवरों से प्यार करिए, हंसते मुस्कुराते आप आगे बढ़ते रहिए, जिंदगी को सरल सुगम आसान बनाइए। ऑन रोड जब आप निकल रहे होते हैं तो जाहिर सी बात है कि ट्रैफिक बहुत ज्यादा होता है, तो ट्रैफिक से आप अपने आप को बचाने के लिए समय से थोड़ा सा पहले निकलेंगे तो मुझे लगता है कि कहीं कोई दिक्कत परेशानी होगी नहीं। लेकिन जैसे आप लेट होते चले जाते हैं तो उसके बाद आपकी दिल की धड़कनें तेज होती चली जाती है, आपको लगता है कि जल्दी से जल्दी ऑफिस पहुंचे और उसी दौरान कहीं ना कहीं कोई ऐसी घटना दुर्घटना घट जाती है कि जिसकी वजह से एक्सीडेंट हो जाता है या छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़े हो जाते हैं क्योंकि कार आपने टच कर दी या उसने आपकी कार को टच कर दिया है ना। तो ऐसे समय में जन धन हानि ना हो, यानी कि समझदारी से काम लीजिएगा क्योंकि छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं, है ना। तो हंसते मुस्कुराते आप आगे बढ़ते रहिए और सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम विद मी मेरे यानी गगन के साथ। मौसम के बारे में जानेंगे जरूर, फिलहाल म्यूजिक के मौसम के बारे में बात कर लेते हैं। तुम्हारे ही रहेंगे हम, फ्रॉम द मूवी 3-2 फिल्म का ब्यूटीफुल ट्रैक, ऑनली ऑन सुरुशारदा 90.8 एफएम, वरुण जैन शिल्पा राव की आवाज, सिर्फ और सिर्फ सुरुशारदा 90.8 एफएम पर। गुड मॉर्निंग सुप्रभात, मैं हूं गगन आपके साथ।

0: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: लक्षण, इसी से तो किसी की पहचान बनती है। और बड़े बुजुर्गों ने कहा भी है कि किसी के दो चार लक्षण जान लो, फिर वो इंसान कैसा है मालूम पड़ जाता है। और यही लक्षण पहचान कर हमने न जाने कितनी लड़ाइयां जीती भी हैं। फिर एक खांसी के लक्षण को हम कैसे नकार कर उसे टीबी में बदलने का मौका दे देते हैं, बताइए। देखिए, सिर्फ 5 बातें ही तो याद रखनी है आपको। 2 हफ्ते से लगातार खांसी, बुखार, रात में पसीना आना, भूख न लगना, वजन में लगातार गिरावट, इनका पता चलते ही टीबी की जांच कराइए। और सुनिए, सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में ये जांच बिल्कुल मुफ्त है, फ्री। इंडिया वर्सेस टीबी, टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
2: ये संदेश स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: भाई,
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: 45 मिनट योग करने से बीमारियां दूर रहती हैं और आप स्वस्थ रहते हैं। योग एक ऐसा विज्ञान है जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के साथ साथ आध्यात्मिक विकास के लिए बहुत उपयोगी है।
1: आओ करें सब योग।
2: आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: हम भी यही रिक्वेस्ट करते हैं कि आओ हम सब मिलकर करें योग। वादा स्टूडियो क्लॉक 9:20 हो चुके हैं और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM विद मी मेरे यानी गगन के साथ। मौसम की क्या हालचाल है उसके बारे में जान लेते हैं। खास बात यह कि दिल्ली NCR में आज भीषण गर्मी और लू बोले तो हीट वेव का प्रकोप जारी रहेगा और इसके लिए यानी कि मौसम विभाग IMD ने येलो और रेड अलर्ट जारी कर दिया है और मैक्सिमम टेम्परेचर 44 डिग्री सेल्सियस से 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान है और वही न्यूनतम यानी कि 28 डिग्री सेल्सियस से लेकर 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा टेम्परेचर। मुख्य बिंदु की अगर मैं बात करूं तो मुख्य पॉइंट्स ये हैं कि तपती धूप और गर्म हवाएं दिन के दौरान राजस्थान और बलूचिस्तान की ओर से आने वाली सूखी हवाओं के कारण करीब 25 से लेकर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से झुलसाने वाली लू महसूस होगी, लू चलेगी और रातों में आप यकीन मानिए कि ऐसा लग रहा है कि दिन है, दिन यानी कि वही दिन जो दिन में धूप निकल रही है, जितना टेम्परेचर दिन में महसूस कर रहे हैं वैसे ही हम रात को भी महसूस कर रहे हैं और आप ये भी महसूस करते होंगे कि टंकी का पानी हाँ यानी कि गरम गरम। और आने वाले दिनों का जो हाल है यानी कि मंगलवार बोले तो आज से लेकर शुक्रवार तक लगातार 4 दिनों के लिए लू का अलर्ट है। हालांकि मई के अंत में प्री मानसून गतिविधियों के कारण हल्की राहत मिलने की संभावना जताई जा रही है। हाँ तो ऐसे में क्या करें, ऐसे में प्याज बताते हैं लोग खाना चाहिए लू से बचने के लिए और प्याज हाँ पुराने लोग ना रख भी लेते हैं हाँ ऐसा कहते हैं, तो इसके बारे में प्रामाणिकता जो है आप डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं, वैज्ञानिक क्या कारण है गूगल भी आप सर्च कर सकते हैं। और धूप में जब निकल रहे हैं तो गाना गाइएगा धूप में निकला ना करो, हाँ धूप में ना निकला करो, अगर आप निकल रहे हैं तो छाता या छतरी लेकर निकलेगा, अपने तन बदन को ढककर निकलेगा वरना लेने के देने पड़ सकते हैं, दिक्कतें हो सकती हैं। और 12 से लेकर शाम के 4 बजे तक यानी कि दोपहर के 12 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक ना ही निकले तो बेहतर होगा। ब्यूटीफुल ट्रैक ऑन योर सुरशादा 90.8 FM, गुड मॉर्निंग सुप्रभात, मैं हूं गगन आपके साथ सिर्फ और सिर्फ सुनो शारदा 90.8 FM पर। सुनो शारदा 90.8 FM, यह ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: हाय, मैं हूं रणविजय। आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: वेलकम बैक एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM विद मी मेरे यानी गगन के साथ। स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त बज चुके हैं 9:30 हमारे आसपास और क्या खास है उसके बारे में जान लेते हैं। खास बात यह कि आम जनता को एक और झटका महसूस हो रहा है, होने जा रहा है कह सकते हैं, लेकिन हफ्ते में दूसरी बार जो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं जिसकी वजह से दिक्कतें परेशानियां हमारे सामने आ रही हैं और आ सकती हैं। ये बात दरअसल मैं डिटेल में क्यों कहने जा रहा हूं, दरअसल अभी कुछ रोज पहले पेट्रोल डीजल के दाम 3 रुपये बढ़े, उसके बाद CNG के भी दाम बढ़े, लेकिन अब पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगभग 90 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। अब इसका फर्क क्या है कि जिससे माल ढुलाई और दैनिक बजट पर इसका असर पड़ता हुआ नजर आएगा। वैसे ऑलरेडी देखा जाए तो अमूल ने अपना 2 रुपये लीटर दूध बढ़ा दिया, मदर डेयरी ने भी अपना 2 रुपये लीटर दूध बढ़ा दिया, 2 रुपये उसने भी इजाफा कर दिया उसमें लीटर में। अब धीरे धीरे इसके जो रिजल्ट हैं वो हमारे सामने आएंगे तो निश्चित तौर पर हमारी जो महंगाई दर है वो आगे बढ़ती चली जाएगी। तो कहने का मतलब ये कि बहुत प्लानिंग के साथ आप आगे बढ़िए, आमदनी अगर अठन्नी है तो खर्चा रुपया ना हो, क्योंकि ऐसे समय में वैश्विक स्तर पर, विश्व लेवल पर, विश्व पटल पर हालात सही नहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अलर्ट ना रहें, हम बेफिक्र हो जाएं। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ ये है कि अफवाहों पर आप बिल्कुल भी ध्यान ना दें और बहुत सोच कर समझ कर जिंदगी की जो गाड़ी है उसको चलाने की आवश्यकता है ना। और प्रधानमंत्री मोदी जी की जो अपील है उस बात पर ध्यान दीजिएगा। और कुछ लोग ऐसा क्यों कहते हैं कि वो विदेश गए, अरे विदेश गए तो देश के हित के लिए गए ना, देश के हित में उनको सम्मान मिला है, उनका सम्मान हमारा सम्मान। गुड मॉर्निंग सुप्रभात, मैं हूं गगन आपके साथ सिर्फ और सिर्फ सुनो शारदा 90.8 FM पर। गुड मॉर्निंग, मैं हूं गगन आपके साथ।

0: मेरी फिल्मों में आपने देखा ही होगा कि अगर विलन को पीटते हुए आधे में छोड़ दिया जाए तो बाद में विलन बदला लेने जरूर आता है और हीरो के लिए बहुत सारी दिक्कतें खड़ी कर देता है। ठीक ऐसे ही अगर हम टीबी का इलाज अधूरा छोड़ दें तो आगे जाके ड्रग रेजिस्टेंट टीबी भी हो सकता है, जिसका उपचार लंबा और कठिन भी है। इसीलिए पूरा कोर्स ही है पक्का इलाज। और सुनिए, टीबी का आधुनिक और संपूर्ण उपचार सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में बिल्कुल मुफ्त है, फ्री। इंडिया वर्सेस टीबी, टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
1: हाय, दिस इज शालमली खोलगड़े एंड यू आर लिसनिंग टू मी ऑन 90.8 FM सुनो शारदा।

0: हमारी मथुरा में कहते हैं कि कैसे इतराए रो।
1: गुड मॉर्निंग सुप्रभात, मैं हूं गगन आपके साथ। अगर कोई व्यक्ति ज्यादा बन रहा है तो हम ऐसी ही बातें करते हैं कि कैसे इतरा रहा है, कैसे इठला रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि बोंदू, अगर आप सिंपल सादगी के साथ अपनी जिंदगी को जीते चले जाएंगे तो मुझे लगता है कि बहुत कुछ अच्छा होगा, बेहतर होगा। लेकिन वर्तमान परिस्थिति को देखें, अगर आपने वही जो आपके तामझाम हैं, शो ऑफ करते हैं, तो भाई पेट्रोल डीजल बहुत बढ़ रहा है। अब कैसे गाड़ी घोड़ा चलेगा, कैसे जिंदगी चलेगी, चीजें बड़ी महंगी होने जा रही है। लेकिन ऐसे समय में डर अफवाहों से आप अपने आप को दूर रखें, क्योंकि हमारा फर्ज बनता है कि हम अफवाहों से दूर अपने आप को रखें। लेकिन हमारा फर्ज बनता है कि क्या अपडेट निकलकर सामने आ रही है, कि उसके बारे में भी जान लेना, समझ लेना बहुत जरूरी है। दिल्ली में अब पेट्रोल 98.64 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है, जिसमें 87 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। और वहीं डीजल की कीमत 91.58 रुपए प्रति लीटर है, जो कि 91 पैसे ज्यादा है। राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 97.77 यानी कि 77 रुपए प्रति लीटर से बढ़कर 98.64 रुपए प्रति लीटर हो गई है। इसी तरीके से बहुत सारे आंकड़े मुंबई या कोलकाता या चेन्नई, अलग अलग आंकड़े नजर हमें आएंगे। लेकिन वही माल ढुलाई और आम बजट पर सीधा इसका असर भी पड़ेगा, जैसे कि जो कुछ घरेलू चीजें हैं, सब्जियां हैं, फल हैं, रोजमर्रा के सामानों के आवाजाही पर भी इसका असर पड़ता हुआ नजर आएगा। यानी कि खुदरा महंगाई, जिसे बोलते हैं, रिटेल इन्फ्लेशन में एक बार फिर बड़ा उछाल देखने को हमें मिल सकता है। और इसी के चलते मुझे लगता है कुछ ऐसा होने जा रहा है कि देश भर में ऑनलाइन और ई फार्मेसी प्लेटफॉर्म्स पर दवा बिक्री के विरोध में ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट ने 20 मई यानी कि कल को देशव्यापी बंद का ऐलान किया है। लेकिन कुछ लोग इस हड़ताल में शामिल नहीं है, तो अगर आपको लगता है कि आपके आसपास मेडिकल है, कुछ जरूरी सामान यानी कि कोई दवा लेनी है, तो आप पहले भी ले सकते हैं। फिर ना कहिएगा कि हमने आपको अप टू डेट नहीं रखा। गुड मॉर्निंग सुप्रभात, मैं हूं गगन आपके साथ, सिर्फ और सिर्फ सुनो शारदा 90.8 FM पर।

बाद स्टूडियो क्लॉक 9:42 हो चुके हैं और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुन शारदा 90.8 FM विद मी मेरे यानी गगन के साथ। हमारे आसपास के खास उसके बारे में जान लेना समझ लेना बहुत बहुत बहुत जरूरी है। ब्रेक पर जाने से पहले मैंने बात की थी, पहले बात की थी कि मौसम के मिजाज के बारे में बात की, उसके अलावा हमने बात की कि जो पेट्रोल डीजल के थोड़े से दाम बढ़े हैं, कुछ पैसे 90 पैसे बढ़े हैं, उसके अनुसार इस तरीके से कह सकते हैं कि 4 रुपये पेट्रोल पर 4 रुपये डीजल पर टोटल अमाउंट इस तरीके से इंक्रीज हो चुका है, बढ़ चुका है, और इसका जो फ़र्क है वो हम सबके आम जिंदगी में आम बजट पर पड़ता हुआ नज़र आएगा। और इसके अलावा हमने बात की थी कि कल देश व्यापी एक हड़ताल होने जा रही है, वो है मेडिकल जो केमिस्ट डिपार्टमेंट है उनकी हड़ताल है, लेकिन कई लोगों ने इससे अपने आप को अलग रखा है और इसके बारे में भी आप जान सकते हैं, क्योंकि जो ऑनलाइन दवा की जो बिक्री है एक वजह है। तो इस तरीके से अगर आपको लगता है कि कोई मेडिसिन आपको पहले लेकर रख लेनी चाहिए तो आप मार्केट जाकर अपनी मेडिसिन आज ले सकते हैं, एक डरने घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिलहाल दिल्ली NCR में और क्या खास है उसके बारे में भी जान लेते हैं। मौसम का जो मिजाज बदल रहा है उस तरीके से आप अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा, लापरवाही मत बरतिएगा, अपने बच्चों का विशेष तौर पर ख्याल रखिएगा। छोटे छोटे बच्चे बड़े नाजुक होते हैं, बहुत दुख होता है, बहुत अफसोस होता है। एक खबर को जब मैं पढ़ रहा हूं तो वाकई बहुत बुरा लग रहा है। ग्रेटर नोएडा में एक दर्दनाक हादसा, यानी कि 15वीं मंजिल से गिरकर 3 साल के मासूम की मौत। यानी कि अगर ऐसा होता है तो ज़िंदगी भर के लिए एक पछतावा हो जाता है कि काश मैं उस वक्त अलर्ट होता है, काश मैं उस वक्त अलर्ट होती, मैं लापरवाही ना बरतती। तो खैर, कुल मिला के बच्चों का ख्याल रखिए, गर्मी के मौसम में आप अपनी सेहत का ख्याल रखिए, पानी भरपूर पीजिएगा, लापरवाही मत बरतिएगा, और जब भी घर से बाहर निकल रहे हैं तो छतरी या अपने शरीर को ढककर निकलिएगा। गर्मी बहुत ज़्यादा है, अपने पशु पक्षी जानवरों यानी कि बेजुबान जानवरों का भी ख्याल रखेगा। गुड मॉर्निंग सुप्रभात, मैं हूँ गगन आपके साथ सिर्फ और सिर्फ सुन शारदा 90.8 FM पर।

0: हॉन सिंह, आप हमारे साउथ में?
1: अरे हाँ भाई, लेकिन हमारे साउथ फैंस खातिर भी तो कुछ होके के चाहिए ना। गाना बुझे कि नहीं?
0: हाँ
1: चलो धूम मचाते हैं।
0: फिक्स।

0: मॉर्निंग सुप्रभात, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर।
1: वेलकम बैक, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुन शारदा 90.8 एफएम विद मी मेरे यानी गगन के साथ। मंडे टू सैटरडे सुबह 9 से 10 लाइव में रहता हूँ आपके साथ और हमेशा ईश्वर से, खुदा से, पिता परमेश्वर से यही दुआ, यही प्रार्थना करता हूँ कि आपका दिन शुभमय गुजरे, मंगलमय गुजरे, कहीं कोई दिक्कत परेशानी ना हो। फिलहाल स्टूडियो की घड़ी में 9:51 हो चुके हैं, वक्त हो चुका है आपसे लगभग अनुमति ले लेने का। लेकिन जाते जाते कुछ और खास अपडेट्स हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। दिल्ली एनसीआर में ऐप टैक्सी डिलीवरी कंपनियों के लिए कुछ नया नियम बना है, इसके बारे में आप मालूम कर सकते हैं। लेकिन अब उसमें ये बात निकल कर सामने आ रही कि नई सीएनजी और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल गाड़ियां ही शामिल होंगी, तो इसके बारे में अगर आप डिटेल जानेंगे समझेंगे तो थोड़ी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। और क्या है ग्रेटर नोएडा में उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। ग्रेटर नोएडा में तिलपता गोल चक्कर पर जाम खत्म होगा और सर्विस मार्ग और यू टर्न का जो काम है वो भी बहुत जल्द शुरू होगा। एनसीआर वालों को बड़ी राहत देखने को मिलेगी आने वाले समय में। गौर चौक अंडरपास की ओपनिंग डेट पर एक बड़ा फैसला आया है और जाम से परमानेंट आपको मुक्ति।

0: मिलती हुई नजर आएगी। टोल टैक्स की बात कर लेते हैं। यमुना एक्सप्रेसवे पर 13 सालों में टोल टैक्स के रेट्स जो हैं वो 40% रेट्स बढ़े हैं,
1: और ऊपर से ये युद्ध, ऊपर से महंगाई, कहाँ जाएं हम?
0: मंगल ग्रह वो सस्ता थोड़ी है, वहाँ पे भी महंगाई,
1: बेर बिक जाएंगी बेर हमारी।
0: तो चलिए, आमदनी अठन्नी है तो खर्चा रुपया न हो, बहुत सोच कर समझ कर जिंदगी को आगे बढ़ाएगा।
2: ऐसी होती है जो जुड़ने पर ही समझ में आती है।
0: ब्रेक, म्यूजिकल ब्रेक, ओनली ऑन सुनोशारदा 90.8 FM। गुड मॉर्निंग सुप्रभात, मैं हूं गगन आपके साथ, सिर्फ और सिर्फ सुनोशारदा 90.8 FM पर।

0: कुछ सवालों के जवाब कभी नहीं मिलते हैं। मैं आज तक नहीं समझ पाया कि तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया।
1: हाय नमस्कार, मैं हूं आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
2: वक्त का इशारा, मैं होता हूं 9 to 11। अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। ना टेंशन लेने की जरूरत, ना किसी को टेंशन देने की आवश्यकता। जिंदगी बहुत खूबसूरत है, प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ, खुशी के साथ गुजारते चले जाइए और सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही कम्युनिटी रेडियो स्टेशन विद मी मेरे यानी गगन के साथ। हाय हाय, चाहे तो वॉल्यूम अप कर सकते हैं लेकिन गड्डी बुरे होशो आवाज में चलाएगा। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड नमस्कार।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: कम एंड एक्सप्लोर द वर्ल्ड ऑफ शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट व्हिच मेक्स यू इंडस्ट्री रेडी।
4: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशादा 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजेइंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: So, where are you? The world is here at Sharda University.

0: नमस्कार, स्मार्ट संस्था के साथ मिलकर सुनो शारदा 90.8 FM एक खास कार्यक्रम चला रहा है। इसी के अंतर्गत आइए सुनते हैं ये विशेष जानकारी। जानकारी का विषय है जच्चा बच्चा, पोषण एवं स्वास्थ्य।
1: एरी सुशीला, तेरो बालक ऐसो रो रहे है, भूखो है का?
2: हाँ, भूख ही लग रही होएगी।
1: तो याए शहद दे दे।
2: हाँ, तू 2 मिनट बैठ में लेके आई।
3: मैं दोस्त कितनी बेर बोली है कि 6 महीने को होने से पहले बालक है, माँ के दूध के अलावा कुछ और न देना चाहिए। ये बालक की सेहत को घना नुकसानदायक है।
2: संगीता की भी तो बालक हुआ हो, वो तो शायद देख रही है अपने बालकन ने जब वाके दूध न उतर रहा हो।
3: डॉक्टर की बात तो तेरी बुद्धि में पता न क्यों घुसना रही है। वाने कही ना यू सब देने से बालक बीमार हो जावे। बे मतलब के काम करवा लो बस। बालक के स्तनपान करवाने से बालक की प्रतिरक्षा प्रणाली तगड़ी होवे, जासु बालक संक्रमण, एलर्जी और बाकी बीमारी से दूर रहवे। बालक में हड्डी वाली बीमारी होने का भी खतरा कम रहवे और माँ बालक के संबंध में मिठास भी आवे। और स्तनपान न करवाने वाली महिलाओं में जल्दी गर्भाधारण करने की संभावना बनी रहे। खून की कमी और डिलीवरी के टाइम पे अधिक रक्तस्राव की भी संभावना बनी रहे। स्तन और अंडा से कैंसर को भी खतरा ज्यादा हो गए, तो इसलिए अपने बालक के स्तनपान ही कराएं और 6 महीने का होने से पहले बालक के सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध ही पिलाएं।

0: नवजात शिशु के संपूर्ण विकास के लिए दूध पिलाने वाली माँ को खाना चाहिए ये आहार। जो अपने जन्मजात बच्चों का अच्छा विकास देखना चाहती हैं, उन्हें स्वस्थ और पौष्टिक आहार का सेवन करना चाहिए। आपके द्वारा किए गए स्वस्थ और पौष्टिक आहार का सेवन आपके बच्चे को उचित मात्रा में सभी पोषण तत्व प्रदान करता है और किसी भी प्रकार के पोषण तत्व की कमी से पीड़ित नहीं होने देता। स्वस्थ और पौष्टिक आहार केवल गर्भ अवस्था के दौरान ही आवश्यक नहीं होता है, बल्कि वो आपके स्तनपान की गुणवत्ता के लिए भी जरूरी होता है। स्तनपान कराने वाली महिलाओं को अपने सामान्य आहार में उच्च प्रोटीन, कैल्शियम, पोषण तत्व और विटामिन युक्त आहार का सेवन करना चाहिए, साथ ही उन्हें तरल पदार्थ का भी सेवन करना चाहिए। तो चलिए कुछ ऐसे ही खाद्य पदार्थ के बारे में जानकारी लेते हैं, जिनके सेवन से आपके बच्चे के विकास के लिए संपूर्ण पोषण तत्व प्रदान हो सकते हैं। दूध पिलाने वाली महिला को पीना चाहिए दूध। आपके आहार में कैल्शियम को बनाए रखने और उसे बढ़ाने के लिए दूध आवश्यक है। यह आपके बच्चे की हड्डियों के लिए महत्वपूर्ण है और उनकी हड्डियों में उचित कैल्शियम बनाए रखता है। यह आपके बच्चे के शरीर में एनर्जी बनाए रखने में मदद करता है। स्तनपान कराने वाली माँ को पीना चाहिए अधिक पानी। स्तनपान कराने वाली माताओं को कैफीन युक्त और अल्कोहल पेय पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये रसायन स्तनपान के माध्यम से आपके शिशु के अंदर भी जा सकते हैं। कैफीन युक्त पेय के 3 कप से अधिक का सेवन करने से माताओं को नींद न आने की समस्या हो सकती है और आपके शिशु में चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है। दूध पिलाने वाली माँ का भोजन। बच्चे के जन्म के बाद माँ आहार में खाए हरी पत्तेदार सब्जियाँ। स्तनपान कराने वाली माताओं को हरे पत्ते वाली सब्जियों का उचित मात्रा में सेवन करना चाहिए। हरे पत्ते वाली सब्जियाँ विटामिन और पोषण तत्व जैसे विटामिन ए और कैल्शियम, विटामिन सी, आयरन आदि में समृद्ध होती हैं, जो माँ और बच्चे दोनों के अधिकांश पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करती हैं। बच्चे को दूध पिलाने वाली माँ को खाना चाहिए संतरा। संतरे में विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसके सेवन से माताएं संक्रमण से दूर रहती हैं और उनके बच्चों को प्रतिरक्षा प्रणाली बढ़ाने में भी मदद मिलती है। बच्चे को दूध पिलाने वाली महिला को खाना चाहिए साबुत अनाज। साबुत अनाज फोलिक एसिड में समृद्ध होता है। साबुत अनाज सही तरह से कोशिका में वृद्धि के साथ साथ आपके बच्चों के मस्तिष्क के विकास में भी सहायता करता है। फोलिक एसिड पूरक के रूप में चिकित्सक द्वारा एक बार देने की सलाह दी जाती है। साबुत अनाज में मौजूद फोलिक एसिड इन पौष्टिक जरूरतों को पूरा करने में मददगार है। स्तनपान कराने वाली महिलाएं खाएं मछली। सैल्मन मछली DHA से समृद्ध होती हैं और इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड भी उच्च मात्रा में पाई जाती है। यह आपके बच्चे के मस्तिष्क के विकास के लिए बहुत ही आवश्यक है, हालांकि इसका सेवन सीमित मात्रा में करना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।
1: अभी आप सुन रहे थे जच्चा बच्चा पोषण एवं स्वास्थ्य के संबंध में ये खास जानकारी। ये खास जानकारी सुनो शारदा 90.8 FM पर स्मार्ट के साथ मिलकर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ऐसी अधिक जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM और मैं हूं आपके साथ शशि कपूर। हाजिर हूं सेहत सही लाभ कई प्रोग्राम के अंतर्गत सेहतिया सिंह का एक और नया एपिसोड लेकर। जैसा कि आप शायद जानते हैं, गर्भावस्था के दौरान आपका शरीर बहुत सारे शारीरिक और हार्मोनल परिवर्तनों से गुजरता है। खुद को और अपने बढ़ते बच्चे को ऊर्जा देने के लिए आपको विभिन्न स्रोतों से बढ़िया खाद्य पदार्थ चुनने की जरूरत होती है। स्वस्थ और संतुलित आहार खाने से आपको अच्छा महसूस करने में मदद मिलती है और आपको और आपके बच्चे को वो सब मिलता है जिसकी आपको जरूरत है। आप जो खाना खाते हैं वो आपके बच्चे के पोषण का मुख्य स्रोत है, इसीलिए आपको सभी जरूरी पोषक तत्व मिलना जरूरी है। तो गर्भवती महिलाओं को अपने पोषण का ध्यान कैसे रखना चाहिए, यही सब जानने के लिए हमारी सहयोगी श्रेयसी ने बात की कुछ महिलाओं से, आइए सुनते हैं।
3: नमस्कार, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन। और जैसा कि आप सब जानते हैं, स्मार्ट के सहयोग से सुनो शारदा एक मुहिम चला रहा है, टीबी हारेगा देश जीतेगा। इस मुहिम की एक श्रृंखला सेहत सही लाभ कही के अंतर्गत आज हम आए हैं शारदा अस्पताल में, और आज हम जानेंगे कि जो गर्भवती महिलाएं होती हैं वो अपने पोषण का किस तरह से ख्याल रखें। इसके लिए मेरे साथ जुड़ी हैं ज्योति जी। नमस्ते मैम।
4: हेलो
3: मैम, आप हमें बताइए कि जो गर्भवती महिलाएं होती हैं वो अपने पोषण का किस तरह से ख्याल रखें।
4: हेल्दी फूड खा सकती हैं, जूस पीना चाहिए, और जितना ज़्यादा हो सके पॉजिटिव माइंड रहना चाहिए, क्योंकि उससे इफेक्ट करता है प्रेगनेंसी पे। तो आप जैसा सोचोगे आपके बच्चे पे वैसा ही इफेक्ट पड़ता है। तो ओवरऑल आपको हेल्दी चीज़ें करनी चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, आपको टाइम टाइम पे टेस्ट करवाने चाहिए, डॉक्टर जो प्रेफर करते हैं उसको फॉलो करनी चाहिए, यही सब चीज़ करना चाहिए।
3: धन्यवाद। मेरे साथ आज जुड़ी हैं रितिका। नमस्ते मैम, कैसी हैं आप?
5: नमस्ते, मैं अच्छी हूँ।
3: मैम, आप प्लीज हमें बताइए कि जो गर्भवती महिलाएं होती हैं वो अपने पोषण का किस तरह से ख्याल रखती हैं?
5: देखिए, ज्यादातर तो हम बात करना चाहेंगे ग्रामीण क्षेत्रों के हिसाब से। ग्रामीण क्षेत्रों में गर्भवती महिलाएं अपने आहार का ध्यान रखने के लिए स्थानीय रूप से उपलब्ध, सस्ते और मौसमी फल सब्जियों का सेवन कर सकती हैं, क्योंकि शहरी औरतें अपने व्यायाम पे, अपने खान पान पे काफी ध्यान दे पाती है, क्योंकि उनके जीवन की रहन सहन वैसा होता है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी के कारण औरतें उतना अपने पे ध्यान नहीं दे पाती, तो वो बची हुई दाल और बची हुई सब्जी से ही गुजारा करती हैं। तो लेकिन ऐसे नहीं करना चाहिए, वो भी माँ बनना चाहती है, तो उन्हें शरीर में उन्हें काफ़ी पोषणों की बहुत ज़रूरत होती है, तो जिससे उसे प्रतिदिन कम से कम 300 से अतिरिक्त कैलोरीज ज़रूर लेनी चाहिए, फिर साबुत अनाज, प्रोटीन, सब्जियाँ और फल भी खानी ज़रूरी है।
3: धन्यवाद मैम। हमारे साथ है श्रेया वर्मा जी। नमस्ते मैम।
6: नमस्ते
3: मैम, आप हमें बताइए कि जो गर्भवती महिलाएं होती हैं वो अपने पोषण का किस प्रकार से ख्याल रखती हैं?
6: पहली बात तो गर्भवती महिलाओं को अपने सेहत का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है, उसके साथ साथ उनका एक हेल्दी डाइट लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने फूड को केयरफुली चेक करना, प्रिजर्वेटिव्स लेना, अपनी मेडिसिंस रेगुलरली लेना, और सर्टेन टाइप्स ऑफ खानों को अवॉइड करना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। खाना जो एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है टू कीप द वुमेन ऑल्सो हेल्दी, और बच्चे को भी स्वस्थ रखने में बहुत ज़्यादा भूमिका निभाता है।

0: तो खाने में आपके आयरन होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. लाइक आप टोफू खा सकते हैं, कैल्शियम वाले फूड्स खाइए, दैट आर बेनिफिशियल.
1: धन्यवाद. हमारे साथ है अंशिका. अंशिका जी, हमें बताइए कि जो गर्भवती महिलाएं होती हैं वो अपने पोषण का किस तरह से ख्याल रखती हैं?
2: वो एक अपना पूरा डाइट फॉलो कर सकती है, जो उनको डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन से पूरा डाइट चार्ट मिलता है वो अपनी सेहत का, और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स प्रोटीन्स वगैरह लेके वो अपने अच्छे से अपने बेबी और अपने आप का ख्याल रख सकती
1: है. और कोई टैबू या मिथ के बारे में आप बात करना चाहेंगी?
2: मिथ यही है कि बोलते हैं ज़्यादा ज़्यादा अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाने चाहिए, बट इतने भी नहीं करवाने चाहिए अल्ट्रासाउंड वगैरह, उससे बेबी को भी फर्क पड़ता है ना नेगेटिव वे. तो बस इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए.
3: एक बार फिर से आपका स्वागत है. आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM और मैं हूं आपके साथ शशि कपूर. अभी आप सुन रहे थे कि गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को अपने पोषण का ध्यान कैसे रखना चाहिए, तो महिलाएं इस मुद्दे पर अपने विचार प्रकट कर रही थी. जैसा कि आपने सुना था, सही बात निकल के आती है कि गर्भावस्था के दौरान सही पोषण लेना बहुत जरूरी है. इससे माँ और बच्चे दोनों का विकास बेहतर होता है. गर्भवती महिलाओं को प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम, आयोडीन, विटामिन डी और फॉलेट जैसे पोषक तत्वों की जरूरत होती है. साथ ही साथ समय समय पर अपना चेकअप कराना बहुत जरूरी होता है, अपने स्वास्थ्य के लिए और पेट में पल रहे बच्चे के स्वास्थ्य के लिए. पोषण संबंधी और भी बहुत सी बातें होती हैं जिनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है. कब क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए और कैसे खाना चाहिए, गर्भावस्था के दौरान किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो यही सब जानने के लिए आज हम सेहत सही लाभ कई कार्यक्रम में JRB धारण करने के बाद पहले 3 महीनों में, या जिसे हम ट्राइमेस्टर भी कहते हैं, क्या करना चाहिए ये सब जानेंगे.
1: और सही सूचना देने के लिए हमारे बीच है डॉक्टर वर्षा, जो कि एक डाइटिशियन है शारदा अस्पताल में. स्वागत है मैम आपका हमारे सेहत सही लाभ कई सीरीज में. यह सीरीज एक खास मकसद से चलाई जा रही है. सामुदायिक रेडियो होने के नाते हम जानकारी तो देते ही हैं, लेकिन इस सीरीज में हम ज्ञान के साथ साथ आप कैसे स्वस्थ रहकर दवाई और अस्पताल के चक्कर से बच सकते हैं उसके बारे में बताते हैं.
3: बिल्कुल, जब सरकार इतने सारे टेस्ट, दवाई और स्क्रीनिंग मुफ्त कर रही है आपके अपने आयुष्मान आरोग्य मंदिर के द्वारा या स्वास्थ्य केंद्रों के माध्यम से, फिर आप सही जानकारी पाओ और पैसे बचाओ.
1: तो आज हम बात करेंगे कि गर्भवती महिला का पहला तिमाही पोषण क्यों महत्वपूर्ण होता है, और जानेंगे कि एक सेहतमंद बच्चे को जन्म देने के लिए पहला तिमाही क्यों महत्वपूर्ण होता है.
3: बिल्कुल, गर्भावस्था के पहले 3 महीने यानी कि प्रथम तिमाही बेहद महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि इसी दौरान शिशु के अंगों का निर्माण शुरू होता है. ये समय भ्रूण के विकास के लिए सबसे संवेदनशील होता है और इस दौरान माँ को विशेष देखभाल करने की जरूरत होती है.
1: तो क्यों ना इस एपिसोड में सही जानकारी के लिए हम डॉक्टर वर्षा से बात करें.
3: ये तो बहुत ही पते की बात है, तो चलिए बात करते हैं.
1: सबसे पहले हमें यह बताइए कि गर्भवती महिला के लिए पहला तिमाही माने कि पहले 3 महीने क्यों महत्वपूर्ण होते हैं.
4: जी हाँ, मैं बताती हूँ. पहला तिमाही में भ्रूण का विकास बहुत तेजी से होता है. यह वही समय होता है जब शिशु के अंग विकसित होने लगते हैं, खास तौर पर हृदय, मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी और तंत्रिका तंत्र. अगर इस समय सही पोषण न मिले तो यह शिशु के समग्र विकास को प्रभावित कर सकता है.
3: तो डॉक्टर वर्षा, जैसे ही महिला को पता चले कि वो गर्भवती है तो उसे क्या करना चाहिए?
4: गर्भवती महिला का पता चलते ही जल्द से जल्द किसी नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर, सरकारी या निजी अस्पताल, स्वास्थ्य केंद्र या आंगनवाड़ी केंद्र में अपना पंजीकरण कराना चाहिए. इससे उसे नियमित स्वास्थ्य जाँच, जरूरी दवाइयाँ और सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सकेगा.
3: तो डॉक्टर वर्षा, यहाँ पर हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि पंजीकरण करवाने से महिला को क्या लाभ मिलेंगे?
4: लाभ तो बहुत से मिलेंगे. नजदीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर गर्भावस्था का पंजीकरण करा सकती हैं. यहाँ मुफ्त जांच, दवाएं, वैक्सीन और डिलीवरी सेवाएं मिलती है.
1: आंगनवाड़ी केंद्र या आशा दीदी के पास पंजीकरण करवाने से भी यह लाभ मिलेंगे?
4: जी बिल्कुल, आंगनवाड़ी केंद्र या आशा वर्कर के पास पंजीकरण कराने से भी लाभ मिलेंगे. गांवों और छोटे शहरों में आशा वर्कर और आंगनवाड़ी केंद्र गर्भवती महिलाओं का पंजीकरण करते हैं और उन्हें जरूरी सलाह देते हैं। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना और जननी सुरक्षा योजना जैसे सरकारी योजनाओं का लाभ यहीं से मिलता है।
3: तो डॉक्टर वर्षा, ये सरकारी योजनाएं क्या हैं और इनके अंतर्गत क्या क्या लाभ मिलते हैं?
4: ये बहुत सारी योजनाएं हैं। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, इस योजना के तहत पहली बार गर्भवती महिलाओं को वित्तीय सहायता मिलती है। जननी सुरक्षा योजना, गरीब वर्ग की गर्भवती महिलाओं को अस्पताल में प्रसव और देखभाल के लिए सहायता दी जाती है। ममता योजना, ये राज्य सरकार की योजना है। कई राज्यों में गर्भवती महिलाओं को वित्तीय सहायता और पोषण की सुविधा भी दी जाती है।
1: लेकिन मैम, अगर हम केवल आयुष्मान आरोग्य मंदिर की बात करें तो?
4: देखिए, पंजीकरण तो कहीं भी करवाएं, सारी सुविधाएं मिलेंगी, लेकिन अगर हम आयुष्मान आरोग्य मंदिर की बात करें तो आपको बताना चाहेंगे कि भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है जो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा चलाई जाती है। इसका उद्देश्य प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल को सुलभ और किफायती बनाना है। गर्भवती महिलाओं के लिए यह केंद्र बेहद उपयोगी है, खासकर पहले 3 महीने में जब विशेष देखभाल की जरूरत होती है।
3: तो अगर हम बात करें केवल पहला तिमाही यानी कि 3 महीने और उसमें आयुष्मान आरोग्य मंदिर की भूमिका की, तो हमें वहाँ पाई जाने वाली सुविधा के बारे में बताएं।
4: जैसा कि मैंने बताया, गर्भावस्था की शुरुआती जांच और पंजीकरण बहुत जरूरी है। गर्भधारण की पुष्टि होते ही महिला को नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर या स्वास्थ्य केंद्र में जाकर पंजीकरण करवाना चाहिए। यहाँ मातृ सुरक्षा कार्ड जारी किया जाता है, MCP कार्ड, जिसमें पूरे गर्भकाल के दौरान मेडिकल हिस्ट्री दर्ज की जाती है। उन्हें वहाँ निशुल्क ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, अल्ट्रासाउंड और BP जांच की सुविधा मिलेगी। साथ ही उन्हें फॉलिक एसिड, आयरन और कैल्शियम की गोलियां भी दी जाती हैं, जो भ्रूण के विकास में मदद करती हैं।
1: तो मैम, क्या ये सब सेवाएं निशुल्क मिलती हैं?
4: जी हाँ, गर्भवती महिला को यही नहीं और भी बहुत सी निशुल्क सेवाएं मिलती हैं आयुष्मान आरोग्य मंदिर में, जैसे कि फ्री एंटीनेटल चेकअप। इसमें मौजूद है ब्लड प्रेशर, हीमोग्लोबिन, वजन, शुगर टेस्ट, सोनोग्राफी और अल्ट्रासाउंड, और शिशु की हृदय धड़कन की जांच, फिर जैसे हो गया टेटनस का टीका। यह पहली तिमाही में लगाया जाता है ताकि जच्चा बच्चा टिटनेस से सुरक्षित रहे।
1: क्या सभी दवाएं भी मुफ्त मिलती हैं?
4: हाँ, गर्भवती महिला को गर्भावस्था से जुड़ी सारी दवाइयाँ मुफ्त मिलती हैं।
3: डॉक्टर वर्षा, क्या आप बता सकती हैं कि ये कौन सी दवाइयाँ हैं और क्यों जरूरी हैं?
4: देखो, बच्चे के दिमाग और रीढ़ की हड्डी के विकास के लिए फॉलिक एसिड, ये बहुत जरूरी है जो यहाँ मिलता है। वैसे तो ये आंगनवाड़ी में या आशा दीदी के पास भी मिल सकती हैं। फिर अनीमिया से बचाव और हड्डियों की मजबूती के लिए आयरन और कैल्शियम की गोलियाँ भी मिलती हैं।
1: तो मैम, जब सरकार इतनी बचत करवा रही है, इतनी गोलियां मुफ्त दे रही है, फिर भी बच्चे और माँ इतनी अनिमिक क्यों हैं?
4: जी बिल्कुल सही कहा आपने। आज भी कई महिलाएं जानकारी होने के बावजूद गर्भावस्था के दौरान आयरन, कैल्शियम और फोलिक एसिड की गोलियां नहीं लेती, जिससे न सिर्फ उनका बल्कि उनके आने वाले बच्चे का स्वास्थ्य भी प्रभावित होता है। माँ एनिमिक होगी तो बच्चा भी एनिमिक होगा। गर्भ में पल रहा शिशु माँ की हड्डियों से कैल्शियम लेता है, जिससे माँ की हड्डियाँ कमजोर हो सकती हैं। बच्चे का खून और मस्तिष्क माँ के शरीर से ही विकसित होता है, इसलिए आयरन और कैल्शियम लेना जरूरी है।
3: डॉक्टर वर्षा, अगर माँ को सही मात्रा में पोषक तत्व नहीं मिलेंगे तो शिशु में जन्मजात विकार होने की संभावना बढ़ जाती है। तो पहले 3 महीनों में सही खानपान बेहद आवश्यक है। तो आयुष्मान आरोग्य मंदिर में गर्भवती महिला के लिए और क्या क्या सेवाएं उपलब्ध हैं?
4: सरकारी योजनाएं सभी सरकारी केंद्रों पर मिलती हैं, जैसे आंगनवाड़ी केंद्रों पर भी गर्भवती महिलाओं को पोषण किट दिया जाता है, और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पहली बार गर्भवती होने पर और पंजीकरण करवाने पर 5,000 रुपए की आर्थिक सहायता मिलती है। लेकिन याद रहे, यह सहायता गर्भावस्था के पहले 3 महीने में पंजीकरण कराने पर ही मिलती है। संस्थागत प्रसव अस्पताल में डिलीवरी के लिए आर्थिक सहायता मिलती है। गरीब वर्ग की महिलाओं को 1,000 रुपए से 1,400 की सहायता दी जाती है। आयुष्मान भारत योजना के तहत सरकारी अस्पतालों में निशुल्क प्रसव सेवाएं मिलती हैं। जन्म के बाद शिशु को निशुल्क टीकाकरण मिलता है।
1: यह तो बहुत काम की जानकारी है। हम उम्मीद करते हैं कि ना केवल गर्भवती महिलाएं बल्कि उनके पति, सास ससुर और घर वाले भी हमारा कार्यक्रम सुन रहे होंगे और जान रहे होंगे कि इन सभी सेवाओं का लाभ पाकर वे अपने घर एक स्वस्थ बच्चे का जन्म सुनिश्चित करेंगे और साथ में अपने पैसे भी बचाएंगे।
3: लेकिन श्रेयसी, मैं डॉक्टर वर्षा से जानना चाहता हूँ कि क्या सिर्फ दवाइयाँ काफी हैं या माँ को अपने पोषण का और भी तरीकों से ध्यान रखना चाहिए?
4: जी हाँ, मैं इस बारे में बताना चाहूंगी कि दवाइयाँ सिर्फ सप्लीमेंट है, यानी कि सहायक। मैं आपको विस्तार से बताती हूँ कि पहली तिमाही में गर्भवती महिलाओं को कौन कौन से पोषक तत्वों पर विशेष ध्यान देना चाहिए उसके बारे में बताती हूँ। एक गर्भवती महिला को हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे कि पालक, मेथी, दालें, अंकुरित अनाज, संतरा, चुकंदर, मूंगफली और खून की कमी, जैसे गर्भवती महिलाओं में अनीमिया की बहुत शिकायत रहती है तो उसके बचाव के लिए मां के शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति बनाए रखता है, इसके लिए वे चना, गुड़, अनार, सेब, सूखे मेवे, अंडा, हरी सब्जियों का सेवन कर सकती हैं।
3: और डॉक्टर वर्षा, प्रोटीन और कैल्शियम के लिए क्या कर सकती हैं?
4: प्रोटीन माँ और बच्चे के टिश्यू के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। प्रोटीन हमें मिलता है जैसे दालें, सोयाबीन, अंडा, दूध, पनीर, मछली या ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। और कैल्शियम जरूरी है शिशु की हड्डियों और दांतों के विकास के लिए। ये हमें मिलेगा दूध, दही, छाछ, पनीर, तिल, अंजीर। और सूरज की रोशनी से विटामिन डी मिलता है, तो थोड़ी देर धूप जरूर सेके।
1: लेकिन डॉक्टर वर्षा, कई महिलाओं को शुरू में उनका जी मचलता है और उल्टी की समस्या होती है, ऐसे में वे सही आहार कैसे ले सकती हैं?
4: पहली तिमाही में हार्मोनल बदलावों के कारण मॉर्निंग सिकनेस यानी सुबह के समय जी मिचलाना और उल्टी की समस्या होती है। इसके लिए कुछ उपाय अपनाए जा सकते हैं, जैसे सुबह खाली पेट ना रहे, बिस्तर से उठने से पहले कुछ खा लें, जैसे अदरक वाली चाय या नींबू पानी से जी मिचलाने में राहत मिलती है। दिन भर में कम मात्रा में खाएं, लेकिन बार बार भोजन करें। तला भुना और मसालेदार खाना कम खाएं और खूब पानी पिएं ताकि शरीर हाइड्रेटेड रहे।
3: तो डॉक्टर वर्षा, क्या लंच में ऐसी चीजें भी हैं जो नहीं खानी चाहिए?
4: हाँ जी, इस दौरान कुछ ऐसी चीजें हैं जो बिल्कुल नहीं खानी चाहिए, जैसे जंक फूड और पैक्ड फूड। ये सिर्फ कैलोरीज बढ़ाते हैं, पोषण नहीं देते। ज्यादा चाय, कॉफी पीने से बचें, क्योंकि यह बच्चे के कम वजन का कारण बन सकता है। कच्चा या अधपका अंडा, मांस और मछली, इनमें कीटाणु हो सकते हैं जो संक्रमण फैला सकते हैं। ज्यादा नमक से ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है और ज्यादा शक्कर से वजन बढ़ने का खतरा होता है।
1: बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी थी मैम, बट हमने पोषण पर तो बात कर ली, लेकिन गर्भावस्था में मानसिक स्वास्थ्य भी उतना ही जरूरी है, आप इस पर क्या कहना चाहेंगी?
4: गर्भावस्था के दौरान मानसिक तनाव माँ और शिशु दोनों पर असर डाल सकता है, इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि गर्भवती महिला खुश रहे और तनाव कम करे। इसके लिए योग और मेडिटेशन करें, परिवार से सपोर्ट लें, अच्छी नींद लें और आराम करें, सकारात्मक सोच बनाए रखें और अपने पसंदीदा शौक पूरे करें।
3: डॉक्टर वर्षा, गर्भावस्था से जुड़े आम मिथक हैं और हमारे श्रोताओं ने हमें मैसेज किए हैं कि हम आपसे सच्चाई जानें। पहला मिथक है, अगर गर्भवती महिला को मीठा खाने की इच्छा होती है तो लड़की होगी, और अगर तीखा या नमकीन पसंद आ रहा है तो लड़का होगा।
4: ऐसा नहीं है। मैं ये क्लियर करना चाहूंगी कि गर्भावस्था में क्रेविंग्स, खाने की इच्छा, हार्मोनल बदलाव और पोषण की जरूरतों के कारण होती है। इसका बच्चे के लिंग से कोई संबंध नहीं होता।
1: और दूसरा मिथक ये है कि गर्भवती महिला को दोगुना खाना चाहिए क्योंकि वह दो जिंदगियों को पोषण दे रही है।
4: जी बिल्कुल, ये बात ठीक है। गर्भावस्था में अतिरिक्त पोषण की जरूरत होती है, लेकिन इसका मतलब जरूरत से ज्यादा खाना नहीं है। संतुलित और पौष्टिक आहार जरूरी है, ना कि अधिक कैलोरीज।
3: डॉक्टर वर्षा, हमारे एक और श्रोता जानना चाहते हैं कि पपीता और अनानास खाने से गर्भपात हो सकता है, इसलिए गर्भवती महिला को इनसे बचना चाहिए।
4: पका हुआ पपीता पूरी तरह सुरक्षित है। सिर्फ कच्चे पपीते में लेटेक्स होता है जो अधिक मात्रा में गर्भाशय में संकुचन पैदा कर सकता है, और अनानास को सीमित मात्रा में खाना सुरक्षित है।
1: डॉक्टर, एक और मिथ है कि अगर गर्भवती महिला को बार बार सीने में जलन होती है तो शिशु के सर पर ज्यादा बाल होंगे।
4: नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हार्टबर्न और हार्मोनल बदलाव और पेट पर बढ़ते दबाव के कारण होती है, इसका बच्चे के बालों से कोई संबंध नहीं है।
3: एक और मिथक है कि गर्भावस्था में कोई भी शारीरिक गतिविधि करना हानिकारक हो सकता है।
4: ऐसा भी नहीं है। हल्का व्यायाम करें, जैसे टहलना, प्रेगनेंसी योग, हल्का स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करना फायदेमंद होता है। यह डिलीवरी को आसान बनाता है और शरीर को स्वस्थ रखता है, लेकिन डॉक्टर की सलाह जरूर लें।
1: डॉक्टर, आप इस मिथक पर क्या कहना चाहेंगी? जैसे लोग कहते हैं कि अगर महिला का पेट ऊंचा है तो लड़की होगी और अगर पेट नीचा है तो लड़का होगा।
4: नहीं, पेट का आकार माँ की बॉडी टाइप, मांसपेशियों की ताकत और बच्चे की स्थिति पर निर्भर करता है, ना कि उसके लिंग पर।
3: एक और हमारे श्रोता हैं जो ये जानना चाहते हैं, गर्भावस्था में पति पत्नी को शारीरिक संबंध नहीं बनाने चाहिए क्योंकि इससे बच्चे को नुकसान हो सकता है।
4: गर्भावस्था सामान्य है और डॉक्टर ने कोई रोक नहीं लगाई है, तो सेक्स पूरी तरह सुरक्षित है और यह माँ और पिता के बीच भावनात्मक जुड़ाव भी बढ़ाता है।
1: और मैम, अगर गर्भवती महिला को रोज नहाने से संक्रमण हो सकता है, इसलिए उसे स्नान करने से बचना चाहिए, क्या ये सही है?
4: नहाना पूरी तरह सुरक्षित है और स्वच्छता बनाए रखने के लिए जरूरी भी है। केवल बहुत गर्म पानी से नहाने से बचना चाहिए क्योंकि इससे शरीर का तापमान असामान्य रूप से बढ़ सकता है।
3: एक और मिथक अक्सर हम सुनते हैं, चंद्र ग्रहण के दौरान बाहर जाने से बच्चे को दोष यानी कि शारीरिक विकृति हो सकती है।
4: मैं इस बारे में ये कहना चाहूंगी कि यह सिर्फ एक अंधविश्वास है, चंद्र ग्रहण का माया शिशु पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।
1: एक मिथक ये भी है कि अगर महिला पहले 3 महीने में अपनी गर्भावस्था के बारे में बताए तो बुरी नजर लग सकती है और गर्भपात का खतरा बढ़ सकता है।
4: वैसे वैज्ञानिक रूप से गर्भावस्था के पहले 3 महीने अधिक संवेदनशील होते हैं, इसलिए कुछ कपल्स इसको निजी रखना पसंद करते हैं, लेकिन इसका किसी नजर या अशुभता से कोई संबंध नहीं है।
3: डॉक्टर वर्षा, आपने तो सारे भ्रम खत्म कर दिए, आखिर में आप गर्भवती महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगी?
4: मेरा यही संदेश है कि गर्भावस्था एक सुंदर यात्रा है, इसे तनाव मुक्त और स्वस्थ बनाए रखने के लिए संतुलित आहार लें, खुश रहें और नियमित चेकअप कराते रहें। गर्भावस्था के दौरान बहुत सारी गलत धारणाएं फैली हुई हैं, सही जानकारी रखना और डॉक्टर की सलाह लेना बहुत जरूरी है। अंधविश्वासों के बजाय विज्ञान और स्वास्थ्य पर भरोसा करें। और हाँ, मैं साथ में यह भी कहना चाहूंगी कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर एक बेहतरीन सुविधा है, जहाँ महिलाओं को निशुल्क चिकित्सा, पोषण, टीकाकरण और सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता है। समय पर पंजीकरण कराएं और सभी सेवाओं का लाभ उठाएं। आपका और आपके बच्चे का स्वास्थ्य आपके हाथ में है।
3: बिल्कुल डॉक्टर वर्षा, आज आपने हमारे स्टूडियो में आकर के हमारे श्रोताओं को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी और बहुत सारे मिथक आपने तोड़े, और जरूर हमारे जो श्रोता हैं, सुनने वाले हैं, आपकी बताई गई बातों का जरूर ध्यान रखेंगे और उनको फॉलो करेंगे। कार्यक्रम में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: अच्छे स्वास्थ्य और खुशहाली को बनाए रखने के लिए संतुलित और पौष्टिक आहार जरूरी है।
3: तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म होता है, लेकिन शपथ लिए बगैर तो हम आपसे विदा नहीं लेंगे।
5: हम सब मिलकर आज ये शपथ लेते हैं कि हम सब अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे, अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है। सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे। साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके। नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहें। महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे। जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा, तभी भारत समृद्ध बनेगा। सेहत सही तो लाभ कई। टीवी हारेगा देश जीतेगा।
3: बिल्कुल, अब मुझे समझ आया कि सेहत ही सबसे बड़ा धन है, इसे बनाए रखें, सही जानकारी लें और दूसरों तक भी पहुंचाएं। अगले सप्ताह आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जुड़े रहिए सेहत सही लाभ कही के साथ। नमस्कार।
6: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
7: The world is here.
8: जन जन का रखें ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान। सिर्फ खांसी टीबी का लक्षण नहीं, टीबी के और भी लक्षण हो सकते हैं। बलगम में खून आना, थकान, पुरानी बीमारी, रात में पसीना आना, वजन में गिरावट, हाल में हुए शारीरिक बदलाव, शरीर के किसी भी हिस्से में गांठ होना, सीने में दर्द, बुखार, बलगम वाली खांसी, तो आज ही जांच कराएं। और अधिक जानकारी के लिए निश्चय संपर्क हेल्पलाइन नंबर 1800 11 4 6 टोल फ्री पर कॉल कर सकते हैं।
9: हाय, नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। में आज हम बात करते हैं कि किस तरीके से हम अपने बच्चों की निगरानी कर सकते हैं, किस तरीके से बच्चों को हम संस्कार दे सकते हैं और किस तरीके से वो अगर गलत दिशा में जा रहे हैं तो हम उनको कैसे रोक सकें। जी हाँ, कुछ ऐसी बातें कहीं ना कहीं सुनने को समझने को मिल जाती है, लेकिन कुछ चुनिंदा बातों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो निश्चित तौर पर आपका बच्चा आगे चलकर आपका नाम रोशन करेगा, देश का भविष्य वो तय करेगा। जी हाँ, बात करते हैं आपका बेटा या बेटी को अगर कुछ ऐसे सबक सिखाएंगे तो निश्चित तौर पर आपका बच्चा एक संस्कारी बेटा या बेटी बनकर आगे बढ़ता रहेगा। जरूरी है कि उनकी गलतियों पर हमें पर्दा नहीं डालना है, जरूरी है कि उनकी गलतियों को सुधार में लाकर आगे बढ़ते हुए चले जाना है। बात करते हैं कुछ ऐसे ही विषय के विषय में। बच्चे बड़े होकर क्या बनेंगे इसका पता किसी को नहीं, लेकिन वो अच्छे इंसान बनेंगे या नहीं ये आप पर निर्भर करता है। आप सोच रहे होंगे कि कैसे, चलिए हम आपको बताते हैं। दरअसल आपने ये कहावत तो सुनी ही होगी कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होंगे। बच्चे भी वही आम की ही तरह होते हैं जिसको आपको बनाने में बड़ी मेहनत लगती है। अगर आप अपने बच्चों को अच्छी आदतें नहीं सिखाएंगे तो आपके लिए बच्चों के बेहतर भविष्य को तय करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जरूरी है कि शुरू से ही बच्चों को अच्छी आदतें सिखाई जाएं। हालांकि मौजूदा वक्त में हम बच्चों की गलतियों को नजरअंदाज कर उन पर हंसते हैं जो उन्हें आगे चलकर बिगाड़ने का काम करती हैं। आइए आपको बताते हैं कि बच्चों को सिखाई जाने वाली 5 ऐसी अच्छी आदतों के बारे में जो उन्हें अच्छा इंसान बनने में मदद करेंगी। बात करते हैं सबसे पहले ईमानदारी के विषय में। ईमानदारी एक ऐसा विषय है कि अगर आपके पास ये है तो निश्चित तौर पर आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता और इसकी जो खुशबू है वो चारों दिशाओं में फैलती है। जी हाँ, बच्चों को शुरू से ही ईमानदारी के रास्ते पर चलना सिखाना होगा और इससे आपको 2 फायदे होंगे। पहला तो ये कि बच्चा सच बोलने में कभी आपसे कतराएगा नहीं और दूसरा उसे अपने व्यक्तित्व को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। ईमानदारी बच्चों में मासूमियत बरकरार रखने का काम करती है। आप बच्चों को झूठ बोलने के परिणामों के बारे में बताएं और उन्हें गलती स्वीकार करना सिखाएं। अच्छा स्वभाव यानी कि गुड मैनर्स टू टीच टू किड्स। माता पिता को अपने बच्चों को जल्द से जल्द अच्छा स्वभाव अपनाना सिखाना चाहिए। अच्छा स्वभाव आपके बच्चे का सोशल IQ तो बढ़ाता ही है, साथ ही उसे बेहतर तरीके से निखार कर सामने आने में भी मदद करता है। अच्छा स्वभाव उसे उसके जीवन में अच्छा इंसान बनने में भी मदद करता है। बात करते हैं हेल्दी फूड्स के विषय में। हेल्दी फूड्स का चुनाव करना ये भी एक बड़ा सब्जेक्ट है, यानी हेल्दी फूड सिलेक्शन टू टीच टू किड्स। माता पिता को अपने बच्चों को हमेशा हेल्दी फूड्स का विकल्प चुनना सिखाना चाहिए। जब बच्चों को हेल्दी फूड्स के बारे में पता होगा तो अपने जीवन में हेल्दी रहना वो सीख पाएंगे, हेल्दी लाइफस्टाइल भी फॉलो करेंगे। हेल्दी फूड्स बच्चों के स्वास्थ्य को हेल्दी रखने की एक गारंटी है जिसे हर माता पिता को अपने बच्चों को सिखाना चाहिए। बात करते हैं सम्मान की। सम्मान हर कोई चाहता है, लेकिन अगर आप किसी को सम्मान देते हैं तो निश्चित तौर पर ये आपके सम्मान की बात है, यानी कि रेस्पेक्ट टू टीच टू किड्स। छोटे बड़ों का सम्मान करना हर किसी को आना चाहिए। ये एक ऐसा भाव है जो हर बच्चे में होना चाहिए, फिर चाहे वो बड़े हों या छोटे, सभी का आदर बहुत जरूरी है। एक अच्छा इंसान बनने के लिए बच्चों को शुरू से ही आदर सम्मान करने का भाव सिखाना बहुत जरूरी है। बात करते हैं टाइम की, यानी कि टाइम मैनेजमेंट की। इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में बच्चों को समय का प्रबंधन सिखाना बहुत जरूरी है। बच्चों को ये पता होना चाहिए कि उन्हें अपना समय कब कहाँ खर्च करना है, क्योंकि बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता और उस समय को बर्बाद करना आपके लिए और भी ज्यादा नुकसानदेह साबित हो सकता है। इसलिए बच्चों को समय का प्रबंधन सिखाना बहुत जरूरी है। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ।

0: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: मेरा नाम गोलू है, मुन्नी का बड़ा भाई। एक दिन स्कूल से आया तो देखा मुन्नी रो रही थी, सोचा प्यास लगी होगी। मैं भाग के दादी के पास गया, बोला मुन्नी को पानी पिला दो ना। दादी ने एकदम मना कर दिया, बोली 6 महीने तक मुन्नी सिर्फ मम्मी का दूध पिएगी और कुछ खिलाया पिलाया तो 10 हो सकते हैं। अगली बार मुन्नी रोई ना, मैंने उसके कान पे जाके कह दिया 6 महीने तक सिर्फ मम्मी का दूध पीना है।
2: स्तनपान विकल्प नहीं संकल्प है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: स्मार्ट के सहयोग से अभी आप सुन रहे थे ये खास जानकारी। स्वास्थ्य बाण कार्यक्रम के अंतर्गत ऐसी ही अधिक जानकारी के लिए सुनते रहिए।
4: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
3: महावारी संबंधित कुछ गलत फहमियाँ हैं या यूँ कहें कि कुछ भ्रांतियाँ हैं, आइए उनको दूर करते हैं और जानते हैं। लोगों में महावारी को लेकर कई गलत भ्रांतियाँ और गलत फहमियाँ होती हैं, जैसे कि महावारी गंदी और हर महीने होने वाली शर्मनाक घटना है।
5: महावारी के समय सभी लड़कियों के लिए सभी गतिविधियों से दूर रहने का समय होता है।
3: महावारी का समय स्कूल न जाने का समय है।
5: महावारी एक व्यक्तिगत मुद्दा है जो केवल महिलाओं से संबंधित है।
3: याद रखें, मासिक धर्म एक सामान्य शारीरिक घटना है।
5: महावारी एक नियमित होने वाली प्रक्रिया है और यदि लड़कियां इसमें सहज महसूस करती हैं तो वे सभी प्रकार की गतिविधियों में भाग ले सकती हैं।
3: जब तक तेज दर्द या गंभीर परेशानी न हो तब तक महावारी का समय स्कूल या अन्य गतिविधियों से छुट्टी का दिन नहीं होना चाहिए। स्कूल में भी उनके लिए पैड बदलने के साफ और सुरक्षित जगह उपलब्ध करवाना अति आवश्यक है।
5: बहुत से लोगों के पास उनके महावारी प्रबंधन के लिए आवश्यक संसाधन, उचित स्वच्छता और सहयोग नहीं होता है। भारत में लड़कियां हर महीने अपनी महावारी की वजह से स्कूल में 1 या 2 दिन अनुपस्थित रहती हैं, जो कि उनकी शिक्षा और भविष्य को काफी हद तक प्रभावित कर सकता है।
3: महावारी संबंधी अधिक जानकारी के लिए नजदीकी ANM या आशा से संपर्क।

भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, OTT प्रोडक्शन, एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।

0: भाई?
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

किसान मित्रों नमस्कार, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM और मैं हूं आपके साथ शशि कपूर, लेकर हाजिर हूं आपका वही मनपसंद कार्यक्रम खेत खलियान लोक संगीत के साथ। किसान मित्रों, आज भी हमारे गांव में शहर में ऐसे नागरिक मौजूद हैं जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण वो खुद का घर बनवाने में और पुराने घर की मरम्मत करवाने में सक्षम नहीं है। तो ऐसे सभी नागरिकों के लिए भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना और ग्रामीण आवास योजना चलाई जा रही है। अगर आप गांव में रहते हैं तो आप ग्रामीण आवास योजना का लाभ ले सकते हैं। अगर आपका जो गांव है वो शहरी क्षेत्र में आता है तो आप शहरी आवास योजना का लाभ उठा सकते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से नागरिकों को घर की मरम्मत करवाने और घर बनवाने के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत की थी और इस योजना के अंतर्गत देश के अनेक राज्यों में लाखों नागरिकों को पक्के मकान बनवाने के लिए आवास योजना की राशि उनके बैंक खातों में दी भी जा चुकी है। और अब किसान मित्रों बात करते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए पात्रता की। तो किसान मित्रों, ऐसे परिवार जो मिट्टी के कच्चे घरों में निवास कर रहे हैं उनको इस योजना का लाभ दिया जा रहा है। और ऐसे नागरिक जिनको अभी तक भारत सरकार और राज्य सरकार की तरफ से कोई भी आवास योजना का लाभ नहीं दिया गया है, देश के ऐसे नागरिक जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है तो उनका पक्का घर बनवाने के लिए इस योजना के अंतर्गत पैसा दिया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना में महिलाओं को आवास के लिए विशेष प्राथमिकता दी जाती है। इससे महिलाएं खुद के घर की मालिक बनकर समाज में सशक्त हो सकती हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए जिन प्रमाण पत्रों की आवश्यकता होती है उसमें आधार कार्ड, आय का प्रमाण पत्र, BPL सूची का फोटोकॉपी, आवेदनकर्ता का बैंक खाता, मोबाइल नंबर, वोटर आईडी कार्ड और पासपोर्ट साइज फोटो। तो हमारे वो गरीब बहन भाई जिनको अभी तक प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिला है वो अपने नजदीक जन सुविधा केंद्र पर जाकर प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। तो किसान मित्रों, ये तो आपने जाना प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में। और आइए अब आपको ले चलते हैं मनोरंजन की तरफ और आपको सुनवाते हैं एक उपदेश। कलाकार हैं योगेंद्र निमचाना।

किसान मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, अधिक उत्पादन के लिए खेती में अधिक मात्रा में रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग करना पड़ता है, जिससे खेती में अत्यधिक लागत आ रही है और जल, भूमि, वायु और वातावरण भी प्रदूषित

दूषित हो रहा है, साथ ही खाद्य पदार्थ भी जहरीले हो रहे हैं। इसीलिए इस प्रकार की सभी समस्याओं से निपटने के लिए जैविक खेती करने की सिफारिश हमारे कृषि वैज्ञानिक करते हैं। भारत सरकार भी इस खेती को अपनाने के लिए प्रचार प्रसार कर रही है, साथ ही राष्ट्रीय जैविक खेती मिशन भी चला रही है, जिसके अंतर्गत जैविक खेती करने वाले किसानों को वित्तीय सहायता भी दी जाती है और जैविक खेती करने के तौर तरीके भी सिखाए जाते हैं। किसान मित्रों, रासायनिक खादों के बेहिसाब प्रयोग से मिट्टी की उर्वरा शक्ति दिन प्रतिदिन नष्ट होती जा रही है। मिट्टी की उर्वरा शक्ति बचाने में जैविक उर्वरक काफी कारगर हैं, तो किसान मित्रों आप भी जैविक खेती करके कम लागत में अधिक उत्पादन कर सकते हैं। इसके लिए बस जरूरत है आपको जागरूक होकर जैविक खेती करने के तौर तरीके से भली भांति परिचित होने की। जैविक विधि द्वारा खेती करने से उत्पादन की लागत तो कम होती है, इसके साथ ही आपको आय अधिक प्राप्त होती है और अंतरराष्ट्रीय बाजार की स्पर्धा में जैविक उत्पाद अधिक खरे उतरते हैं, जिसकी वजह से आप सामान्य उत्पादन की अपेक्षा अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। किसान मित्रों, आधुनिक समय में निरंतर बढ़ती हुई जनसंख्या, पर्यावरण प्रदूषण, भूमि की उर्वरा शक्ति का संरक्षण और मानव स्वास्थ्य के लिए जैविक खेती की राह अत्यंत लाभदायक है। तो किसान मित्रों, ये तो बात रही जैविक खेती की, और आइए अब आपको सुनवाते हैं एक रागनी। कलाकार हैं ज्ञानेंद्र सरधाना और किस्सा रहेगा रामायण का।

किसान मित्रों, अभी आप ज्ञानेंद्र सरधाना से ये रागनी सुन रहे थे, किस्सा था रामायण का। किसान मित्रों, ऐसा देखा गया है कि हमारे जो पशुपालक भाई हैं वो दुधारू पशुओं पर तो बहुत अधिक ध्यान देते हैं, मगर जो नवजात और छोटे पशु हैं उन पर इतना ध्यान नहीं देते और उनके प्रबंधन को महत्वपूर्ण नहीं समझते, क्योंकि उनसे उन्हें कोई तत्कालिक लाभ नहीं मिलता है। और किसान मित्रों, आपको बता दें कि एक शोध से ये बात सामने आई है कि उचित प्रबंधन के अभाव में 15-20% जो नवजात पशु होते हैं वो जन्म के एक महीने की अवधि में मर जाते हैं। तो सभी पशुपालक भाइयों को ये बात समझनी चाहिए कि पशुधन का भविष्य नवजात पशु की देखभाल और प्रबंधन पर निर्भर करता है, और प्रत्येक पशुपालक को नवजात और छोटे पशुओं के प्रबंधन संबंधी सभी बारीकियों को ध्यान में रखना चाहिए। किसान मित्रों, नवजात पशुओं को दिया जाने वाला सबसे पहला और सबसे जरूरी आहार है माँ का पहला दूध, मतलब खीस। खीस का निर्माण माँ के द्वारा नवजात पशु के जन्म से 3-7 दिन बाद तक किया जाता है, और ये नवजात पशु के लिए पोषण और तरल पदार्थ का प्राथमिक स्रोत होता है। ये नवजात पशु को आवश्यक पोषक तत्व उपलब्ध करवाता है जो उसे संक्रामक रोगों और पोषण संबंधी कमियों का सामना करने की क्षमता देता है। यदि खीस उपलब्ध हो तो जन्म के बाद पहले 3 दिनों तक नवजात पशु को खीस पिलाते रहना चाहिए। जन्म के बाद खीस के अतिरिक्त नवजात पशु को 3-4 सप्ताह तक माँ के दूध की आवश्यकता होती है। उसके बाद नवजात पशु वनस्पति से प्राप्त माट और शर्करा को पचाने में सक्षम हो जाता है। नवजात पशुओं को खिलाने के लिए इस्तेमाल होने वाले बर्तनों को अच्छी तरह साफ रखना चाहिए। इन्हें और खिलाने में इस्तेमाल होने वाली अन्य वस्तुओं को साफ और सूखे स्थान पर रखना चाहिए। नवजात पशुओं के रहने के स्थान पर अच्छा बिछौना होना चाहिए ताकि आराम से और सूखी अवस्था में वो रह सकें। लकड़ी के बुरादे या पुआल का इस्तेमाल बिछोने के लिए सबसे अधिक किया जाता है। नवजात पशु के ऐसे बाड़े जो घर के बाहर हों, आंशिक रूप से ढके हुए और दीवार से घिरे होने चाहिए ताकि धूप की तेज गर्मी या ठंडी हवा या फिर यूं कहें वर्षा और तेज हवा से नवजात पशु की सुरक्षा हो सके। नवजात पशुओं को बीमारियों से बचाकर रखना उनकी आरंभिक वृद्धि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, और इससे उनकी मृत्यु दर कम होती है। साथ ही बीमारी से बचाव बीमारी के इलाज की तुलना में कम खर्च में किया जा सकता है। नवजात पशुओं का नियमित रूप से निरीक्षण करें, उन्हें ठीक तरह से खिलाएं और उनके रहने की जगह और परिवेश को स्वच्छ रखें। तो हमारे पशुपालक भाई इन सब बातों का जरूर ध्यान रखेंगे और वो अपने नवजात पशुओं का उचित प्रबंधन करेंगे। तो पशुपालक भाइयों, ये तो आपने जाना कि हमें नवजात पशुओं की किस तरह से देखभाल करनी चाहिए। और अब कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवाते हैं एक रागनी। कलाकार हैं कोशिंदर खदाना और किस्सा रहेगा सत्यवान सावित्री का।

कोशिंदर खदाना द्वारा गाई गई इसी रागनी के साथ आज का खेत खलियान कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। सभी किसान मित्रों को नमस्कार।

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया

0: আবার ছা জানিকা স্টোরি টেলিং कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in। ग्रेटर नोएडा के शारदा अस्पताल ने समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझते हुए
1: ग्रामीण और गरीब तबके के मरीजों के लिए 500 बेड समर्पित किए हैं।
0: अब महंगे इलाज और दवाइयों से मिलेगा आपको छुटकारा,
1: क्योंकि सरकारी अस्पताल की तर्ज पर शारदा अस्पताल में आधारभूत जांचें, दवाइयां, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और डॉक्टर की सलाह समेत सभी सुविधाएं मुफ्त दी जा रही है। अधिक जानकारी के लिए 7428292462 या फिर 9803742732 पर संपर्क करें।
2: हाय, मैं हूं रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा @90.8 FM।

0: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.
1: नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं आज आपसे एक टीबी की बात करने आया हूँ। एचआईवी और टीबी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक एचआईवी रोगी को टीबी होने का खतरा आम आदमी से 10 गुना अधिक होता है। अगर एचआईवी संक्रमित व्यक्ति को टीबी होता है तो टीबी का रोग एचआईवी को एड्स में तेजी से बदल देता है। टीबी के इलाज का कोर्स पूरा करने पर एचआईवी रोगी टीबी से पूरी तरह मुक्त हो सकता है। मैं विनती करता हूं कि हर एचआईवी मरीज तुरंत टीबी की जांच कराएं और सभी टीबी मरीज भी एचआईवी की जांच कराएं।
2: अधिक जानकारी के लिए 1800-11-6666 पर संपर्क करें।
3: टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
4: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
5: The world is here.

0: आइए जानते हैं माहवारी अनियमितताओं के बारे में। अगर आप गर्भवती नहीं हैं और आपकी माहवारी 3 या उससे अधिक महीने तक नहीं आती है,
1: अचानक से आपका मासिक धर्म अनियमित हो गया है,
0: आपकी माहवारी 7 दिनों से अधिक समय तक चलती है,
1: आपको हर घंटे या 2 घंटे पर पैड या टैम्पॉन बदलने की जरूरत पड़ती है,
0: माहवारी के दौरान आप बहुत अधिक दर्द का सामना करती हैं,
1: आपका मासिक चक्र न्यूनतम 21 दिन और अधिकतम 35 दिनों से अलग है।

हे गाइस व्हाट्स अप, क्या कर रहे हैं इस समर आप? यदि कुछ नहीं तो इस समर समर टेक एक्सप्लोरर 2026 करते हैं। शारदा यूनिवर्सिटी लेकर आ रहा है 15 डेज समर स्कूल प्रोग्राम। 25 मई से लेकर 8 जून 2026 शारदा यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा, सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक, जहां सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। लर्निंग कोडिंग, एआई, साइबर सिक्योरिटी, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एंड मिनी प्रोजेक्ट्स विद एक्सपर्ट फैकल्टी। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज कॉल डॉक्टर रमनीत 9878937700। सीट्स आर लिमिटेड, हरी अप, कहीं देर ना हो जाए।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: कम एंड एक्सप्लोर द वर्ल्ड ऑफ शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट व्हिच मेक्स यू इंडस्ट्री रेडी।
4: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशाद 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आर्जिंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: So, where are you? The world is here at Sharda University.
4: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ। हमारा सामुदायिक रेडियो स्टेशन यही कहता है कि हम सबको महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए। और भारतीय संस्कृति की अगर मैं बात करूं तो ये सच है, महिलाओं का आदर किया जाता है और उनको पूजा भी जाता है। लेकिन इसके विपरीत अगर हम दूसरी पिक्चर अगर देखें तो कहीं ना कहीं ये बातें सामने आती हैं कि महिलाओं के साथ बहुत ज्यादा अत्याचार भी होते हैं, यानी हिंसा भी होती है। तो यही एक प्रयास है कि महिला हिंसा के खिलाफ सामूहिक प्रयास। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम बात करेंगे आशा वर्कर के बारे में। आज हम बात करेंगे महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा को रोकने के लिए कानूनी उपाय के विषय में। बात करते हैं कानून के बारे में, बात करेंगे अपराध के बारे में और कानूनी कार्यवाही के बारे में। तो सबसे पहले कानून आता है गर्भधारण एवं प्रसव पूर्व जांच तकनीक अधिनियम। ये अधिनियम गर्भधारण के पूर्व या बाद में लिंग निर्धारण की रोकथाम के लिए है। अपराध किस तरीके का अपराध है, आइए बात करते हैं। अल्ट्रासाउंड और एमनियोसिंटोसिस यानी बच्चेदानी के पानी की जांच, इसके माध्यम से ये पता लगाने की कोशिश करना कि गर्भ में पल रहा बच्चा लड़का है या लड़की। दूसरा बिंदु इसी के अंतर्गत आता है कि कोई भी प्रयोगशाला, संस्थान या अस्पताल जो गर्भ में पल रहे बच्चे के बारे में ये पता लगाने के लिए कोई भी जांच करे कि वो लड़का है या लड़की। तीसरा बिंदु आता है इसी के अंतर्गत, कोई भी व्यक्ति गर्भवती महिला या उसके रिश्तेदारों को किसी भी तरह से ये बताने की कोशिश करे कि गर्भ में पल रहा बच्चा लड़का है या लड़की। अगला बिंदु है, कोई भी व्यक्ति जो ऐसे अस्पताल का किसी भी माध्यम से प्रचार करने की कोशिश करे कि जो कि लिंग चयन की सुविधाएं प्रदान करता हो। इसी के अंतर्गत बात सामने आती है, ऐसा कोई भी अस्पताल जो लिंग निर्धारण की इन तकनीकों का उपयोग कर रहा हो और उचित अधिकारी द्वारा पंजीकृत नहीं किया गया हो। कोई भी परिवार या उनके रिश्तेदार जो गर्भ के बच्चे का लिंग जानने की कोशिश करे। आखिरी बिंदु है, जब ऐसी जांच करने के लिए महिला से निर्धारित प्रारूप में लिखित सहमति लेकर इसकी प्रतिलिपि यानी कॉपी न दी गई हो। बात सामने आती है, किसी तीसरे या अन्य व्यक्ति द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई जा सकती है, ये एक सवाल है। जवाब है हाँ। कानूनी कार्यवाही क्या है, सजा का प्रावधान क्या है, बात करते हैं। किसी भी ऐसे पेशेवर व्यक्ति या कर्मचारी एवं वो व्यक्ति या परिवार को जो इस कानून का उल्लंघन करता है, उसे 3 साल तक की जेल की सजा और 50,000 रुपए जुर्माना लग सकता है। अगला बिंदु इसी में, ऐसा व्यक्ति या परिवार जो कि इस अधिनियम के अंतर्गत आगे भी अपराध करता है, उसको 5 साल तक की जेल और 1,00,000 रुपए तक का जुर्माना। क्या ये संज्ञेय अपराध है अथवा क्या पुलिस तुरंत गिरफ्तार कर सकती है? हाँ। क्या पुलिस जज के आदेश के बिना गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को रिहा कर सकती है? उत्तर है नहीं। अब बात करते हैं जो कि अगला कानून है, घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा का कानून। इसके अंतर्गत बात सामने आती है अपराध की। घरेलू हिंसा में ये सभी शामिल हैं, वास्तव में किया गया कोई उत्पीड़न या उसकी धमकी जो शारीरिक, यौनिक, शब्दों के द्वारा भावनात्मक या आर्थिक हो सकता है। कानूनी कार्रवाई क्या है, सजा क्या है, बात करते हैं। 1 साल की जेल या अधिकतम 20,000 रुपए तक का जुर्माना। मुख्य बिंदु क्या है उसके बारे में बात करते हैं। इस अधिनियम के अंतर्गत एक महिला हिंसा के खिलाफ आवाज उठा सकती है और संरक्षण अधिकारी के पास घरेलू हादसे की रिपोर्ट यानी DIR डोमेस्टिक इंसिडेंस रिपोर्ट दर्ज करा सकती है। पुलिस थाने में FIR दर्ज करा सकती है या सीधे मजिस्ट्रेट यानी न्यायाधीश के पास जा सकती है। अगला बिंदु है, इसी अधिनियम के अंतर्गत महिला को संरक्षण का आदेश, अभिरक्षा यानी सुपुर्दगी का आदेश, आर्थिक सहायता, सुरक्षित आवास का अधिकार, आश्रय घर एवं स्वास्थ्य सुविधाओं का अधिकार मिला हुआ है। सवाल आता है, क्या ये संज्ञेय अपराध है अथवा क्या पुलिस तुरंत गिरफ्तार कर सकती है? उत्तर है, गिरफ्तारी तभी होगी इस संबंध में जब अपराध या समस्या यानी कि जैसे मारपीट या दहेज से संबंधित प्रताड़ना किसी अन्य कानून जैसे भारतीय दंड संहिता IPC के अंतर्गत गिरफ्तारी लायक अपराध की श्रेणी में आते हों। अब बात आती है कि सजा क्या होगी यानी कि कानूनी कार्यवाही क्या होगी। एक पुलिस अधिकारी, संरक्षण अधिकारी, सेवा प्रदाता या मजिस्ट्रेट जिसे कहा जाता है, न्यायाधीश जिसे घरेलू हिंसा की शिकायत मिली है या वो घरेलू हिंसा की किसी जगह पर उपस्थित है या जब उसे घरेलू हिंसा की घटना की रिपोर्ट दी जाती है, ऐसी परिस्थिति में वो अधिकारी जो अभी अभी मैंने यहाँ डिस्कस किया, उन अधिकारों के बारे में, उन सुविधाओं के बारे में, राहत के बारे में, सभी आदेशों के बारे में वो बताएगा। अगला कानून क्या है, अगला सजा क्या है, अगला प्रश्न क्या है, उत्तर क्या है, इसके बारे में जानेंगे जरूर, मगर एक छोटे से अंतराल के बाद।

सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ। आज हम बात कर रहे हैं महिला हिंसा के खिलाफ सामूहिक प्रयास, और इन्हीं सारी बातों के माध्यम से हम जान पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि एक महिला को या एक समझदार व्यक्ति को क्या करना चाहिए। बात हो रही है कानूनों के बारे में। अगला कानून है दहेज रोकथाम का अधिनियम, दहेज दिए जाने या दहेज स्वीकार किए जाने की रोकथाम के लिए। ये बात इसके अंतर्गत आती है। अपराध यानी दहेज लेना, देना या उसकी मांग करना अपराध की श्रेणी में आता है। किसी तीसरे या अन्य व्यक्ति द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई जा सकती है? जवाब है हाँ। कानूनी कार्रवाई क्या है? दहेज लेने या देने के लिए कम से कम 5 साल की जेल की सजा और 15,000 रुपए या दहेज की राशि के बराबर का जुर्माना, दोनों में जो भी ज्यादा हो। अगला बिंदु, दहेज की मांग के लिए 6 माह से लेकर 2 वर्ष तक की जेल की सजा और 10,000 रुपए जुर्माना। क्या ये संज्ञेय यानी कॉग्निजिबल अपराध है, अथवा क्या पुलिस तुरंत गिरफ्तार कर सकती है? जवाब है नहीं। अगला प्रश्न है इसी से संबंधित, क्या पुलिस जज के आदेश के बिना गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को रिहा कर सकती है? जवाब है नहीं। अब बात करते हैं अगले कानून के बारे में, बाल विवाह की रोकथाम का अधिनियम। ये एक अपराध है। किसी भी 2 व्यक्ति की शादी बाल विवाह है यदि उनमें से एक भी कानूनी रूप से बालिग होने की उम्र से कम है। सवाल पैदा ये होता है कि किसी तीसरे या अन्य व्यक्ति द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई जा सकती है? जवाब है हाँ। कानूनी कार्रवाई क्या होगी यानी सजा क्या होगी? बात करते हैं, कोई भी पुरुष जो 18 साल से ज्यादा की उम्र का है, किसी नाबालिग लड़की से शादी करता है, या ऐसा कोई भी व्यक्ति जो किसी बाल विवाह के समारोह का संचालन करता है या उसे कराता है, उसे 2 साल तक की जेल की सजा हो सकती है या जुर्माना हो सकता है। मुख्य बिंदु, जैसे जिन लड़कों और लड़कियों का नाबालिग उम्र में जबरदस्ती बाल विवाह कराया गया है, उन्हें ये अधिकार है कि बालिग होने के 2 साल के अंदर वो अपनी इस शादी को खत्म कर सकते हैं, और कुछ परिस्थितियों में नाबालिग उम्र में की गई शादी को बालिग उम्र में पहुंचने के लिए पहले भी खत्म किया जा सकता है। अब सवाल पैदा ये होता है कि क्या ये संज्ञेय यानी कॉग्निजिबल अपराध है, अथवा क्या पुलिस तुरंत गिरफ्तार कर सकती है? जवाब है हाँ। क्या पुलिस जज के आदेश के बिना गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को रिहा कर सकती है? जवाब है नहीं। इसी के अंतर्गत सजा आती है, सभी कीमती सामान, पैसा और उपहार अनिवार्य रूप से वापस किए जाएंगे। यदि शादी खत्म की जाती है और लड़की को रहने के लिए एक स्थान उपलब्ध कराना होगा जब तक वो बालिग न हो जाए। इसी के अंतर्गत बात सामने आती है कि बाल विवाह से पैदा हुए बच्चे वैध माने जाएंगे, और न्यायालयों से ये अपेक्षा की जाती है कि बच्चों के उचित हित को ध्यान में रखते हुए उनकी सुपुर्दगी उनके माता पिता को दी जाए। आप कहीं जाएगा मत, सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ।

तो बहुत बहुत स्वागत आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM मेरे यानी गगन के साथ। महिला हिंसा के खिलाफ सामूहिक प्रयास, इसके अंतर्गत अब हम बात कर रहे हैं महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा को रोकने के लिए कानूनी उपाय के विषय में। अब बात करते हैं एक और नए कानून के बारे में, बात करते हैं भारतीय दंड संहिता यानी IPC 1860 के विषय में। कानून का नाम एसिड यानी तेजाब फेंकना, धारा 326A और B। अपराध, एसिड यानी तेजाब फेंकना या ऐसा करने का प्रयास करना चाहे इससे चोट पहुंची हो या नहीं। सवाल पैदा ये होता है कि किसी तीसरे या अन्य व्यक्ति द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई जा सकती है? जवाब है हाँ। कानूनी कार्रवाई क्या होगी? कम से कम 10 वर्ष की जेल की सजा जो उम्र कैद तक बढ़ाई जा सकती है और एक उचित तर्क संगत जुर्माना, चिकित्सा संबंधी खर्चों के लिए साथ ही उत्पीड़ित व्यक्ति के लिए मुआवजा। एसिड यानी तेजाब से हमला, कम से कम 5 साल की सजा जो 7 साल तक बढ़ाई जा सकती है। हमला करने वाले को जुर्माना भी देना होगा। सवाल ये सामने आता है कि क्या ये संज्ञेय यानी कॉग्निजिबल अपराध है अथवा क्या पुलिस तुरंत गिरफ्तार कर सकती है? जवाब है हाँ। प्रश्न ये भी सामने आता है क्या पुलिस जज के आदेश के बिना गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को रिहा कर सकती है? जवाब है नहीं। यौन उत्पीड़न, धारा 354, धारा 354A, धारा 509, ये कानून का नाम है। अपराध इसके अंतर्गत आता है नंबर 1 शारीरिक छेड़छाड़ और अन्य हरकतें जिसमें अनचाहे और अन्य तरह के भद्दे यौन इशारे शामिल हैं। नंबर 2 किसी तरह के यौन अनुग्रह के लिए आग्रह या मांग करना। नंबर 3 यौन संबंधित अर्थों वाली टिप्पणी करना। नंबर 4 जबरन अश्लील साहित्य, फिल्में या ऐसी कोई भी सामग्री दिखाना। नंबर 5 कोई भी अनचाहा शारीरिक, मौखिक या अन्य गैर मौखिक व्यवहार जो कि यौन अर्थों वाला है। ये सभी इंटरनेट, फोन, पत्र या फोटो के द्वारा किए गए यौन उत्पीड़न पर भी लागू होंगे। इसके अंतर्गत सवाल यह आता है कि किसी तीसरे या अन्य व्यक्ति द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई जा सकती है? जवाब है हाँ। सजा 5 साल तक की कड़ी जेल, जुर्माना या दोनों। नंबर 1 और नंबर 2 में बताए गए अपराध के मामलों में 1 साल तक की सजा या जुर्माना दोनों। सवाल ये भी सामने आता है क्या ये संज्ञेय अपराध है अथवा क्या पुलिस तुरंत गिरफ्तारी कर सकती है? जवाब है हाँ। क्या पुलिस जज के आदेश के बिना गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को रिहा कर सकती है? जवाब है हाँ, सिवा उन मामलों के जब महिला के साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध शारीरिक छेड़छाड़ की गई हो या यौन उत्पीड़न का प्रयास किया गया हो या यौन उत्पीड़न की चेष्टा से आपराधिक रूप से ताकत का इस्तेमाल किया गया हो। अगला कानून है कपड़े उतारना यानी निर्वस्त्र करना, धारा 354B। अपराध, किसी महिला को उसके कपड़े उतारने के लिए मजबूर करना या ऐसा करने में किसी की मदद करना। सवाल, किसी तीसरे या अन्य व्यक्ति द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई जा सकती है? जवाब है हाँ। सजा, कम से कम 3 साल की सजा और ज्यादा से ज्यादा 7 साल तक की सजा और जुर्माना। क्या ये कंगनाइजेबल यानी संज्ञेय अपराध है अथवा क्या पुलिस तुरंत गिरफ्तार कर सकती है? जवाब है हाँ। क्या पुलिस जज के आदेश के बिना गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को रिहा कर सकती है? जवाब है नहीं। अगला कानून है दृष्टि रत्ति, धारा 354C। अपराध, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी महिला को उसके निजी क्षणों में देखना या उसकी फिल्म उतारना, इसमें वो भी शामिल है जब वो नहीं चाहती हो कि उसे देखा जाए। इसमें वो भी शामिल है जब महिला की स्तन, यौनंग एवं पुट्ठे खुले हुए हों। इसमें ये बात भी शामिल है कि जब वो शौचालय का प्रयोग कर रही हो या अपनी निजता में यौन क्रिया कर रही हो। सवाल ये सामने आता है किसी तीसरे या अन्य व्यक्ति द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई जा सकती है? जवाब है हाँ। सजा, पहले बार के अपराध के लिए कम से कम 1 साल की जेल जो 3 साल तक की हो सकती है, दूसरी बार और उसके बाद दोबारा या फिर से किए गए अपराध के लिए कम से कम 3 साल की जेल की सजा हो सकती है जिसे 7 साल तक की बढ़ाया जा सकता है। क्या ये संज्ञेय यानी कॉग्निजिबल अपराध है अथवा क्या पुलिस तुरंत गिरफ्तार कर सकती है? जवाब है हाँ। क्या पुलिस जज के आदेश के बिना गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को रिहा कर सकती है? हाँ, पहली बार सजा होने पर, दूसरी बार नहीं, दूसरी बार या उसके बाद दोबारा दृष्टि रत्ति के मामलों में सजा होने पर। चलिए यहाँ पर एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं और इस बातों का जो सिलसिला है लगातार जारी है। वाकई बहुत एक अहम खास जानकारी मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि इन बातों का आप सुन रहे होंगे, सुन रही होंगी, समझ रही होंगी और इन बातों का आप लाभ जरूर उठाएंगे। सुनते रहें
ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM मेरे यानी गगन के साथ।

फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ। हम बात कर रहे हैं महिला हिंसा के खिलाफ सामूहिक प्रयास। इसके अंतर्गत आशा वर्कर की क्या भूमिका है, हमारी आपकी क्या भूमिका है, इसी संबंध में कुछ कानूनों के बारे में हम जान रहे हैं। बात करते हैं लगातार पीछा करना धारा 354D के अंतर्गत ये कानून है। अपराध किसी महिला का पीछा करना और उससे बार बार संपर्क करना जब उस महिला ने स्पष्ट कर दिया हो कि वो नहीं चाहती है कि उससे संपर्क किया जाए। इसमें इंटरनेट, इसमें ईमेल, फोन और कोई दूसरी अन्य सामग्री या यूं कहें कि सभी इलेक्ट्रॉनिक संपर्क के साधन शामिल हैं। इसमें इंटरनेट पर पीछा करना और सेल फोन और मोबाइल पर पीछा करना शामिल है। सवाल ये है कि किसी तीसरे या अन्य व्यक्ति द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई जा सकती है। जवाब है हाँ। सजा कम से कम 1 साल की जेल, जो 3 साल तक बढ़ाई जा सकती है, एवं जुर्माना भी। क्या ये संज्ञेय अपराध है अथवा क्या पुलिस तुरंत गिरफ्तार कर सकती है? जवाब है हाँ। क्या पुलिस जज के आदेश के बिना गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को रिहा कर सकती है? जवाब है हाँ, पहली बार सजा होने पर, दूसरी बार नहीं, दूसरी बार या उसके बाद दोबारा दृष्टि रति के मामलों में सजा होने पर। अगला कानून है मानव तस्करी, धारा 370(1) और 370A अपराध। इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी महिला या बच्चे को बल प्रयोग के द्वारा धमकी, अगवा करके, धोखा और अन्य तरीकों से अपहरण करना, एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना, उन्हें अपने पास लेना और उनको अपने पास रखना जो उनका शोषण करने के इरादे से किया गया हो। बात सामने आती है कि किसी तीसरे या अन्य व्यक्ति द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई जा सकती है। जवाब है हाँ। कानूनी कार्यवाही, इसके अंतर्गत क्या सजा आती है? बात करते हैं। नंबर 1, 7 साल से लेकर 10 साल तक की जेल की सजा, जो उम्र कैद तक की हो सकती है, और जुर्माना भी। बार बार ऐसे अपराध करने वाले और सरकारी कर्मचारी जो ऐसा अपराध करते हैं, उन्हें उम्र कैद की सजा। तीसरा पॉइंट, मानव तस्करी करके रखे गए किसी महिला या बच्चे का शोषण करने की सजा, 3 से 5 साल तक की जेल, जो कि 5 से 7 साल तक की बढ़ाई जा सकती है, और जुर्माना भी। क्या ये संज्ञेय अपराध है अथवा क्या पुलिस तुरंत गिरफ्तारी कर सकती है? जवाब है हाँ। क्या पुलिस जज के आदेश के बिना गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को रिहा कर सकती है? जवाब है नहीं। अगला कानून है बलात्कार, धारा 376 अपराध। इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि महिला के मुख द्वार, योनि द्वार, मल द्वार और मूत्र द्वार में किसी व्यक्ति के द्वारा अपना मुंह, लिंग या अन्य कोई भी चीज डालना जो उसकी सहमति के बिना एवं उसकी इच्छा के खिलाफ किया गया हो। इसी के अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी तीसरे या अन्य व्यक्ति द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई जा सकती है। जवाब है

हाँ, सिवाय ऐसे मामलों के जब पति द्वारा अपनी पत्नी के साथ उससे अलग हो जाने के बाद उसकी मर्जी के खिलाफ शारीरिक संबंध बनाया जाए, साथ ही जब उत्पीड़ित व्यक्ति द्वारा शिकायत की गई हो। सजा की बात आती है, 7 से 10 साल तक की कड़ी जेल की सजा, जो उम्र कैद तक बढ़ाई जा सकती है, और जुर्माना सामूहिक बलात्कार के मामलों में, या यदि बलात्कार के कारण मृत्यु हो जाए या पीड़ित व्यक्ति लंबे समय तक बिल्कुल निष्क्रिय शारीरिक अवस्था में पहुंच जाए। अगला बिंदु है, ऐसे मामलों में 20 साल की कड़ी जेल की सजा, जो उम्र कैद तक बढ़ाई जा सकती है, साथ ही दोबारा या बार बार ऐसे अपराध किए जाने पर उम्र कैद की सजा। क्या ये संज्ञेय अपराध है अथवा क्या पुलिस तुरंत गिरफ्तार कर सकती है? जवाब है हाँ। क्या पुलिस जज के आदेश के बिना गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को रिहा कर सकती है? जवाब है नहीं। सिवाय ऐसे मामलों के जब पति द्वारा अपनी पत्नी के साथ उससे अलग हो जाने के बाद उसकी मर्जी के खिलाफ शारीरिक संबंध बनाए जाए। अगले कानून का नाम है पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा मानसिक या शारीरिक यातना, धारा 498A, अपराध। इसके अंतर्गत बात सामने आती है जो आत्महत्या का कारण बने, जिससे महिला को गंभीर चोट लग जाए, इसे दहेज की मांग करना शामिल है। किसी तीसरे या अन्य व्यक्ति द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई जा सकती है। दहेज की मांग या मानसिक शारीरिक क्रूरता जिसके द्वारा चोट पहुंचती हो, कोई रिश्तेदार या राज्य सरकार द्वारा अधिकृत कोई सरकारी कर्मचारी शिकायत कर सकता है। सजा की बात आती है कि 3 साल की जेल की सजा और जुर्माना भी। क्या ये संज्ञेय अपराध है अथवा क्या पुलिस तुरंत गिरफ्तारी कर सकती है? जवाब है हाँ। क्या पुलिस जज के आदेश के बिना गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को रिहा कर सकती है? जवाब है नहीं। दहेज की मांग या मानसिक शारीरिक क्रूरता जिससे चोट पहुंचे। अगले कानून के नाम के अंतर्गत बात आती है कि यदि कोई लोक सेवा कानून का उल्लंघन करता है, ये धारा बनती है 166A। इसके अंतर्गत सजा का प्रावधान है कम से कम 6 महीने की जेल की सजा, जो 2 साल तक बढ़ाई जा सकती है, और जुर्माना भी। क्या ये संज्ञेय अपराध अथवा क्या पुलिस तुरंत गिरफ्तार कर सकती है ऐसे केस में? जवाब है हाँ। क्या पुलिस जज के आदेश के बिना गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को रिहा कर सकती है? जवाब है हाँ। अगली बात सामने आती है, यानी कि कानून के नाम की बात मैं कर रहा हूँ, कि कोई अस्पताल अगर उत्पीड़ित व्यक्ति का इलाज करने से मना करता है, धारा 166B, सजा 1 साल की जेल की सजा और जुर्माना। क्या ये संज्ञेय अपराध है अथवा क्या पुलिस तुरंत गिरफ्तारी कर सकती है? जवाब है नहीं। क्या पुलिस जज के आदेश के बिना गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को रिहा कर सकती है? जवाब है हाँ। तो ये कुछ खास बातें कानून के बारे में, अपराध के बारे में, कानूनी कार्यवाही के बारे में मैंने आपको बताई। आशा करता हूँ कि इन बातों को आपने अच्छी तरीके से सुना होगा, समझा होगा। और जब ये सारी बातें मैं आप तक पहुंचा रहा था, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपको थोड़ा ऐसा महसूस हो रहा होगा कि हम ये बातें क्यों कर रहे हैं। लेकिन ये बातें जानना समझना जरूरी है कि अगर ये अपराध हो रहा है तो आप अपनी आवाज बुलंद करें, और अगर कोई व्यक्ति ऐसा अपराध कर रहा है तो वो सजा का हकदार है। सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

और फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ। हम बात कर रहे हैं महिला हिंसा के खिलाफ सामूहिक प्रयास, और इसके अंतर्गत बात हो रही है एक आशा वर्कर के बारे में। बात हो रही है अब कानून के बारे में, अपराध के बारे में, कानूनी कार्यवाही के बारे में। बात करते हैं यौन अपराधों से बच्चों की सुरक्षा का कानून 2012। इसके अंतर्गत 18 वर्ष से कम उम्र के किसी भी व्यक्ति की यौन उत्पीड़न से सुरक्षा के लिए कानून का नाम के अंतर्गत ये बात मैंने आपको बताई। अपराध इसे इस तरीके से परिभाषित किया जा सकता है जैसे कि शरीर में घुसेड़कर और अन्य विभत्स तरीके से घुसेड़कर किया गया यौन हमला। दूसरी बात, यौन हमला और अन्य विभत्स तरीकों से किया गया यौन हमला। नंबर 3, यौन प्रताड़ना। नंबर 4, एक बच्चे को अश्लील इरादे या गतिविधि के लिए प्रयोग करना। ये सभी प्रयास करना या किसी को ऐसे प्रयास करने में मदद करना भी दंड के योग्य है। यदि कोई व्यक्ति ऐसा समझता है कि ऐसा अपराध हो सकता है या जानता है कि ऐसा अपराध हुआ है, उसे इसकी रिपोर्ट दर्ज करनी होगी। पुलिस को बच्चों के उत्पीड़न के सभी मामलों में FIR दर्ज करनी होगी। बात सामने आती है कि किसी तीसरे या अन्य व्यक्ति द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई जा सकती है। जवाब है, कोई भी व्यक्ति जो ये जानता है कि किसी बच्चे के साथ यौन अपराध किया जा रहा है या किया जा सकता है, तो उसे अनिवार्य रूप से इसकी सूचना देनी होगी। यदि कोई तीसरा या अन्य व्यक्ति पुलिस को ऐसे अपराध की सूचना देता है जिस अपराध के लिए 3 साल से अधिक की सजा का प्रावधान है, तो पुलिस को अनिवार्य रूप से कार्रवाई करनी होगी। कानूनी कार्रवाई के अंतर्गत बात करते हैं तो ऐसी घटना की सूचना न देने के लिए 6 माह तक की जेल की सजा या जुर्माना या दोनों ही किया जा सकता है। नंबर 2, ऐसे अपराधों के लिए कम से कम 7 साल से 10 साल तक की जेल की सजा जो उम्र कैद तक बढ़ाई जा सकती है और जुर्माना। नंबर 3, बच्चों की यौन प्रताड़ना के लिए कम से कम 3 साल की जेल की सजा का प्रावधान है। क्या ये संज्ञेय अपराध है अथवा क्या पुलिस तुरंत गिरफ्तार कर सकती है? जवाब है हाँ। क्या पुलिस जज के आदेश के बिना गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को रिहा कर सकती है? जवाब है हाँ, यदि किए गए अपराध के लिए 3 साल से कम की सजा का प्रावधान है। नंबर 2, नहीं, जिन मामलों में 3 साल से ज्यादा की सजा का प्रावधान है। बात करते हैं भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत अन्य धाराएं। इसके अंतर्गत अपराध की श्रेणी में बातें सामने आती हैं कि महिला की सहमति के बिना गर्भपात करवाना, IPC 313। किसी महिला के ऊपर हमला या आपराधिक रूप से ताकत का प्रयोग जो उसके सम्मान को ठेस पहुंचाने की नियत से किया गया हो, IPC 342। किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा या उसकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना या ऐसा करने की धमकी देना, IPC 503। गलत या अवैध तरीके से किसी को बंधक बनाना, जो भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को गलत तरीके से कोई दायरा बनाकर उसी में बंद होकर रहने के लिए गलत तरीके से मजबूर करता है, तो ये अवैध रूप से बंधक बनाना होगा। उदाहरण के तौर पर एक व्यक्ति, मान लीजिए किसी को हमने नाम दे दिया ए, दूसरे व्यक्ति यानी कि नाम दे दिया बी को किसी बंद जगह में जाने के लिए मजबूर करता है और उसे वहां बंद कर देता है, और इस तरह से बी को बंद दीवारों के दायरे के बाहर कहीं भी जाने से रोका जाता है। इससे ए ने बी को अवैध रूप से बंधक बनाकर रखा है। नंबर 2, ए द्वारा बी के मकान के बाहर निकलने के सभी रास्तों पर हथियार बंद लोगों को तैनात कर दिया जाता है, और ए द्वारा बी से कहा जाता है कि ये लोग उस पर हमला करेंगे, यदि वो मकान से निकलने की कोशिश करेगा तो ए ने बी को अवैध रूप से बंधक बनाकर रखा है, और ये बात सामने आती है धारा 340 IPC के अंतर्गत। अब हम बात करते हैं धारा 46 यानी धारा 46 उपधारा छठ। अब हम बात करते हैं धारा 46 यानी धारा 46 उपधारा 4। कुछ विशेष परिस्थितियों को छोड़कर किसी भी महिला को सूरज डूबने के बाद और सूरज निकलने के पहले गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, और यदि ऐसी विशेष परिस्थितियां हैं जिनमें ऐसा करना जरूरी है, तो एक महिला पुलिस अधिकारी द्वारा प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट जिनके अधिकार क्षेत्र के अंदर ये जगह आती है जहां अपराध हुआ हो, जहां गिरफ्तारी की जानी है, एक लिखित आवेदन के द्वारा उनकी पहले से अनुमति ली जाएगी। अब बात करते हैं जीरो FIR के बारे में। इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी संज्ञेय अपराध यानी जिनके बारे में ये बताया गया है कि हो जाने की सूचना मिलने पर पुलिस FIR दर्ज करेगी,
यदि ऐसा लगता है कि अपराध उस पुलिस थाने के अधिकार क्षेत्र के बाहर हुआ है तब 0 FIR दर्ज किया जाना आवश्यक है। नंबर 2, यदि FIR दर्ज होने के बाद की हकीकत में ये पता चलता है कि ये मामला किसी दूसरे पुलिस थाने के

विशेषकर यदि ये एक यौन अपराध का मामला है। बात सामने ये भी आती है कि उसे विभागीय जांच द्वारा दंडित किया जा सकता है। अब बात करते हैं चिकित्सा से संबंधित लापरवाही या किसी अन्य लापरवाही के कारण मृत्यु। इसके अंतर्गत हम बात करते हैं जल्दबाजी या उतावलेपन यानी अथवा लापरवाही के कारण हुई मृत्यु। यदि मृत्यु डॉक्टर की लापरवाही के कारण हुई है तो इसे गंभीर लापरवाही माना जाएगा। किसी तीसरे या अन्य व्यक्ति द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई जा सकती है? जवाब है हाँ। कानूनी कार्यवाही के अंतर्गत बात सामने आती है 2 साल तक की जेल की सजा या जुर्माना या दोनों। क्या ये संज्ञेय अपराध है अथवा क्या पुलिस तुरंत गिरफ्तारी कर सकती है? जवाब है हाँ। क्या पुलिस जज के आदेश के बिना गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को रिहा कर सकती है? जवाब है हाँ। तो आज हम बात कर रहे थे महिला हिंसा के खिलाफ सामूहिक प्रयास। इसके अंतर्गत आज हमने बात की इस कार्यक्रम में महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा को रोकने के लिए कानूनी उपाय के विषय में। आशा करता हूँ कि ये विशेष कार्यक्रम आपको बहुत अच्छा लगा होगा, इससे आपने जानकारी जरूर उठाई होगी। फिर भी अगर आपको लगता है कि कहीं कोई शंका है तो 01204060205 पर आप हमें कॉल कर बता सकते हैं या इसके अलावा 90.8 FM @sharda.ac.in पर आप हमें मेल कर सकते हैं। फिलहाल वक्त का इशारा हो चुका है, मुझे लेनी होगी आपसे अनुमति। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, महिलाओं का सम्मान करें, उनका आदर करें और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारे घर में भी हमारी माँ हैं, बहन हैं। जब हम उनके लिए सम्मान चाहते हैं तो हमारा फर्ज बनता है कि जग में जो दूसरी माताएं हैं, जो बहनें हैं, हमें उनका भी सम्मान करना चाहिए। सुनते रहें ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। नमस्कार।

0: लेकिन दोस्त अगर ऐसे ही जिंदगी का साथ निभाते चले तो जिंदगी तुम्हारा साथ निभाना छोड़ देगी और अस्पतालों के चक्कर लगेंगे सो अलग।
1: जी हाँ, आप भी सचेत रहें और रहें धूम्रपान से दूर, क्योंकि हम सबका है यही सपना, नशा मुक्त हो भारत अपना। सुनो शारदा 90.8 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है पाठ्यचर्या पर आधारित श्रृंखला ध्वनि शाला। तो आइए अब चलते हैं कक्षा 6 की ध्वनि शाला में।
2: नमस्कार बच्चों, आज मैं सीमा शुक्ला ओझा आपसे आपकी कक्षा 6 के अध्याय 2 आखेटक खाद्य संग्राहक से भोजन उत्पादक पर चर्चा करने वाली हूँ। आपने अपने पिछले अध्याय में जाना कि कैसे अलग अलग साक्ष्यों की मदद से हम भारतीय उपमहाद्वीप के प्राचीन इतिहास को जान सकते हैं। आज हम जानने वाले हैं कि इस भारतीय उपमहाद्वीप में पहले पहल कब लोगों ने रहना शुरू किया, उनका जीवन कैसा था, वे कहाँ रहते थे, हमारे पास उनके बारे में जानने के साक्ष्य कौन से हैं, और कैसे लोग आखेटक खाद्य संग्राहक से भोजन उत्पादक बने। तो चलिए अपनी बात शुरू करते हैं। तो हमें पता चलता है कि भारतीय उपमहाद्वीप में हमें लगभग 20 लाख वर्ष पूर्व से लोगों के रहने के साक्ष्य मिलते हैं। इस नाम से ही शायद आपको उनकी जीवन शैली का काफी कुछ पता चल गया होगा। वे अपने भोजन का इंतजाम कैसे करते थे, शायद इसी आधार पर इन आरंभिक लोगों को यह नाम दिया गया है। आखेटक खाद्य संग्राहक, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, अपने आसपास उपलब्ध फल, मूल, दाने, पौधे, पत्तियां, अंडे आदि का संग्रह करते थे और जंगली जानवरों का शिकार करते थे। इन्हीं पर उनका जीवन निर्भर था और इसी तरह खाद्य संग्रह और शिकार करते हुए वे एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। अब आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि जब उनको खाने पीने की चीजें उनके आसपास उपलब्ध थीं, तो वे एक स्थान से दूसरी जगह क्यों जाया करते थे। तो बच्चों, इसके कई कारण रहे होंगे। पहला कारण ये हो सकता है कि जब वे एक जगह पर बहुत समय तक रहते थे, तो उसके आसपास उपलब्ध कंदमूल, फल फूल और जानवरों के शिकार करने के बाद उनके पास खाने के लिए कुछ और नहीं रहता होगा, तो फिर से भोजन की तलाश में वे नए क्षेत्रों की ओर जाते होंगे। दूसरा कारण शायद ये रहा होगा कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरण और अन्य मवेशी अपने चारे के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे, इसलिए इन जानवरों के शिकार पर निर्भर रहने वाले लोग भी शायद इनके पीछे पीछे जाते होंगे। एक कारण हम ये भी समझ सकते हैं कि कई बार अलग अलग पेड़ पौधों को वो भोजन के रूप में उनका इस्तेमाल करते थे, तो हो सकता है कि मौसमी फलों की तलाश में वे एक इलाके से दूसरे इलाके में जाते होंगे। और एक अन्य महत्वपूर्ण बात हमें यहाँ पर जो ध्यान रखने की है कि हम सभी जानते हैं कि पानी के बिना किसी भी जीव जंतु का जीवन संभव नहीं है। पहले भी पानी झीलों में, नदियों में या झरनों में उपलब्ध था। कुछ पानी के स्रोतों में साल भर पानी मिलता था, लेकिन कई गर्मी के मौसम में सूख जाते होंगे, तो ऐसे में लोग पानी की तलाश में एक जगह से दूसरे जगह पर या इलाकों में जाते होंगे। अब प्रश्न उठता है कि इन आरंभिक लोगों के बारे में हमें पता कैसे चलता है। पुरातत्वविदों को ऐसी बहुत सारी वस्तुएं मिली हैं जिनका निर्माण और इस्तेमाल ये लोग करते थे, जैसे पत्थर के औजार। हो सकता है कि उन्होंने लकड़ी और हड्डी के भी औजार बनाए हों और उनका इस्तेमाल किया हो, पर आज हमें जो साक्ष्य मिलते हैं वे हैं पत्थर के औजार। इन पत्थर के औजारों का इस्तेमाल वे फल फूल को काटने, हड्डियां और मांस को काटने और पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल को उतारने के लिए करते थे। कुछ जगहों से राख के अवशेष मिले हैं, जिससे पता चलता है कि इन्हें आग का पता था। आग का इस्तेमाल संभवतः कई कार्यों के लिए ये लोग करते रहे होंगे, जैसे रोशनी के लिए, मांस भूनने के लिए या खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए। अब प्रश्न उठता है कि ये आरंभिक लोग रहते कहाँ थे। जैसा कि हमने पहले बात की, कि वे भोजन की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे, यानी कि किसी जगह वे अस्थाई रूप से नहीं रह रहे थे। तो अगर ये हम बात करें इस समय के लोगों के रहने के स्थानों के बारे में, तो हम ये कह सकते हैं कि वे ज़्यादातर पहाड़ी इलाकों में या गुफाओं में रहना पसंद करते थे, और विशेषकर उन जगहों पर जहाँ पानी के स्रोत हों, क्योंकि यहाँ रहने से उन्हें पानी तो मिलता ही था, साथ ही बारिश, धूप और हवा से एक उनका बचाव भी होता था। और आप भी सोचकर देखिए कि इन स्थानों को उन्होंने और किन कारणों से रहने के लिए चुना होगा। आशा है आप में से कुछ लोगों ने शायद सही अनुमान लगाया हो कि उनके जीवन के आधार पत्थर के औजार थे, तो पत्थर के औजार बनाने के लिए उन्हें ऐसे इलाकों में पत्थर बड़ी आसानी से उपलब्ध होता होगा। ऐसी कुछ साइट्स या पुरास्थल आपके पाठ्यपुस्तक के मानचित्र में भी दिखाई गई हैं। अगर हम ऐसे पुरास्थलों की बात करें तो मध्य प्रदेश में भीमबेटका, कर्नाटक में हुंसगी और आंध्र प्रदेश में कुरनूल की गुफाएं इस समय के महत्वपूर्ण पुरास्थल या साइट्स हैं। अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि ये पुरास्थल या साइट्स क्या हैं? तो पुरास्थल उन स्थानों को कहते हैं जहां औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। कई बार ये अवशेष जमीन के ऊपर या उसकी सतह के अंदर और कई बार समुद्र और नदी के तल में भी इस तरह के अवशेष मिलते हैं। पुरास्थल एक ऐसा शब्द है जो आपकी इतिहास की कक्षा में बार बार आने वाला है, इसलिए इस शब्द के मायने आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। तो अभी तक हमने जिस समय के बारे में बात की उसे पुरापाषाण काल भी कहा जाता है। इस काल से संबंधित एक मजेदार बात आपको बताना चाहूंगी कि इस पृथ्वी पर मनुष्य का अस्तित्व जब से है उसका अधिकांश हिस्सा, कह सकते हैं लगभग 99% हिस्सा पुरापाषाण काल का है। अब प्रश्न उठता है कि आरंभिक लोगों का ये जो जीवन था उनका ये जीवन ऐसा ही चलता रहा या आगे चलकर उसमें कुछ बदलाव आए? तो साक्ष्यों की मदद से हमें जो पता चलता है, हम कह सकते हैं कि लगभग 12,000 वर्ष पूर्व जलवायु में काफी परिवर्तन दिखता है, जिसकी वजह से गर्मी बढ़ गई और गर्मी बढ़ने से घास के मैदान बनने लगे और इसकी वजह से उन जानवरों की संख्या बढ़ने लगी जो घास पर निर्भर रहते थे, जैसे हिरन, भेड़, बकरी, गाय या बारहसिंघा आदि। पुरापाषाण काल के लंबे काल के दौरान लोगों को जानवरों की आदतों, उनके रहन सहन, उनके प्रजनन समय के बारे में काफी सारी जानकारियां इकट्ठी हो गई थी, और यही कारण है कि धीरे धीरे उनका ध्यान जानवरों के शिकार से हटकर कुछ जंगली जानवरों को पालतू बनाने की ओर हुआ, और फिर धीरे धीरे उन्होंने कुछ जंगली जानवरों को पालतू बनाना शुरू किया। जंगली जानवरों को पालतू बनाना एक पूरी प्रक्रिया है। इसके तहत उन्होंने कुछ जंगली जानवरों को अपने आसपास रखकर उनको भोजन देकर, उनको रहने के लिए आश्रय देकर और वहीं उनका प्रजनन करवाकर पशुपालन की ये प्रक्रिया शुरू की। पर ये प्रक्रिया शुरू होने में कई हजार वर्षों का समय लगा, और आपके मन में भी ये प्रश्न उठ रहा होगा कि किस तरह से उन्होंने जंगली जानवरों को पालतू बनाने के बारे में सोचा, या उन्होंने क्या सोचा होगा कि किन जंगली जानवरों को वे पालतू बना सकते हैं। शायद इसके बहुत सारे कारण रहे होंगे। एक शायद उन्होंने ये सोचा होगा कि हम उन जंगली जानवरों को पालतू बना सकते हैं जिनको अगर हम अपने पास रखें तो हम उनके लिए भोजन उपलब्ध करवा सकते हैं, या उन जंगली जानवरों को पालतू बना सकते हैं जो ज़्यादा आक्रामक ना हो, या ऐसे जानवर जो उनके लिए भी कुछ उपयोग की वस्तुएं प्रदान कर सकें, जैसे दूध, मांस आदि। और जैसा कि आपसे मैंने बात की कि अभी भी उन लोगों का जीवन घुमंतु शैली का था, यानी वे एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे, तो ऐसे में स्वाभाविक है शायद उन्होंने ये भी सोचा होगा कि हम ऐसे जंगली जानवरों को पालतू बना सकते हैं जो उनके साथ आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जा सके। तो इस तरह से बहुत सारे कारण रहे होंगे ये निर्णय लेने में कि कौन से जंगली जानवरों को पालतू बनाया जाए, पर मुझे लगता है कि एक जो सबसे महत्वपूर्ण कारण रहा होगा वो शायद भोजन की उपलब्धता रही होगी, क्योंकि अभी तक वे खाद्य संग्रह कर रहे थे या जानवरों का शिकार कर रहे थे। तो हो सकता है कि कई बार संग्रह में कोई दिक्कतें आती हों या शिकार करने में किसी तरह की परेशानी आती हो, तो इसकी वजह से कई बार उनको खाना ना मिल पाता हो। तो शायद ये भी एक कारण रहा होगा कि उन्होंने सोचा कि अगर कुछ जंगली जानवरों को पालतू बना लिया जाएगा तो उनसे उन्हें उनके खाने की वस्तुएं मिल सकेंगी और मांस भी मिल सकेगा। तो शायद इस तरह के बहुत सारे कारण रहे होंगे जिनकी वजह से उन्होंने कुछ जंगली जानवरों को पालतू बनाना शुरू किया। और अब हमें ये जानना भी जरूरी है कि किन जंगली जानवरों को उन्होंने सबसे पहले पालतू बनाया। तो आपको ये बात मजेदार लगेगी, आज भी आप देखते हैं कि लोग कुत्तों को पालतू जानवर के रूप में रखना बहुत पसंद करते हैं। तो सबसे पहले जो जंगली जानवर पालतू बनाया गया वो कुत्ते का जंगली एक रूप था या उसकी प्रजाति थी, और इसके बाद भेड़ बकरी आदि जानवरों को पालतू बनाया गया। यहाँ हमें यह ध्यान रखना होगा कि जब आरंभिक लोगों ने कुछ जानवरों को पालतू बनाना शुरू कर दिया तो इसका यह कतई मतलब नहीं था कि उन्होंने आखेट या खाद्य संग्रह जैसी गतिविधियों को छोड़ दिया। ये गतिविधियां भी चलती रही, हालांकि अब उनका ध्यान पशुपालन की ओर भी हो गया। अब अगर हम बात करें कि इस काल के बारे में जानने के हमारे पास साक्ष्य क्या है, तो हम कह सकते हैं कि इस समय के बारे में जानने के साक्ष्य हैं पत्थर के औजार, पालतू पशुओं की हड्डियां और गुफाओं में की गई चित्रकारियां। पत्थर के औजारों की बात करें तो पुरापाषाण काल में जिन पत्थर के औजारों का इस्तेमाल होता था उनका इस्तेमाल इस काल में भी हो रहा था। हालांकि पत्थर के औजारों में इस समय एक बड़ा बदलाव दिखता है, अब पत्थर के औजारों का आकार काफी छोटा होता हुआ दिखता है जिन्हें माइक्रोलिथ्स या लघु पाषाण कहते हैं। कई पत्थर के औजार इस समय के बहुत ही छोटे आकार के होते थे, कुछ तो 1 से 5 सेंटीमीटर के आकार के थे। तो इस आकार से आप समझ सकते हैं कि इन औजारों का इस्तेमाल स्वतंत्र रूप से तो नहीं होता होगा, पर संभव है कि लकड़ी या हड्डी के हत्थों में इन लघु पाषाणों को लगाकर हसिया या आरी जैसे औजार बनाए जाते होंगे। इस तरह के औजारों के साक्ष्य हमें उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात के कई सारे पुरास्थलों से मिलते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया कि इस काल अवधि में उन्होंने कुछ जंगली जानवरों को पालतू बनाना शुरू कर दिया था, तो इस समय हमें पालतू जानवरों की हड्डियां भी मिलती हैं, जैसे नर्मदा घाटी में स्थित आदमगढ़ पुरास्थल पर हमें पालतू जानवरों की हड्डियों के अवशेष मिलते हैं। और इस समय हम ये भी देखते हैं कि जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों की हड्डियां अब ज्यादा मिलती हैं, और इस काल में हमें बहुत सारी गुफाओं में चित्रकारियों के भी साक्ष्य मिलते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप की बात करें तो उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर, मध्य प्रदेश में भीमबेटका, उड़ीसा में सुंदरगढ़ और संबलपुर, इसी तरह केरला में इडुक्की गुफाओं में इस तरह की चित्रकारियां की हुई मिलती हैं। अभी हमने जिस समय की बात की उसे मध्य पाषाण काल कहा जाता है। अब प्रश्न उठता है कि क्या इस जीवन शैली में भी आगे चलकर कुछ बदलाव हुए? तो बिल्कुल, इस जीवन शैली में भी आगे चलकर के महत्वपूर्ण बदलाव हुए। लगभग 10,000 वर्ष पूर्व हमें इस तरह के महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि जलवायु में परिवर्तन होने लगा था, गर्मी बढ़ने लगी थी, घास के मैदान बढ़ने लगे थे, तो इस समय हम ये देखते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप के बहुत सारे हिस्सों में गेहूं, जौ, धान जैसे अनाज भी प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। और अब लोगों ने अपने जीवन निर्वाह के लिए ज़रूरत पड़ने पर पेड़ पौधों में भी संभावनाएं तलाशनी शुरू कर दी। हमें ये पता ही है कि खाद्य संग्रह वे लाखों वर्षों से कर रहे थे, तो धीरे धीरे उन्हें इस बात की जानकारी हो गई थी कि कौन से अनाज कहाँ उगते हैं, वे कब पककर तैयार होते हैं, कौन से पौधों में बड़े दानों वाले अनाज आते हैं या कौन सी डंठलें पके अनाज के भार को संभाल सकती हैं। तो इस तरह की जानकारियां उनके पास लाखों वर्षों से इकट्ठा हो रही थी और इसी अनुभव का इस्तेमाल करते हुए अब उन्होंने अनाज को खाने के लिए इस्तेमाल करने के साथ ही कुछ अनाज के दानों को बीज के रूप में अपने पास रखना शुरू कर दिया ताकि वे इनका इस्तेमाल उनको उगाने के लिए कर सके। और जैसा कि मैंने पशुपालन की प्रक्रिया की बात करते समय बताया था, जंगली अनाज की जो प्रजाति है उसको मनुष्य के उपयोग लायक बनाने के लिए भी काफी लंबा समय लगा। वास्तव में आज हम जो भोजन करते हैं वो इसी प्रक्रिया के तहत हम तक पहुंचा है। सबसे प्राचीन जो फसलें उगाई गईं वे थी गेहूं, जौ आदि। और इस तरह हम देखते हैं कि लगभग 10,000 वर्ष पूर्व इस तरह के महत्वपूर्ण बदलाव होने शुरू हो गए थे। इस तरह आखेटक खाद्य संग्राहक अब भोजन उत्पादक बन गए। इस काल को नवपाषाण काल के नाम से भी जाना जाता है। सामान्यतया यह माना जाता है कि नवपाषाण काल से तात्पर्य एक ऐसे काल से है जब हमें खाद्य उत्पादन के साक्ष्य मिलते हैं, बर्तन बनाने की जानकारी मिलती है और ऐसे लोगों की जानकारी मिलती है जो स्थायी बस्तियों में रहने लगे थे। हालांकि इस काल के पहले भी इस तरह की कुछ चीजें होने लगी थी, लेकिन अपने मुखर रूप में वो इसी काल में हमारे सामने आती हैं। अगर हम इस समय के अवशेषों की बात करें तो भारतीय उपमहाद्वीप के बहुत सारे पुरास्थलों से हमें इस समय के लोगों के बारे में जानकारियां मिलती हैं। जैसे आज के बलूचिस्तान का मेहरगढ़ पुरास्थल, उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद के आसपास कोल्डी हवा महगड़ा, जम्मू कश्मीर में बुर्जहोम, कर्नाटक में हल्लूर, तमिलनाडु में पय्यमपल्ली तथा उत्तर पूर्व में दाओजली हेडिंग आदि। इन सभी पुरास्थलों से हमें नवपाषाण काल के लोगों के बारे में साक्ष्य मिलते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे पुरास्थल हैं जिनके बारे में आप और जानने की कोशिश कर सकते हैं। अब आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि आखिर ये कैसे पता चलता है कि ये पुरास्थल आरंभिक खाद्य उत्पादकों या कृषकों और पशुपालकों की बस्तियों से संबंधित थे। इसका पता हमें खुदाई में मिले पौधों और जानवरों की हड्डियों के नमूनों का अध्ययन करके मिलता है। जैसे यदि किसी पुरास्थल पर जले हुए अनाज के दाने मिलते हैं तो वैज्ञानिक इन दानों की पहचान कर ये पता लगा सकते हैं कि वहाँ कौन कौन सी फसल उगाई जाती होगी। इसी तरह विभिन्न जानवरों की हड्डियों की भी पहचान की जा सकती है। अब हम बात करते हैं कि जब आखेटक खाद्य संग्राहक खाद्य उत्पादक बन गए तो उनके जीवन में किस तरह के परिवर्तन आए। जब उन्होंने खाद्य उत्पादन शुरू किया तब उनके लिए एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना आवश्यक हो गया, क्योंकि जो पौधे उन्होंने लगाए थे उनको पानी देने, उनकी खरपतवार हटाने, उन्हें जानवरों और चिड़ियों से बचाने के लिए उनके लिए एक जगह पर लंबे समय तक रहना जरूरी हो गया। और यही कारण है कि इस समय हमें उनके रहने की बस्तियों के साक्ष्य मिलते हैं, जैसे बहुत सारे घरों या झोपड़ियों के साक्ष्य मिलते हैं। इस तरह के साक्ष्य हमें आधुनिक बलूचिस्तान के मेहरगढ़, जम्मू कश्मीर के बुर्जहोम आदि पुरास्थलों से मिलते हैं। बुर्जहोम की बात करें तो आप वहां पर पाएंगे कि लोग वहां पर गड्ढों में रहते थे। इन गड्ढों में बने घरों को पिट हाउस या गर्त आवास कहा जाता है, और इन गर्त आवास में अंदर की ओर जाने के लिए सीढ़ियों के भी साक्ष्य मिलते हैं। इसी तरह से मेहरगढ़ से भी हमें घरों के साक्ष्य मिलते हैं। प्रायः यहाँ के घर दो या चार हिस्सों में बटे हुए दिखते हैं। विद्वानों का मानना है कि शायद कुछ हिस्सों का इस्तेमाल भंडारण के लिए होता होगा। और उनकी जीवन शैली में एक अन्य महत्वपूर्ण बदलाव हुआ कि अब जब वे खाद्य उत्पादक बन गए थे तो अब उनके लिए अनाज को संभाल कर रखना भी जरूरी हो गया था, और यही कारण है कि अब वे बर्तन बनाने लगे, टोकरियां बुनने लगे। कुछ बर्तनों का इस्तेमाल वे खाना बनाने के लिए करते थे और कुछ बर्तनों का इस्तेमाल वे भंडारण के लिए करते थे। इस तरह इस समय तरह तरह के मिट्टी के बर्तन बनाए जाने लगे। कपास के उत्पादन का भी हमें साक्ष्य मिलता है। अभी तक हम ये मानते आ रहे थे कि सबसे पहले कपास उत्पादन का साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता से मिलता है, लेकिन वर्तमान में उपलब्ध साक्ष्यों के हिसाब से ये कहा जा सकता है कि कपास को उगाने का पहला साक्ष्य हमें वर्तमान बलूचिस्तान के मेहरगढ़ से मिलता है। तीसरा महत्वपूर्ण बदलाव जो दिखता है वो पत्थर के औजारों का है। हालांकि यहाँ मैं बताना चाहूँगी कि जो पहले के कालों के पत्थर के औजार थे या जिस तरह बनाए जाते थे, उस तरह के पत्थर के औजार इस काल में भी बन रहे थे, पर कुछ नए तरह के पत्थर के औजार भी बनाए जाने लगे थे। जैसे कुछ पत्थर के औजारों की सतह को पैना करने के लिए उन पर कई बार पॉलिश चढ़ाई जाती थी, और जैसा मैंने बताया कि अब वे खाद्य उत्पादक बन गए थे तो उनके काम में आने लायक ओखली, मूसल जैसे बहुत सारे पत्थर के औजारों के हमें साक्ष्य मिलते हैं, जिसका इस्तेमाल अनाज को कूटने पीसने के लिए किया जाता रहा होगा। आपने आज भी देखा होगा कि बहुत सारी जगहों पर अनाज को पीसने के लिए ओखली और मूसल जैसे पत्थर के औजारों का इस्तेमाल होता है। इसी तरह कुछ पुरास्थलों से हमें शवाधान या बरियल के भी साक्ष्य मिलते हैं। जैसे वर्तमान बलूचिस्तान के मेहरगढ़ से हमें इसी तरह शवाधान के साक्ष्य मिलते हैं, जहां शवों को दफनाया गया है। शवों के साथ उनके ज़रूरत की बहुत सारी चीज़ें भी दफनाई गई मिलती हैं। ऐसा लगता है कि उन लोगों का मानना था कि इन चीज़ों का इस्तेमाल जो व्यक्ति मृत है वो आगे के जीवन में करेगा। तो इस तरह के बहुत सारे साक्ष्य हमें नवपाषाण काल से संबंधित मिलते हैं। इन सारे बदलावों या परिवर्तनों की जो मैंने बात की, इसके लिए हमें ये भी समझना ज़रूरी है कि इस तरह के बदलाव भारतीय उपमहाद्वीप के सभी स्थानों पर एक साथ नहीं आए। कुछ लोग यदि खाद्य उत्पादक बन गए थे तो इसका मतलब यह नहीं था कि उन्होंने आखेट संग्रह की गतिविधियां छोड़ दी थीं। कई समुदायों ने ऐसी गतिविधियां जारी रखी, और आज 21वीं सदी में भी विश्व के कुछ हिस्सों में इस तरह की गतिविधियां हो रही हैं। आप कोशिश करिएगा ऐसे कुछ स्थानों के बारे में और जानने की। इस तरह से आज हमने जाना कि इस भारतीय उपमहाद्वीप में पहले पहल कब लोगों ने रहना शुरू किया, उनका जीवन कैसा था, उनके बारे में हमें कैसे पता चलता है, वे आखेटक खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक कैसे बने। तो इस तरह से बहुत सारी बातों की आज हमने चर्चा की, और अगर काल विशेष की बात करें तो आज हमने पूरा पाषाण काल से लेकर नव पाषाण काल तक के समय के बारे में बात की। पूरा पाषाण काल के अंतर्गत हमने लगभग 20 लाख वर्ष पूर्व से लेकर 12,000 वर्ष पूर्व तक के समय के बारे में बात की। मध्य पाषाण काल के तहत हमने 12,000 वर्ष पूर्व से लेकर 10,000 वर्ष पूर्व तक के समय की बात की, और नवपाषाण काल की चर्चा करते समय हमने लगभग 10,000 वर्ष पूर्व के समय में हुए बदलावों के बारे में चर्चा की। अब मैं आप लोगों को कुछ गतिविधियों का सुझाव देना चाहती हूँ। आपने सुना होगा कि इस चर्चा के दौरान मैंने बहुत सारे पुरा स्थलों के बारे में बात की है, तो मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आप भारत के या भारतीय उपमहाद्वीप के एक रूपरेखा मानचित्र पर पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल से संबंधित पुरा स्थलों को अंकित कीजिएगा और इनके बारे में और जानकारी इकट्ठा करने का प्रयास करिएगा। आपने ये भी सुना कि कैसे आखेटक खाद्य संग्राहक एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। आज भी हम बहुत सारी ऐसी यात्राएं करते हैं, आप भी करते होंगे, तो आखेटक खाद्य संग्राहकों की यात्राएं और हमारी यात्राओं में क्या समानताएं हैं या क्या अंतर हैं, इसके बारे में अपने शब्दों में लिखने की कोशिश कीजिएगा। और तीसरी गतिविधि ये है कि हम सभी बहुत सारे अनाजों का इस्तेमाल करते हैं। आप कौन कौन से अनाजों का इस्तेमाल करते हैं, इनमें से 4-5 अनाजों की एक सूची बनाइए। क्या आप इन अनाजों को स्वयं उगाते हैं? यदि हाँ, तो एक तालिका बनाकर उसकी खेती की विभिन्न अवस्थाओं को तालिका में दिखाइए। यदि नहीं, तो ये अनाज किसान से लेकर जिसने इन्हें उगाया है से लेकर आप तक कैसे पहुंचे हैं, इनको तालिका के जरिए आप दिखा सकते हैं। यदि नहीं, तो तालिका में आप ये दिखा सकते हैं कि ये अनाज किसान से लेकर जो इन्हें उगाता है आप तक कैसे पहुंचे। तो इस तरह से आज की चर्चा यही समाप्त होती है। आशा है आप लोगों को इस चर्चा में आनंद आया होगा और हम जल्दी ही मिलेंगे एक अन्य अध्याय के साथ। धन्यवाद।
1: अभी आप सुन रहे थे CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत श्रृंखला ध्वनि शाला। निर्माण सहयोग मीनाक्षी कुकरेती, तनु गुप्ता और जगबंधु जाना। ध्वन्यांकन बटी लैंगलिंगडो और निर्माण अजीत होरो। ये श्रृंखला CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत की गई।

हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। सुनो

0: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: नमस्ते क्लास, टीवी हारेगा देश जीतेगा की क्लास में आपका स्वागत है। और जैसा कि हम जानते हैं कि क्लास में हम सोते हैं तो नुकसान हमारा होता है, इस क्लास में आपको और हर देशवासी को ध्यान देना होगा क्योंकि टीबी किसी को भी हो सकता है। टीचर जी,
2: जी
1: प्लीज बताइए आज आप क्या नया सिखाने वाली हैं?
2: जी सर, आज का सब्जेक्ट है टीबी के कोर्स को पूरा न करने के नुकसान। टीबी और भी खतरनाक हो सकता है और ड्रग रेजिस्टेंट बन सकता है, दवाइयों का असर कम होगा और इलाज हो जाएगा ज्यादा मुश्किल, साइड इफेक्ट की संभावनाएं बढ़ेंगी, उपचार चल सकता है और भी लंबा।
1: यानी टीबी की दवा का कोर्स अधूरा छोड़ना मतलब बड़ी कीमत चुकाना। तो आइए टीबी से हम सब साथ मिलकर लड़ें, इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। टीबी हारेगा देश जीतेगा।
3: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: कभी तो हंसाए।
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम। सुनो
2: शारदा। नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना काम यूनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम। मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। में आज हम बात करते हैं कि डाइजेशन बढ़ाने के लिए अगर आप चाय पी रहे हैं तो हम सजेस्ट करेंगे कि 4 हर्बल चाय पीजिए। वो कौन कौन सी है इसके विषय में बात करेंगे। लेकिन अगर आपका पेट फूला हुआ है तो वो कम हो जाएगा, या यूं कहें कि पिचक जाएगा, या यूं कहें कि वेट लॉस होगा। जानते हैं कि गर्मियों में किन नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से बनी चाय पीने से आपको ब्लोटिंग की समस्या से आराम मिल सकता है। ये एक समस्या है। अब बात करते हैं इसी विषय में। पेट फूलने पर आराम के लिए आप पीजिए हर्बल टी। पेट फूलने की समस्या गर्मियों में बढ़ सकती है और मौसम बदलने के साथ ही लोगों को डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ी समस्याएं होने लगती हैं और इसकी वजह से पेट में गैस बनने लगती है और पेट फूलने लगता है। गर्मियों में बार बार ठंडा पानी पीने, हैवी मील खाने, ज्यादा कोल्ड ड्रिंक पीने से डाइजेशन स्लो हो जाता है। इसी वजह से लोगों को डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ी समस्याएं भी बढ़ जाती हैं। पेट फूलने की समस्या से आराम पाने के लिए हर्बल टी आप पी सकते हैं। आइए जानते हैं कि गर्मियों में किन नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से बनी चाय पीने से आपको ब्लोटिंग की समस्या से आराम मिल सकता है। तो बात सामने आती है कैमोमाइल टी के विषय में बात करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर कैमोमाइल के फूलों से तैयार होने वाली हर्बल टी इन्फ्लेमेशन कम करती है और स्ट्रेस से भी राहत दिलाती है। कैमोमाइल टी पीने से पेट की गैस कम होती है। इसी तरह पीरियड्स के दौरान होने वाले मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स की समस्या और जोड़ों के दर्द से राहत पाने के लिए भी कैमोमाइल की चाय लाभकारी मानी जाती है। सौंफ की चाय। गर्मियों में सौंफ का शरबत पीने से शरीर को ठंडक मिलती है। ये शरीर के तापमान को संतुलित रखता है। इसी तरह सौंफ के दानों को उबालकर बनाई जाने वाली चाय भी गर्मियों में डाइजेशन बूस्ट करने का काम करती है। ये चाय पीने से पेट में भारीपन, गैस और ब्लोटिंग की समस्या कम होती है। अब बात करते हैं अजवाइन की चाय के विषय में। ये देसी मसाला गैस और अपच जैसी समस्याओं से आराम दिलाने का खास नुस्खा है। अजवाइन के बीजों को फाकने से अर्थात लेने से कॉन्स्टिपेशन की समस्या कम होती है और ये खाने का फ्लेवर भी बढ़ाता है। अजवाइन के बीजों को रात भर पानी में भिगोकर रखें और अगले दिन इस पानी को अच्छी तरह से उबालें, थोड़ा सा काला नमक मिलाएं और इस चाय को छानकर पिएं। इस तरह आप स्वादानुसार शहद भी इस चाय में मिला सकते हैं। अदरक और शहद की चाय। जी हाँ, पेट की समस्याओं से आराम पाने के लिए अदरक यानी कि जिंजर का इस्तेमाल बहुत असरदार माना जाता है। ये पेट की समस्याओं को कम करने के लिए अदरक के साथ नींबू, शहद और हल्दी जैसी चीजों को मिलाकर हर्बल टी बनाई जाती है। अदरक की चाय पीने से डाइजेशन बेहतर बनता है और इससे पेट की गैस और ब्लोटिंग की समस्या कम होती है। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम। शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: हाय, मैं हूं रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: सुनो शारदा 90.8 FM और स्मार्ट खड़े हैं रणभूमि में लेकर जागरूकता की तीर कमान, जो ग्रेटर नोएडा से मिटा देंगे टीबी का नामो निशान। टीबी का आधुनिक और संपूर्ण उपचार सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में बिल्कुल मुफ्त है। प्रत्येक टीबी के मरीज को उपचार के दौरान सरकार द्वारा 1,000 रुपए प्रतिमाह दिए जाते हैं, जिसके लिए मरीज का एक बैंक अकाउंट नंबर और आधार कार्ड होना जरूरी है। स्वास्थ्य सही लाभ कही, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
2: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM, Suno Sharda.

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

0: सुनो शारदा 90.8 FM। हंसते हंसते कट जाएंगे रास्ते, ईश्वर से, खुदा से, पिता परमेश्वर से यही दुआ, यही प्रार्थना कर जब आप चलते हैं तो निश्चित तौर पर आपकी मंजिल आपके बेहद करीब होती हुई नजर आती है। लेकिन कभी कभी विघ्न बाधाएं आ जाती हैं, लेकिन डरने का नहीं, घबराने का नहीं। राम राम, दोस्त राम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं गगन आपके साथ, वो गगन जो हमेशा गगन को छूने की बातें किया करता है, यानी कि मोटिवेशन वाली बातों के साथ हम आपके साथ जुड़ रहे होते हैं, राबता के माध्यम से राबता करते हैं। और इस राबता में हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ते हैं हर बार। पिछला एपिसोड बहुत ही खूबसूरत रहा, बहुत अच्छी अच्छी बातें हुई, हमने कम्युनिटी कनेक्ट के बारे में बातें की। इस चर्चा को अब हम आगे लेकर जा रहे हैं और जाहिर सी बात है कि इसमें एक गेस्ट की जरूरत होती है। तो आज हमारे साथ जुड़ रही हैं शारदा सोशल बिजनेस सेंटर से, आप डायरेक्टर हैं डॉक्टर पारुल सक्सेना मैम। तो मैम, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: बहुत बहुत नमस्कार, और एक बार फिर हमें यहाँ बुलाने के लिए आपका और आपकी पूरी टीम का, सुनो शारदा का, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके सभी श्रोताओं को एक स्नेहपूर्ण नमस्कार।
0: थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। ये रेडियो आप ही का है और आपका बहुत बहुत शुक्रिया हम दिल से अदा करते हैं, क्योंकि इस सीरीज को आप आगे लेकर जा रही हैं, आपका विभाग, आपका डिपार्टमेंट आगे लेकर जा रहा है, और इसी की वजह से सारा विश्वविद्यालय एक सूत में आपने पिरोया है। तो दिल से एक बार पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद मैं आपका करना चाहूंगा जिस तरीके से मैंने शुरुआत की, टेक लिया कि जिंदगी के रास्ते सरल, सुगम, आसान हो जाते हैं जब आप टेंशन नहीं लेते। कहा जाता है कि हंसते हंसते कट जाएंगे रास्ते, लेकिन कभी कभी जिंदगी में टेंशन आ ही जाती है। आज आपने जिस विषय को चुना है, जिस टारगेट ऑडियंस को चुना है, वो है यूथ, हमारा युवा। कहा जाता है कि भारत युवाओं का देश है, भारत युवा देश है। तो आपने सबसे पहले मुझे ये बताएं कि ये टारगेट ऑडियंस को क्यों चुना, और जो सब्जेक्ट है भावनात्मक स्वच्छता, इसका हिंदी रूपांतरण मैंने किया है, अंग्रेजी है इमोशनल हाइजीन। तो ये दो बातें प्लीज आप बताएं।
1: तो जैसे आपने कहा कि भारत देश जो है एक यंग देश माना जा रहा है, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ आर पॉपुलेशन, जो हमारी जनसंख्या है, वो यंग पॉपुलेशन है, 18-35 के एज ग्रुप में है। एंड ये हमें यंगेस्ट कंट्री का खिताब जो मिलता है
0: जी।
1: इस संख्या के द्वारा तो, और देखने को ये भी आ रहा है कि जिस तरह की जनरेशन से हम बात कर रहे हैं, जिस तरह की पीढ़ी से हम बात कर रहे हैं, उस पीढ़ी का जो एक अभी हाल में भी, और अगर हम आंकड़ों से जाएं, मैं आपको यहाँ पे कुछ आंकड़े प्रस्तुत करना चाहूँगी कि अगर हम 2024 की बात करें, भारत देश में 171,000 सुसाइड हुई
0: जी।
1: और इसका मूल कारण जो है वो हम मानते हैं तनाव, टेंशन। आपने सुना होगा और आप शायद मेरी बात से मुखातिब भी होंगे कि अगर हम छोटे बच्चों से भी पूछते हैं, आई एम अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर,
0: यस जी,
1: मैं बहुत स्ट्रेस में हूँ, राइट। तो ये बातें अगर मैं और आप रिलेट करें, जिस जनरेशन, जिस पीढ़ी से हम आते हैं, वहाँ ये बड़ों से जुड़ी हुई बातें होती थी
0: जी, जी।
1: बच्चों का काम था, जैसे आपने शुरू में कहा कि हंसना, खेलना और हंसते खेलते जीवन व्यतीत करना। तो इस चीज़ को लेते हुए एक बहुत बड़ी एक समस्या बनता जा रहा है, तनाव, टेंशन, है। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है? अब अगर प्रॉब्लम हम लोगों ने आइडेंटिफाई करी है, तो इसका जो एक हल है, एक समाधान, वो भी हमें ही ढूंढना पड़ेगा।
0: बेशक बेशक, समस्या है तो समाधान है। और हम चाहते हैं कि जिस तरीके से हमने सफर की बात की, सुहाने सफर में गीत भी होता है, संगीत भी होता है, दूसरा हमारा ये भाग है। अगर आप कहें तो छोटा सा एक म्यूजिकल ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद इस सिलसिले को आगे रखेंगे। सो लिसनर्स, आप कहीं जाएगा मत, सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, सुनो शारदा 90.8 FM। प्रोग्राम का नाम है राबता, और ये राबता कर रहे हैं, मेरे साथ जुड़ी हुई है डॉक्टर पारुल सक्सेना मैम, जो कि आप डायरेक्टर हैं शारदा सोशल बिजनेस सेंटर से। बस एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाएगा, सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन, सुनो शारदा 90.8 FM।

0: इस छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन है शारदा विश्वविद्यालय का, तो इस वजह से हम समुदाय की बातें करते हैं, आपकी बातें, ज्ञान विज्ञान पढ़ने पढ़ाने की बातें, जिंदगी को जीने की बातें, खुश रहने वाली बातें करते हैं। जिस विषय को आज हमारे गेस्ट ने चुना है वाकई बहुत ही खास विषय है। एक टारगेट ऑडियंस है यूथ, युवा, और हम बात करेंगे दबाव के बारे में, यानी कि तनाव के बारे में। वो जो तनाव यूथ ले लेता है, कहता है कि मैं दबाव में हूँ, प्रेशर में हूँ, और यही वजह है कि आज के जो हमारे गेस्ट हैं उनका एक सब्जेक्ट है इमोशनल हाइजीन। तो एक बार फिर से मैं स्वागत करना चाहूंगा, आप हैं हमारी डायरेक्टर शारदा सोशल बिजनेस सेंटर से, आप हैं डॉक्टर पारुल सक्सेना। मैम एक बार फिर से मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद।
0: मैम सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि ये जो सब्जेक्ट है आज आपने चुना है, मैं समझ गया कि आपने यूथ को ध्यान में रखते हुए चुना है, और आपने मुझे आंकड़े भी गिनाए कि इतने ज्यादा आंकड़े हैं जिसकी वजह से वो एक डॉक्टर बन सकता था हमारा युवा, हमारा युवा एक इंजीनियर बनकर देश में योगदान दे सकता था, और इस तरीके से आकस्मिक मृत्यु जो हुई है 1.5 लाख समथिंग कुछ आपने आंकड़ा हमें दिया। तो आपका जो सब्जेक्ट है इमोशनल हाइजीन, थोड़ा सा अगर आप हमें विस्तार में बताएं ये क्या है, ये सब्जेक्ट क्या कहता है।
1: जी तो गगन आपका काम है सवाल पूछना,
0: जी,
1: तो
0: जी,
1: आप थोड़ा रोल रिवर्सल करते हैं, तो इस बार मैं आपसे सवाल पूछती हूँ और उस सवाल के उत्तर द्वारा हम अपने श्रोताओं से कनेक्ट करेंगे। तो अगर मैं आपसे कहूँ गगन सबसे पहले उठकर हम क्या करते हैं,
0: सबसे पहले मैं जो मैंने बात आती नैतिक शिक्षा की, जो हमने अपने घर से सीखा है, समाज से सीखा है, मैं ईश्वर का शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद उसका करता हूँ कि तूने मुझे आज का दिन दिखाया परवरदिगार।
1: बहुत अच्छी बात है। और उसके बाद?
0: उसके बाद मैं बहुत डिटेल में आप जान रहे हैं और अच्छी बात है, मैं फिर वही डिटेल में बताना चाहूँगा। अगर मैं बिस्तर पर, जिसे आम भाषा में कहा जाए हमारा बेड है या खटिया है, कहा जाता है कि बेटा जब उठते हैं तो आप धरती माँ को प्रणाम करना चाहिए, और उसके बाद मेरी नित्य रोज की जो प्रतिक्रियाएँ होती हैं, तो मैम इस तरीके से भगवान का धन्यवाद करते हुए मैं अपना घर से कदम निकालता हूँ। तो ये छोटी सी एक शुरुआत रहती है।
1: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, और आपने जो बातें कही उस पर हम आगे और बात करेंगे, पर मैं आपके उत्तर में से एक जो की वर्ड है वो उठाना चाहूँगी। आपने कहा कि मैं अपनी नित्य प्रतिक्रिया करता हूँ, और वो सभी के आई थिंक डेली रूटीन में शामिल है कि सुबह उठकर हम लोग अपने ब्रश आर टीथ, वी टेक अ शावर, राइट, और वी कॉम्ब आवर हेयर। तो हम क्या कर रहे हैं, वी आर टेकिंग केयर ऑफ आवर फिजिकल हाइजीन,
0: राइट।
1: तो ये हमारी, जैसे आपने कहा कि नैतिक शिक्षा, कि भाई आपको अपनी सारी फिजिकल इम्प्योरिटीज की सफाई करनी है, ठीक है। लेकिन अब मेरा दूसरा सवाल होता है
0: जी,
1: कि हम अपनी मानसिक स्वच्छता के लिए क्या करते हैं। जैसे आपने तो बहुत अच्छी बात कही कि भाई मैं भगवान का स्मरण करता हूँ, मैं धरती माँ को प्रणाम करता हूँ, और एक बहुत ही अच्छे थॉट, एक विचार के साथ मैं आगे अपना जीवन शुरू करता हूँ कि आज किसी के लिए भी कोई बुरा काम ना हो, काम ना होगा क्योंकि आपकी सोच ऐसी है, तो वो आपकी सोच में रिफ्लेक्ट करता है और वो आपके एक्शन में रिफ्लेक्ट करता है। लेकिन हम में से कितने लोग जो हैं वो इस तरह की मानसिक स्वच्छता की ओर ध्यान देते हैं। तो जो ये हमारा टॉपिक है इमोशनल हाइजीन, ये उसी को लेकर है। हम अपनी जिंदगी को जीने में इतने बिजी हो जाते हैं कि हम एक पॉज लेना,
0: क्या बात है,
1: और एक ठहराव लाना, वो कहीं हम भूल चुके हैं।
0: भूल चुके हैं,
1: और हम भूल चुके हैं, तो उसी तरह से शायद हमने अपनी नई पीढ़ी को तैयार करा है, हमने अपने आगे आने वाली पीढ़ी को कंडीशन करा है कि आप भागते रहिए, आप अपने जीवन में आगे कुछ ना कुछ बढ़ते रहिए, और एक ठहराव बहुत ज़रूरी है हमारी ज़िंदगी में। तो वो कैसे हम ला सकते हैं, ये कॉन्सेप्ट जो है ये एक मुहिम के तौर पे मैं आपसे अनुरोध करूँगी कि जो भी हमारे श्रोता है वो इसको अपनी आदत में लेकर आए, जिसको हम बोलते हैं इमोशनल हाइजीन, टू गेट क्लियर ऑफ ऑल योर इम्प्योरिटीज विच आर देयर इन योर माइंड। आपके जितने भी मानसिक विचार जो हैं उनकी सफाई या उनकी स्वच्छता का ध्यान रखना, क्योंकि आज अगर अगेन जो हमारा टॉपिक जहाँ से हमने शुरू करा था वो है हमारे युवाओं को लेकर, और वो इतना एनग्रॉस्ड हैं। आप अपने आसपास भी देखते होंगे कि बच्चे अगर एक डिवाइस छोड़ते हैं, मोबाइल छोड़ते हैं तो आईपैड, आईपैड छोड़ते हैं तो लैपटॉप, लैपटॉप छोड़ते हैं तो मे बी टीवी, तो वो इतना एनग्रॉस्ड हैं कि कहीं पे एक पॉज लेना भूल गए हैं। तो एक इस रेडियो के प्रोग्राम के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से, एक हम आई वुड से कि आई वुड ट्राई टू रीटेरिएट जो आपने कहा कि नैतिक शिक्षा हमें मिली है वो सभी के पास है, पर वो कहीं ना कहीं
0: अप्लाई कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते। मैम आपकी बात को मैं समझ गया, और हमारे जो श्रोता हैं, जो लिसनर्स हैं, वाकई बहुत समझदार हैं, क्योंकि आपने बहुत अच्छी एक हिंट दे दी है जिस सब्जेक्ट पर लोग कतराते हैं बात करने से। और हमारा जो युवा अगर अलर्ट हो गया, समझ गया, संभल गया, तो निश्चित तौर पर वो अपने आप को बचा कर रखेगा, अपने लिए, देश के लिए, अपनी फैमिली के लिए, और वो अपना नुकसान नहीं चाहेगा। सो लिसनर्स, कहने का आशय यही कि वाकई एक अच्छा चर्चा का विषय है। इस विषय को आप जानिए, सुनिए, समझिए, और एक एक्सपर्ट के तौर पर डॉक्टर पारुल सक्सेना मैम हमारे साथ जुड़ी हुई है। सो कहीं जाएगा मत, लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, क्योंकि हमें भी ठहराव की बहुत जरूरत है, एक ब्रेक की जरूरत है। जब बातों का सिलसिला लगातार ज्यादा हो जाता है तो हमें भी म्यूजिक की आवश्यकता होती है। सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड ऑन योर सुरशादा 90.8 FM विद मी, मेरे यानी गगन के साथ प्रोग्राम है राब्ता।

0: जनाब म्यूजिक एक ऐसा जरिया है कि दिलों को जोड़ने का काम करता है, स्ट्रेस यानी कि तनाव को दूर करने का काम करता है, और यही एक वजह है कि गीत संगीत में जब आप खो जाते हैं तो कभी कभी आप गाते हैं, गुनगुनाते हैं या अपना मन पसंदीदा गाना आप सुन लेते हैं। तो एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत, मैं हूं गगन आपके साथ। प्रोग्राम का नाम है राबता और राबता कर रहे हैं हम, हमारे साथ जुड़ी हुई है डॉक्टर पारुल सक्सेना मैम जो कि डायरेक्टर हैं शारदा सोशल बिजनेस सेंटर से। मैम एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत अच्छी तरीके से विषय पर आपने रोशनी डाली। विषय का नाम है इमोशनल हाइजीन यानी कि भावनात्मक स्वच्छता। स्वच्छ रहना बहुत जरूरी है, चाहे वो मानसिक विचार हो, चाहे वो आपकी हेल्थ की बात क्यों ना हो। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जब मैं सुबह उठता हूं तो ध्यान भी करता हूं, ध्यान करना भी बहुत जरूरी है। और आज के परिवेश में हम देखें कि मैम ज्ञान का अथाह भंडार सोशल मीडिया के माध्यम से बह रहा होता है, किताबें भी हमने पढ़ी हैं या अच्छी अच्छी बातें हो भी रही होती हैं, लेकिन उन सब के बावजूद इंसान कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत कर रहा है जिसकी वजह से वो अपने कर्मों का, कहते हैं ना आम भाषा में, खुद भागीदार है। प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं कि आप भला कीजिए, आप सकारात्मक रहिए। मुझे लगता है कि उन्होंने एक समाज में चेतना ला दी है, युवा वर्ग भी, बड़े बुजुर्ग भी, हर धर्म विशेष के लोग उनसे जुड़ रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं। तो चीजें तो वही है, लेकिन डिपेंड करता है कि कौन कह रहा है और क्या कह रहा है और किस तरीके से सामने वाला उसको अप्लाई कर रहा है। तो मैम मैं वाकई दिल से आपको धन्यवाद कहना चाहूंगा कि बहुत अच्छा एक सब्जेक्ट आप लेकर आए, क्योंकि समाज में मैंने ये देखा है कि एजुकेशन सेक्टर में कुछ ऐसी घटनाएं दुर्घटनाएं घटी हैं। हमारा भी फर्ज बनता है कि उस पर हम रोशनी डालें, और वाकई आपने इस सब्जेक्ट को चुना, मैं पुनः बारंबार आपको शुक्रिया अदा करता हूं। अब मैम थोड़ा मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि ये जो चीज़ें हैं हमारे अंदर कैसे आती हैं, कैसे हम उनको आगे लेकर जाएं, कैसे अपने आप को तनाव से बचा कर रखें, वो चाहे पढ़ाई का स्ट्रेस हो या आम जिंदगी में। यूथ अगर कनेक्ट करता है तो वो कहता है कि मेरा प्रेमी या प्रेम का रूट ही वो एक दूसरा टेंशन भी वो लोग ले।
1: बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ फिर मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगी, लेकिन जैसे आप जो टिप्पणियाँ आपने करी के ये कहीं ना कहीं इस बात का जो समाधान है, जो समस्या की हम बात कर रहे हैं, हम सभी उस चीज़ से अवगत है, वी आर अवेयर ऑफ दैट। जैसे आपने कहा कि आप मेडिटेशन करते हैं या आप ध्यान करते हैं, या इतना इन्फॉर्मेशन ओवरलोड है हमारे जो आजकल की जनरेशन है, उनके पास इन्फॉर्मेशन की कमी नहीं है, लेकिन बस कमी कहाँ एप्लीकेशन की है। तो आज आगे जो हम बातें करेंगे वो दो चार चीज़ें जो हम दोहराएंगे जो हमारे जीवन में ऑलरेडी हैं, पर उनको हम कैसे इम्बाइब कर सकते हैं और इमोशनल हाइजीन को कैसे अपना सकते हैं। अब मेरा सवाल आपसे है, अगर आपको कभी जैसे कट लग जाता है या थोड़ा सा जल जाता है,
0: जी जी,
1: तो हमारा क्या रिएक्शन रहता है?
0: उस वक्त रिएक्शन यही रहता है कि ऐसा क्यों हो गया, नहीं होना चाहिए था, ये लापरवाही क्यों हो गई। और कहते हैं कि हर एक घटना दुर्घटना सीख देती है कि भविष्य में ऐसी कोई पुनरावृत्ति ना हो
1: जी।
0: क्योंकि अंग भंग हो जाना बड़ा नुकसान होता है, समय बर्बाद होता है, रुपया आपका बर्बाद होता है, और एक तनाव जो भी कहीं ना कहीं दिमाग में फिर रह ही जाता है
1: जी। तो इसको अगर हम मान के चले फिजिकल हर्ट कि भाई मैं सब्जी काट रही हूँ, मैं एक गृहिणी भी हूँ और मैं एक टीचर भी हूँ, और अचानक से मेरा हाथ कट गया
0: जी,
1: तो मेरा जो तुरंत रिएक्शन रहता है कि भाई हाथ कट गया, खून निकल रहा है, तो या तो मैं उसको पानी में हाथ डाल के खून को रोकना चाहूंगी, एंटीसेप्टिक से हाथ धोऊंगी, या मैं बैंडेड लगाऊंगी,
0: डिटॉल से, या आम भाषा में फिटकरी है तो कोई फिटकरी लगाएगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल। तो जिस तरह के उपचार मेरे पास उपलब्ध है, और अगर कहा जो है वो गहरा है तो शायद हम डॉक्टर के पास भी जाएंगे कि भाई ये फिजिकल हर्ट है और हमें घाव लगा है, अब आप हमारा उपचार करिए। लेकिन क्या होता है जब एक इमोशनल हर्ट के हम शिकार होते हैं, क्या हम उसका उपचार करने की कोशिश करते हैं? स्पेशली अगर हम बात करें इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, इन सब बातों के लिए बात करना भी एक टैबू है।
0: क्या बात है,
1: तो ये एक टैबू है कि आप मेंटल हेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर कोई अपनी सिचुएशन को आइडेंटिफाई कर और आप तक पहुंचना भी चाहता है, तो वहाँ से शायद उनको उस तरह का रिस्पांस नहीं मिलता। और इमोशनल हर्ट इज मोर ग्रेवर देन द फिजिकल हर्ट। वो ज़्यादा गहरा घाव है इमोशनल हर्ट। बहुत तरह की बातें होती है आजकल के जो बच्चे हैं वो एक एक या दो दो बच्चे ही है, बहुत लाड़ प्यार से पले हैं, तो अगर टीचर ने कुछ कह दिया या आपस में कुछ बात हो गई, जैसे आप बोल रहे थे पार्टनर से कुछ बात हो गई, अनबन हो गई है, तो क्या वो एक इमोशनल घाव को लेकर हम क्या करते हैं? ये सवाल मैंने, क्योंकि मैं एक सब्जेक्ट है इमोशनल इंटेलिजेंस जो हम शारदा में पढ़ाते हैं, और मैं इमोशनल इंटेलिजेंस की बहुत बड़ी प्रोपोगेटर मैं कह सकती हूँ, तो मैं अपने क्लास में भी अपने बच्चे जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स उनसे पूछती हूँ कि क्या करते हो जब आपको इस तरह का मानसिक घाव लगता है, तो उनका जवाब होता है कि मैम हम अगर हमें दुख होता है तो हम और दुख भरे गाने सुनते हैं, या अलग अलग मीन्स है, नो क्या आई फाइंड सोलेस इन फूड, गुड फूड है, तो अपने अपने कोपिंग मैकेनिज्म्स हैं। पर फिर मेरा सवाल उनसे यही रहता है कि क्या आप उसको, जिस तरह से आप एक फिजिकल हर्ट को, एक शारीरिक घाव को सहेज के रखते हो, उसे बचा कर रखते हो, उसे प्रोटेक्ट करके रखते हो, क्या वही एफर्ट आप एक मेंटल हर्ट के लिए, एक मेंटल घाव के लिए, एक मानसिक घाव के लिए उतना एफर्ट आप दे पाते हैं?
0: बहुत बड़ी बात कर रहे हैं आप, बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, और बहुत बड़ा इशारा आप कर रहे हैं, यूथ को संभलने का आप मौका दे रहे हैं कि अगर इस तरीके से कोई दिक्कत परेशानी होती है तो घुटे ना, आम भाषा में जिसे कहा जाता है, कहा जाता है कि मन का बोझ हल्का हो जाता है जब आप अपने मन की बातें शेयर करते हैं। और सेहत सही तो लाभ कही दोस्तों, मैं तो ये भी कहूँगा कि उस दोस्त से आप जरूर बातें साझा करिएगा जो दोस्त आपकी बात का मजाक ना उड़ाए, भरे समाज में आपकी बातों को इधर से उधर ना करे, ऐसे दोस्त होना भी बहुत बड़ी बात है। और जिस परिवेश की हम बात कर रहे हैं, जिस माहौल की बात कर रहे हैं, आप और हम शारदा विश्वविद्यालय से ताल्लुक रखते हैं, तो निश्चित तौर पर यहाँ आपके टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, आपके मेंटोर हैं, तो आप उनसे जरूर बात करिएगा, क्योंकि बातों से बड़े बड़े मसले हल होते हैं। चलिए मैम, यहाँ पर इस सिलसिले को आगे ले जरूर लेकर जाएंगे, तो एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक ले लेते हैं। सो लिसनर्स, कहीं दूर मत जाएगा, सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी कनेक्ट प्रोग्राम, जिसके जरिए हम कनेक्ट कर रहे हैं अपने यूथ को, और प्रोग्राम का नाम है राब्ता और विषय है इमोशनल हाइजीन। सो सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन, सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ।
2: शादी में पूरे गांव को दावत देंगे, एक एरोप्लेन में कायलपटन के लोग होंगे, दूसरे में नरसापुर। बाबू हाँ बोल।

0: बड़ी दुआओं से, ईश्वर से, खुदा से, पिता परमेश्वर से आपको, यानी कि आपके माँ बाप ने आपको मांगा है। कहते हैं कि जिस आंगन में बच्चे खेलते हैं, कूदते हैं, बड़े अच्छे लगते हैं, कभी कभी माँ भी नाराज हो जाती है, पिताजी भी नाराज हो जाते हैं, वो एक अलग बात होती है। सोचिए जिस घर आंगन में बच्चे ना खेलें, ना किलकारी गूंजे, तो बहुत सुना सुना वो आंगन लगता है। राम राम, दोस्त राम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और एक विशेष कार्यक्रम सुन रहे हैं आप राब्ता। और इस राब्ता कार्यक्रम के जरिए हम राब्ता कर रहे हैं एक विषय से जिसका नाम है इमोशनल हाइजीन। और इस सब्जेक्ट पर बात करने के लिए डॉक्टर पारुल सक्सेना मैम, जो कि आप डायरेक्टर हैं शारदा सोशल बिजनेस सेंटर से, जो एक रूपरेखा बनाने का मैंने प्रयास किया, उसका मतलब मकसद सिर्फ और सिर्फ यही कि आप दुआओं से मांगे हुए हैं, बड़ी मिन्नतों से आपने जन्म लिया है, और जन्म लिया है तो कहते हैं कि ये खुदा की, ईश्वर की नेमत है, इसको आप नुकसान ना पहुंचाएं। कहा जाता है कि बड़ी मुश्किल से मानव जन्म मिलता है। जब आप अपने आप को नुकसान पहुंचाते हैं तो आपके माता पिता भी सिवाय आंसू के आप उनको कुछ देकर नहीं जा रहे होते। अगर आपने उस दुख दर्द को झेला है, जाना है, समझा है, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उनको उनकी दामन में, उनकी झोली में खुशियों से उस दामन को हम भर दें। तो मैम, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत और दिल से, दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रिया कि बहुत अच्छा सब्जेक्ट आप लेकर आई हैं।
1: आपका भी शुक्रिया और आपके श्रोताओं का भी शुक्रिया जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं कि वो इतने पेशेंटली हमारी बात को सुन रहे हैं। और इस प्रोग्राम का मकसद यही है कि अगर हमारे श्रोताओं के किसी एक या दो के जीवन में भी कोई हम एक विचार में कुछ, जैसे आपने कहा, पॉजिटिविटी लेकर आ पाए, तो आई थिंक वो उद्देश्य इस प्रोग्राम को करने का सफल
0: बहुत खूबसूरत। कल परसों मेरी किसी से बात हो रही थी, बीइंग अ मीडिया पर्सनालिटी, बीइंग अ रेडियो प्रेजेंटर होने के नाते मुझे अच्छा लग रहा है कि वाकई मैं बारंबार मैं इमोशनल हो रहा हूँ कि एक अच्छे सब्जेक्ट को आपने चुना, और जिस परिवेश में हम और आप रह रहे हैं तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। मेरे पास कुछ फ्रेशर्स आए थे, मैंने रेडियो की भाषा में समझाने की कोशिश की, मैंने कहा देखो ऐसा है भाई, एक कहावत है कि चिकने घड़े बनना, हर गम को यूं करके आप भुला दीजिए, क्या आपको नहीं मिलेगा? मार्क्स अगर कम रह गए तो मार्क्स भी आपको अच्छे मिल जाएंगे, आप चाय के साथ चर्चा करिए, फिल्म देखने चले जाइए, टूर पर चले जाइए। अगर आपको और भी गम है, जो हम बात कर रहे थे प्रेमी प्रेमिका की, लोग आते जाते रहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने आप को हार्म पहुंचाएं, नुकसान पहुंचाएं। तो मैंने अपने रेडियो भाषा में उनको समझाने का छोटा सा प्रयास किया,
1: क्योंकि वैसे आप बार बार दोहरा रहे हैं कि इस तरह के इकोसिस्टम से जुड़े होने के हम लोगों का भी एक फर्ज बनता है कि एक तरह की जागरूकता हम लेकर आए। तो यहाँ मैं दो इम्पॉर्टेंट बातें कहना चाहूँगी जो हम बात करें इमोशनल हाइजीन की, कि एक तो बहुत ज़रूरी है कि अगर हम अपने इकोसिस्टम में, ये सभी लोगों के लिए है, ना सिर्फ लोग जो इस तरह की इमोशनल हर्ट से या मेंटल प्रेशर से जो है वो जो गुजर रहे हैं, बल्कि उनके आसपास के लोगों

0: जो लोग जुड़े हुए हैं जैसे माता पिता या टीचर या अभिभावक या आपके दोस्त, के इट्स हाई टाइम वी लर्न टू आइडेंटिफाई द सिम्टम्स।
1: ये मेरा सवाल था मैम, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत।
0: तो इस तरह के जो सिम्टम्स होते हैं, जैसे डॉक्टर हैं, तो हम सभी को एक डॉक्टर बनना पड़ेगा, क्योंकि ये जो चीज़ है वो बहुत तेज़ी से फैल रही है। और कई बार आप इस सिचुएशन में होते हैं, आप अपने उस सिचुएशन में होते हुए आप बहुत चीज़ को डायग्नोस नहीं कर पाते, लेकिन अगर आप एक थर्ड पर्सन के पर्सपेक्टिव से, एक जो इस सिचुएशन के बाहर खड़ा हुआ है और उस नज़रिए से आप देखते हैं, तो आप उन सिम्टम्स को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। तो जैसे आपने कहा कि आपके मेंटर्स हैं या आपके टीचर्स हैं या आपके पीयर ग्रुप है, तो उन लोगों को भी जागरूक होने की ज़रूरत है कि इस तरीके अगर हम सिम्टम्स देखें, तो जैसे आपने कहा कि दिस इज़ नॉट समथिंग टू टैबू अबाउट, ये कोई गलत बात नहीं है। जिस तरह से हमें फिजिकल हर्ट होते हैं, हमें बीमारियां होती हैं, शारीरिक बीमारियां होती हैं, और हम उसका उपचार करने की कोशिश करते हैं, तो इसी तरह से कोई मानसिक तनाव है या कोई मानसिक प्रेशर है तो उसका उपचार भी उपलब्ध है, और ये चीज़ जो है वो बहुत आसानी से ठीक हो सकती है।
1: बहुत खूबसूरत मैम, वाकई बहुत एक अच्छा सवाल जो मैम की तरफ से खुद ही आया और उसका बहुत खूबसूरती के साथ मैम ने जवाब दिया। मैं भी थोड़ा होमवर्क कर रहा था, मेरे भी दिमाग में यही सवाल था कि इसका आंसर मैं आपसे जानूं। तो मैम आपने जो बात रखी, लिसनर्स, बस मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि ज़िंदगी बहुत बहुत बहुत खूबसूरती से, प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ, खुशियों के साथ गुजारते चले जाइए। और फिर कहता हूं, बारंबार कहता हूं कि ना टेंशन लेने की ज़रूरत, ना किसी को टेंशन देने की आवश्यकता, क्योंकि लोग अक्सर ऐसा सोचते हैं मैम कि टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। मेरा मानना ये है कि ना टेंशन लेने का ना टेंशन देने का, खुश रहने का, क्योंकि जब आप खुशनुमा माहौल बनाते हैं तो आप खुश रहते हैं, आपकी तरक्की होती है, बरकत होती है। लेकिन जब आप एक ताना बाना बुनते हैं कि मैं उसको नीचा कैसे दिखाऊं, उसको गिराने की कोशिश मैं कैसे करूं, तो मुझे लगता है कि आप वहीं उलझ कर रह जाते हैं और आपकी तरक्की बरकत रुक जाती है, थम जाती है। तरक्की बरकत आपको एक ना एक दिन मिलेगी ज़रूर, कछुए की चाल से धीरे धीरे धीरे धीरे कोशिश करते रहिए, खुद पर और खुदा पर यकीन रखिए, तो निश्चित तौर पर कामयाबी आपको मिलेगी ज़रूर। हाजी बेटा गगन, ये तो नई लाइन आ गई। ये मेरे साथ बहादुर होते हैं और बहादुर ने इशारा कर दिया कि गगन इसको कॉपीराइट करा लीजिएगा। तो मैम छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और उसके बाद हम अपनी बातों को समापन की ओर जरूर लेकर जाएंगे। सो छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड ऑन योर शोर शारदा 90.8 FM विद मी, मेरे यानी गगन के साथ।

0: तुझसे है कैसा ये राब्ता। राब्ता बहुत ही शीर्षक, बहुत ही खूबसूरत नाम, और इसके जो जन्मदाता हैं आप हैं डॉक्टर पारुल सक्सेना मैम। आपने बहुत ही खूबसूरत नाम इस प्रोग्राम का रखा है, और आप डायरेक्टर हैं शारदा सोशल बिजनेस सेंटर में, आप यहाँ कार्यरत हैं, और आप एक सब्जेक्ट को चुन कर लेकर आई हैं जिसके बारे में सुनना समझना हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। मैं तो ये भी कहूँगा कि सिर्फ यूथ ही इस प्रोग्राम को ना सुने, अपने पेरेंट्स को भी आप कार्यक्रम को ज़रूर सुनाइए। इमोशनल हाइजीन के बारे में बातें हो रही हैं, भावनात्मक स्वच्छता के बारे में बातें हो रही हैं। मैम ने ये भी बताया कि आपके शरीर को थोड़ा सा नुकसान हो जाता है तो आप अलर्ट हो जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन जब आप अंदर से टूट रहे होते हैं, मानसिक तनाव होता है, तो तब हम क्या करें। आपने ये भी कहा कि लोगों से मिलिए, बातचीत करिए, बातचीत के ज़रिए बहुत सारी चीज़ें हल हो जाती हैं। तो मैम फाइनली मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, अगर हम इस प्रोग्राम को कंक्लूड करें, कोई ऐसी बात जो आपसे छूट रही है, जो आप कहना चाहती हैं यूथ से, जैसे कि मैंने जिक्र किया पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट भी बहुत ज़रूरी, तो आप कह सकते हैं।
1: जी, तो सबसे पहले मैं वो इकोसिस्टम को लेकर ही जो हम बात करते हैं कोपिंग मैकेनिज्म, कि हम किस तरह से, तनाव देखिए हमारे जीवन का अभिन्न अंग है, हर स्टेज पे, चाहे वो छोटा बच्चा हो, चाहे वो यूथ हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, किसी ना किसी बात का तनाव हम लोगों को रहता है। तो यहाँ पे क्योंकि हम एकेडमिशियन और एक विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं, यहाँ पे मैं उजागर करना चाहूँगी कि जो कंसेप्ट है जो हम तनाव की बात करते हैं, वो सेंस हाइले साहब ने इसको प्रोपोगेट करा था, और उन्होंने कहा था कि सम स्ट्रेस इज नेसेसरी टू लीड अ लाइफ बट इट शुड नॉट बी डिस्ट्रेस। राइट, सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेस एंड डिस्ट्रेस,
0: समझने की जरूरत है
1: जी। तो हमें स्ट्रेस में से डिस जो नेगेटिव कनोटेशन है उसको हटाना है। अब हम ये कैसे कर सकते हैं, तो पहला जो कोशिश मैं जो मैं बात कहना चाहूँगी वो कोशिश रहेगी हमारे आसपास से जुड़े लोगों की, मैं भी एक पेरेंट हूँ और आप भी एक पेरेंट हैं, फिर मेरा वही सवाल रहता है कि जैसे बच्चा एग्ज़ाम दे के आता है, तो सबसे पहले हमारा सवाल ऐसे पेरेंट, और ऐसे नहीं है, ये सवाल मैंने अपने बच्चों से नहीं करा, जब मेरे बच्चे एग्ज़ाम दे कर आते हैं तो पहला सवाल मेरे उनसे होता है, हाउ वॉज योर एग्ज़ाम, आपका पेपर कैसे रहा। लेकिन जिस बच्चे ने वो एग्ज़ाम दिया, शायद हम उसको भूल जाते हैं कि आप कैसा फील कर रहे हैं। राइट, तो ये चीज़ छोटी, बहुत छोटी चीज़ है, अगर एज अ पेरेंट, एज गार्जियन, इफ़ वी कैन इम्बाइब दैट इन टू आर डे टू डे लाइफ, कि सिर्फ ये ना पूछ के हाउ आर यू, अगर हम इसको थोड़ा सा रिफ्रेस करें, हाउ आर यू फीलिंग टूडे, तो बहुत जो है एक डिफरेंस बनेगा लाइफ में, क्योंकि वो एक फ्रेज हमें एक मौका देगा अपनी एक्सप्रेशंस को, अपने विचारों को दूसरे के समक्ष रखने का। तो यहाँ पे जितने भी लोग जुड़े हुए हैं वो प्रेशर कुकर से तो वाकिफ होंगे, तो कहते हैं कि वो सीटी इसीलिए लगाई जाती है कि वो प्रेशर धीरे धीरे रिलीज होता है। तो बस वही जो एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है हमें अपने लाइफ में अप्लाई करना है, कि जहाँ हम एक मौका दे सकें एज अ फ्रेंड, एज अ टीचर, एज ए मेंटोर, एज पेरेंट, एज कोलीग्स टू अदर पर्सन टू एक्सप्रेस देमसेल्फ विदाउट बीइंग जजमेंटल। बहुत ज़रूरी है कि हम उनको, उनकी बात को सुने, क्योंकि कई बार ये होता है कि बच्चा आके कुछ हमसे बात कहना चाहते हैं और एज अ पेरेंट ऑल्सो हम जजमेंटल हैं, तुमने ही कुछ गलत करा होगा या तुम्हारी ही गलती रही होगी, तो वो क्या है, हम बच्चे को धकेल रहे हैं, अपने कोलीग्स को धकेल रहे हैं कि वो आके हमसे बात ना शेयर करें। तो इमोशनल हाइजीन जब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ये बात हम ध्यान में रखें कि जब हम किसी सिचुएशन, किसी इंडिविजुअल के साथ डील कर रहे हैं, तो वी हैव टू डील विद एन ओपन माइंड, हमें नहीं पता वो पर्सन किस तरह की दुविधा से, प्रेशर से गुजर रहा है।
0: बहुत खूबसूरत।
1: दूसरी बात मैं यहाँ कहना चाहूँगी कि जैसे आपने नैतिक शिक्षा की बात करी, तो मैं उस नैतिक शिक्षा के सूत्र को लेकर कहना चाहूँगी। आपको याद हो अगर हमारे पुराने घरों में सुबह उठते के साथ ही श्लोकों का जो है वो उच्चारण होता
0: जी,
1: था
0: जी,
1: चाहे वो गायत्री मंत्र ही क्यों ना। तो अभी एक स्टडी हुई है लखनऊ में एक इंस्टीट्यूट में, सेंटर फॉर बायोमेडिकल रिसर्च, जहाँ पे क्योंकि लोगों का मानना है कि जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो सिर्फ अप्लाइड साइंसेस तक एप्लीकेबल है, जहाँ हम फिजिक्स की बात करते हैं या केमिस्ट्री की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे सोशल साइंसेस में भी बहुत एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। और एक एक्सपेरिमेंट किया गया जहाँ पे दो ग्रुप्स को लिया गया, एक ग्रुप जिनको सिर्फ इंग्लिश और हिंदी आती थी और एक ग्रुप जिनको संस्कृत आती थी, और जिन लोगों को इंग्लिश और हिंदी आती थी उनको कुछ दिन तक संस्कृत के श्लोकों का जो पाठ है वो सुनाया गया, और उनका फिर एक फंक्शनल MRI, एक एडवांस लेवल का MRI है और वो किया गया। और उस फंक्शनल MRI में आप इंस्ट्रक्शन देते जाते हैं और जो भी आपका रिस्पोंडेंट होता है वो इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके काम करता है। तो उसमें जो MRI ब्रेन का हुआ तो उनका रिस्पॉन्स पहले जब सिर्फ वो इंग्लिश और हिंदी जानते थे और जब उसके बाद जब उन्होंने संस्कृत श्लोक का जो पठन सुनना शुरू करा उसमें बहुत अंतर था। तो आप जिस भी मज़हब से आप बिलोंग करते हैं, आप हर किसी मज़हब में आपको वर्सेस मिल जाएंगी, कुरान की आयतें मिल जाएंगी, या अगर हम हिंदू धर्म की बात करें तो आपको श्लोक मिल जाएंगे। तो एक हैबिट बना सकते हैं कि हम अपने घरों में सुबह के टाइम इसका उच्चारण जो है वो करें। उसका इफ़ेक्ट, क्योंकि ये कोई एक मैजिक पोशन नहीं है कि हम पिए और वो तुरंत दिखे, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ लाइफ जो है वो दिखेगा। दूसरी चीज़, अब आई विल कम टू, आई विल जस्ट टेक टू मोर मिनट्स टू वाइंड अप। जब हम जनरेशन जी की बात करते हैं तो ये आप भी मुझसे जो है बहुत हद तक सहमत होंगे, दे थ्राइव ऑन इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, जैसे 2 मिनट्स नूडल, 30 सेकेंड्स ऑफ यूट्यूब शॉर्ट्स, सब कुछ तुरंत अभी है। तो इसके विपरीत थोड़ा हमें जाना पड़ेगा, जैसे हमने पहले पॉज की बात करी थी, और अगेन एज एन एकेडमिशियन जब मैं यहाँ कुछ कह रही हूँ तो ये जो चीज़ें हैं वो साइंटिफिकली प्रूवन है, ये शोध के द्वारा जो है वो स्थापित की गई है। तो एक कॉन्सेप्ट है डिलेड ग्रेटिफिकेशन, जो मिशेल वॉल्टर एक थ्योरिस्ट है, उन्होंने स्टैनफोर्ड में ये एक्सपेरिमेंट करा था, और उन्होंने 5 साल के बच्चों को लिया और उनको मार्शमेलो, जैसे हमारे यहाँ जलेबी होती है या बर्फी होती है, उस तरह की मिठाई है अमेरिका में, तो उन्होंने उन बच्चों को वो मिठाई उनके सामने रखी और इंस्ट्रक्शंस के साथ छोड़ा कि आप अगर ये मिठाई 15 मिनट तक नहीं खाते हैं और 15 मिनट तक वो रेजिस्ट कर पाते हैं तो आपको रिवॉर्ड दिया जाएगा, आपको 1 मिठाई के बदले 2 मिठाई दी जाएगी। तो इस तरह से उन्होंने ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन को उस मिठाई के साथ एक बंद कमरे में छोड़ दिया जिसमें कैमरा लगा हुआ था, तो जब थोड़ी देर के बाद आए कुछ बच्चे, बहुत इंटरेस्टिंग है, यूट्यूब पे भी अवेलेबल है अगर हमारे श्रोता से देखना चाहें तो। तो बच्चे मुंह बनाते हैं, कोई उसको लिक करता है, कोई चाटता है, कोई उसको खा भी लेता है, और फिर जिन बच्चों ने वो

0: और तुरंत दे गिव इन टू द टेम्पटेशन, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, और तुरंत वो मिठाई उनके मुंह में चली गई थी. तो देर वॉज अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन देयर परफॉर्मेंस. तो क्या इससे हम निकालते हैं कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रेजिस्ट आर टेम्पटेशंस एंड टू डी क्लटर आर थॉट्स. संस्कृत में एक बहुत अच्छी वर्स है जो मुझे अपने स्कूल के दिनों की याद दिलाती है, और हमारे स्कूल की डायरी में लिखी होती थी, तमसो मा ज्योतिर्गम है
1: जी,
0: राइट, दैट इज फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट. अस्तो मा सद्गम्या, लेट नोबल थॉट्स कम टू अस फ्रॉम ऑल साइड्स. तो पॉजिटिविटी लाइफ में, जैसे आपने कहा, जीवन बहुत ही सुंदर है और बहुत ज़रूरी है कि हम नेगेटिविटी को हम जो है ऑल टुगेदर एलिमिनेट नहीं कर सकते अपनी लाइफ में से. कोई ना कोई हमें मिलेगा जो हमारे विचारों से सहमत नहीं करेगा और जो शायद हमें ह्यूमिलेट भी करेगा, जो चाहे हमें बुरा भला भी कहे.
1: जी जी
0: जी. तो बहुत ज़रूरी है कि उस नेगेटिविटी को दूर रख कर इमोशनल हाइजीन प्रैक्टिस करके, जैसे आपने कहा, कुछ दो चार बातें जो आई थिंक हम सभी को मालूम है, ये एक माध्यम है रिटीरिएट करने का. हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वो चीज़ें कॉन्शियस लेवल पे नहीं करते. तो एक कॉन्शियसनेस लेकर आने का कि जहाँ पर हम और आप मिलकर मेडिटेशन, चाहे वो दो मिनट, और मेडिटेशन ज़रूरी नहीं कि आप आग बंद करके बैठें, आप सिर्फ चुपचाप एक कोने में बैठें, एक इंट्रोस्पेक्शन करें कि आपका पिछला दिन कैसे गुजरा और वो दिन कैसे बेहतर हो सकता था. क्या आप वॉक कर रहे हैं तो एक मेडिटेटेड वॉक, जैसे हम कहते हैं कि हर एक कदम पे हम ओम नमः शिवाय बोलेंगे या जय श्री राम बोलेंगे, तो एक मेडिटेटेड वॉक आप कर सकते हैं. और फिर म्यूजिक, जैसे आपका रेडियो स्टेशन तो है ही हमेशा, तो जब भी आपको ऐसे लगे इस तरह के नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं तो आप म्यूजिक का सहारा ले सकते हैं. बहुत सूदिंग इफेक्ट होता है म्यूजिक का भी. अदरवाइज आप यंग जनरेशन है, आप स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हो सकते हैं, क्रिएटिविटी में इन्वॉल्व हो सकते हैं.
1: बहुत खूबसूरत मैम, बहुत खूबसूरती के साथ आपने हर एक सवाल का जवाब दिया, और जिस तरीके से लास्ट में आकर आपने चौके छक्के मारे, या कहें कि मतलब इन बातों को अगर लिसनर्स, अरे नहीं मैम ऐसा कुछ नहीं है, मैंने आपको मंच पर यूं कहें कि मंच संभालते हुए देखा, मैं आपसे सीख रहा हूँ. और बस लिसनर्स हम यही कहेंगे कि फिर अपने शब्दों को दोहराऊंगा कि वाकई ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, इसे प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ, खुशियों के साथ गुजारते चले जाइए. अपने अंदर खुशियाँ तलाशिए, ज़माने में खुशियाँ तलाशिए, खुशियाँ बांटिए. और जिस तरीके से मैडम ने बात की कि पेरेंट्स की जो भूमिका है उसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, हमारा फ़र्ज़ बनता है कि दोस्ताना व्यवहार के साथ उसके बच्चे के दुख दर्द को हम बांटें, दुख दर्द को कम करने की कोशिश करें, वो खुशनुमा माहौल बना कर दें ताकि वो अपने मन की बात हमसे साझा कर पाए, शेयर कर पाए. अदरवाइज़ कभी कभी ऐसा माहौल बन जाता है कि जिसकी वजह से बच्चे हिम्मत नहीं कर पाते अपने अभिभावक से अपने मन की बात साझा नहीं कर पाते. तो बहुत बहुत शुक्रिया मैम, दिल की गहराइयों से एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद.
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपकी टीम का, क्योंकि आप एक ऐसे सूत्र हैं जो हम अपने आसपास की कम्युनिटी के साथ जुड़ पाते हैं. तो एक बार फिर बहुत तहे दिल से आपको और आपकी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया, और आशा रखते हैं कि हम आगे भी मिलेंगे और कुछ ऐसे
1: बेशक अच्छा करेंगे, कमाल करेंगे, धमाल करेंगे, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और फिर यही कहेंगे कि ना टेंशन लेने का, ना टेंशन देने का, खुश रहने का, बिंदास रहने का. सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM का ये विशेष कार्यक्रम. राब्ता कैसा लगा जरूर हमसे राब्ता करिएगा 01204060205 पर. फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार.

हाय, मैं हूँ विदिता बाघ और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
0: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in। नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ। चलिए बात करते हैं हेल्थ की। जो कहते हैं सच कहते हैं कि हेल्थ है तो सब कुछ है। आप अक्सर जिम जाते हैं, जिम जाने से पहले किन किन खास बातों को ध्यान में रखना चाहिए, इसी के विषय में आज हम बात करने वाले हैं। जी हाँ, जिम अगर आप जा रहे हैं तो उससे पहले क्या आप खाएं क्या ना खाएं, इसी के विषय में आज हम आपको बताने वाले हैं। उन 5 फूड के विषय में जो आपकी बॉडी को लोहे जैसी मजबूत बॉडी बनाएंगे। जिम में ज्यादा देर तक एक्सरसाइज करने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, जो हमें प्री वर्कआउट फूड से बड़े आसानी से मिल सकती है। इनसे सेहत भी अच्छी रहती है और आप खुद को फिट महसूस करते हैं। चलिए यही बात डिटेल में जानते हैं। जिम से पहले जरूर खाएं ये फूड, क्या है खास जानकारी, बात करते हैं। जी हाँ, हमें अपने डाइट पैटर्न में तब बदलाव की जरूरत होती है जब हम जिम जा रहे होते हैं। हालांकि जिम के वक्त शरीर को ज्यादा एनर्जी और स्टेमिना की जरूरत होती है, इसलिए जिम करने से पहले प्री वर्कआउट फूड्स को लेने की सलाह दी जाती है। ये फूड्स स्टेमिना भी बढ़ाते हैं और एनर्जी भी डबल करते हैं। प्री वर्कआउट फूड्स हमेशा हेल्दी और पोषक तत्वों से भरपूर होना चाहिए, जिससे पर्याप्त मात्रा में एनर्जी शरीर को मिल सके। इससे एक्सरसाइज करने में भी अच्छे से मदद मिलती है, साथ ही मसल्स की रिकवरी भी सही तरीके से होती है। इतना ही नहीं, प्री वर्कआउट फूड्स में प्रोटीन और कार्ब्स का संतुलन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन दोनों के बीच का सही संतुलन होने से थकान नहीं होती। अगर आप भी जिम जाते हैं तो यहाँ हम आपको कुछ बेस्ट प्री वर्कआउट फूड्स के बारे में बता रहे हैं। ओट्स के विषय में बात करते हैं। ओट्स के बारे में तो हमने सुना ही है, फाइबर कार्ब्स और अनगिनत पोषक तत्वों से भरपूर ओट्स सेहत के लिए बेहद अच्छा होता है। वर्कआउट से पहले ओट्स खाना फायदेमंद होता है, इससे लंबे समय तक शरीर में एनर्जी रहती है और अच्छे से एक्सरसाइज करने में मदद मिलती है। ओट्स में मौजूद विटामिन बी कार्बोहाइड्रेट को एनर्जी में बदल देता है। वर्कआउट करने से करीब आधे घंटे पहले अनप्रोसेस्ड ओट्स खाने की हिदायत दी जाती है। अब बात अंडे की। वर्कआउट करने से पहले अंडा खाना काफी फायदेमंद माना जाता है। इसमें अमीनो एसिड के साथ साथ प्रोटीन भी भरपूर मात्रा में होता है, जिससे वर्कआउट करने में ज्यादा मदद मिलती है। अगर आप जिम जाने के 30 से 40 मिनट तक पहले 1 से 2 उबले अंडे या ऑमलेट खाते हैं तो एक्सरसाइज करने में ज्यादा एनर्जी मिल सकती है। बात स्मूदी। स्मूदी पोषक तत्वों का एक बड़ा स्रोत है। बेरी स्मूदी के साथ साथ ग्रीन स्मूदी भी काफी फायदेमंद होती है। इसे वर्कआउट से पहले लेने से कठिन एक्सरसाइज करने के लिए एनर्जी मिलती है। इसके अलावा ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी, एवोकाडो, पत्तेदार सब्जियों की स्मूदी भी ट्राई कर सकते हैं। बात केला की। केले को भरपूर एनर्जी का स्रोत माना जाता है। इसके अलावा केले में कार्बोहाइड्रेट और पोटेशियम के भी अच्छे गुण होते हैं। इससे शरीर की नसों और मांसपेशियों को ठीक ढंग से काम करने में मदद मिलती है। केला खाने से डाइजेशन दुरुस्त रहता है। इतनी खूबियों के चलते केला बेस्ट प्री वर्कआउट फूड में से एक है। उबला हुआ चिकन। बात सामने ये आती है कि चिकन को डाइट का अहम हिस्सा माना जाता है। चिकन में मौजूद प्रोटीन शरीर के निर्माण के लिए बेहद जरूरी है। प्रोटीन मसल्स की रिकवरी में भी मदद करता है। थोड़ी सी काली मिर्च और स्वादानुसार नमक के साथ उबला हुआ चिकन एक अच्छा प्री वर्कआउट फूड में एक है। अब बात करते हैं एनर्जी बार की। जी हाँ, जिम में वर्कआउट करने वालों के पास एनर्जी बार जरूरी होना चाहिए। आप इसे अपने पास स्टोर करके रखने, केमिस्ट दुकान या फिर किसी सुपरमार्केट में इसे आराम से खरीद सकते हैं। एनर्जी से भरपूर एनर्जी बार में कार्बोहाइड्रेट के साथ हेल्दी फैट, प्रोटीन और फाइबर भी मौजूद होता है। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहे ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
1: हाय, मैं हूं रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा @90.8 FM।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.
2: मैडम यू कैन बी वेरी फंटा।
3: केको डाइट का नाम सुना है? आज से ये सब बंद और वो शुरू।
4: उठा!

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: आज प्यार की होड़ी
2: दिल बोले तो
3: हार्ट हार्ट
4: हवा यार सौदा सौदा
2: ओहो
1: दोनों डील कर
2: टाइट वेरी टाइट

0: भाई?
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
2: सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
3: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
4: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
2: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: चमा चम चम।
1: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में

0: और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.
5: हाय नमस्कार, मैं हूं आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: नेड़े होके भी दूरियां रहिंदियां ने, कुछ मोहब्बतां अधूरियां रह के भी पूरियां रहिंदियां ने।
1: हाय, मैं हूं विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: हर सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर टीबी की मुफ्त जांच, मुफ्त इलाज और पोषण सहायता उपलब्ध है। मन में हो टीबी से जुड़ा सवाल तो करें टोल फ्री नंबर पर कॉल 1800-11-66-66। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: अरे सुनीता, कैसे बा मुनिया?
1: नमस्ते आशा दीदी,
0: सब ठीक बा? साफ सफाई के ध्यान रखत आरू ना?
1: जी दीदी, जैसे रहुआ कहल रहनी, हर इतवार के साफ सफाई की जिम्मेदारी लेनी हम। जहाँ कहीं भी पानी जमा देखी नी, ओकेरा के तुरंत साफ करी नी। जैसे के पानी के ड्रम, कूलर, फ्रिज, ट्रे, सब के साफ सफाई करी ले हम।
2: और आस पास कहूँ भी टायर नर...

0: बस अब ली हर इतवार के साफ सफाई की जिम्मेदारी, मिल के पड़क जा मच्छर बन पर भारी।
1: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
2: गगन कोकरी फतेह।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसा विषय है डिप्रेशन, अवसाद, तनाव। इससे हम कैसे अपने आप को बचा कर रखें। जी हाँ, इससे अगर आप अपने आप को बचा कर रख पाएंगे तो निश्चित तौर पर आप खुश रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, निरोग रहेंगे। चलिए बात करते हैं कि डिप्रेशन से कैसे बचें। तो बात सामने आती है कि डिप्रेशन से उबरने के लिए व्यक्ति को अपनी दिनचर्या में व्यायाम, योग और ध्यान को अवश्य जगह देनी चाहिए। ये डिप्रेशन के रोगी के मस्तिष्क को शांत करता है, साथ ही उनमें हार्मोनल असंतुलन को ठीक करता है। व्यक्ति को सुबह उठकर सैर पर जाना चाहिए, उसके बाद योगासन और प्राणायाम करना चाहिए। रोगी को ध्यान या मेडिटेशन करना चाहिए। विटामिन B12 सेरोटोनिन बनाता है जो हमारे मूड को सही और खुश रखता है, लेकिन अगर विटामिन B12 की कमी होगी तो इससे मूड स्विंग की दिक्कत हो सकती है। अगर लंबे समय तक ये दिक्कत बनी रहेगी तो इससे पीड़ित व्यक्ति डिप्रेशन में जा सकता है, इसलिए शरीर में विटामिन B12 की डोज लेनी चाहिए। होम्योपैथी में कुछ बेहतरीन दवाएं हैं जो डिप्रेशन से आपको उबार सकती हैं। तो इसलिए अपना ख्याल रखें, डिप्रेशन से अपने आप को बचा कर रखें। अब इसी में आगे हम बात करते हैं बोटुलिज्म क्या है। तो इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि बोटुलिज्म हमारे शरीर में क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलिज्म बैक्टीरिया का संक्रमण है जो हमारे शरीर में जहरीली स्थिति पैदा कर देती है। बोटुलिज्म घातक हो सकता है और इसमें आपातकालीन चिकित्सीय देखभाल की आवश्यकता पड़ सकती है। ये शिशुओं में भी हो सकता है, ये भोजन में फैल सकता है, साथ ही एक घाव को संक्रमित कर सकता है। बोटुलिज्म विषाणु अक्सर फलों और सब्जियों की सतहों और समुद्री भोजन में पाए जाते हैं। कम ऑक्सीजन की स्थिति में आमतौर पर ये तब बनता है जब भोजन को घर पर अनुचित तरीके से संसाधित अर्थात डिब्बा बंद किया जाता है या भोजन को फ्रिज में अधिक दिनों तक रखा जाता है। बोटुलिज्म एक दुर्लभ लेकिन गंभीर बीमारी है जो विष के कारण होती है, शरीर की नसों पर हमला करती है। इससे सांस लेने में कठिनाई, मांसपेशी पक्षाघात और यहां तक कि मृत्यु भी हो सकती है। कोशिश करें कि ताजा और ठीक से पका हुआ भोजन ही करें। पके हुए भोजन को फ्रिज में जमा कर खाने की लत अच्छी नहीं है, यथा संभव बचना चाहिए। अब हम बात करने जा रहे हैं, सावधान रहने की बहुत आवश्यकता है। प्रोसेस्ड और पैक्ड फूड आपको कैंसर का मरीज बना रहा है, मरीज बना सकता है। तो विशेषज्ञ कहते हैं कि प्रोसेस्ड फूड का सीधा मतलब है कि पैकेट वाला खाना। जब किसी नेचुरल खाने को एक प्रक्रिया के जरिए रिफाइन करके उसमें कुछ प्रिजर्वेटिव को जोड़कर उसकी पैकेजिंग की जाती है तो उसे प्रोसेस्ड फूड कहा जाता है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि आजकल प्रोसेस्ड फूड लोगों की पसंदीदा फूड बन चुकी है, जैसे कोल्ड ड्रिंक, चिप्स, चिकन नगेट्स, फ्राइज वगैरह वगैरह। भले ही ये चीज खाने में आपको काफी स्वादिष्ट लगती हो, लेकिन क्या आप जानते हैं कि लंबे वक्त तक इनका सेवन करने से अपने शरीर को काफी नुकसान हो सकता है। फूड के प्रोसेसिंग के दौरान इसकी सारी विटामिन हीट के चलते खत्म हो जाती है। इसमें कैलोरी की मात्रा भी काफी ज्यादा होती है। प्रोसेस्ड फूड में अक्सर अतिरिक्त चीनी, सोडियम और वसा का अस्वास्थ्यकर स्तर शामिल होता है। ये तत्व हमारे द्वारा खाए जाने वाले भोजन का स्वाद बेहतर बनाते हैं, लेकिन इनकी अधिकता से मोटापा, हृदय रोग, उच्च रक्तचाप और मधुमेह जैसी गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं पैदा होती हैं। इसलिए प्रोसेस्ड और डिब्बा बंद भोजन से बचें, तभी स्वास्थ्य बचा पाएंगे। ऐसी खास जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: आइए समझते हैं महावारी के चक्र को। महावारी की शुरुआत गर्भाशय की परत के टूटने से शुरू होती है। इस दौरान हार्मोन के कम स्तर की वजह से महिला या लड़की अक्सर चिड़चिड़ा महसूस करती है। महावारी के दौरान अंडाशय पर तरल से भरे हुए फॉलिक्स आने लगते हैं। इनमें से प्रत्येक में एक अंडा होता है जो बाहर आने की प्रतीक्षा कर रहा होता है।
2: फॉलिकुलर चरण, इस चरण में गर्भाशय की परत फिर से बनने लगती है। एस्ट्रोजन का स्तर लगातार बढ़ता रहता है और फॉलिकल जिसमें अंडा रहता है और बड़ा हो जाता है। अंडे के छूटने से ठीक एक दिन पहले और अंडे के छूटने का दिन सबसे ज्यादा प्रजनन योग होते हैं। ये आमतौर पर माहवारी के 11वें से 14वें दिन के बीच में होता है, लेकिन ये बहुत अधिक इस बात पर भी निर्भर करता है कि महिला या लड़की का मासिक चक्र कितना लंबा है।
1: ओव्यूलेशन चरण, इस चरण में अंडा बाहर निकलता है। यदि महिला इस दिन या 3 दिन पहले यौन संबंध बनाती है तो गर्भवती होने की संभावना सबसे ज्यादा रहती है। फॉलिकल का फटना गर्भाशय की परत को और भी मोटा बना देता है। अंडाशय से निकला हुआ अंडा फैलोपियन ट्यूब के जरिए अपनी यात्रा शुरू करता है और आगे जारी रखता है।
2: ल्यूटियल चरण, ल्यूटियल चरण के दौरान होने वाले हार्मोनल परिवर्तन अक्सर माहवारी के पहले महसूस किए जाने वाले सामान्य लक्षणों से संबंधित होते हैं, जैसे कि आमतौर पर माहवारी से पहले मूड में बदलाव, सिर दर्द, चेहरे पर मुहासे, पेट फूलना, स्तनों में भारीपन और दर्द आदि का अनुभव हो सकता है जो कि सामान्य है। गर्भाशय में जमी हुई परत एक प्रकार का रसायन छोड़ती है जो कि अंडे के निषेचित होने पर उसे गर्भाशय की दीवार से चिपकने में मदद करती है, और यदि निषेचन नहीं हुआ है तो वही रसायन उस परत को टूटने और बहकर बाहर निकलने में मदद करता है।
1: महावारी संबंधी अधिक जानकारी के लिए नजदीकी ANM या आशा से संपर्क करें।
2: यूनिसेफ के सहयोग से सुनो शारदा 90.8 FM द्वारा जनहित में जारी।
3: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। मैं आज हम बात करने वाले हैं डाइजेशन के विषय में। अगर आपका पाचन तंत्र मजबूत है तो निश्चित तौर पर आपको कोई दिक्कत परेशानी हो नहीं सकती, लेकिन अगर आपका पाचन तंत्र मजबूत नहीं है, डाइजेशन सिस्टम कहीं ना कहीं गड़बड़ा रहा है, तो दिक्कतें परेशानी आपके सामने आती रहेगी। कहने का आशय सिर्फ और सिर्फ यही कि खराब से खराब डाइजेशन को एक दिन में सुधार देंगे यानी कि ये पांच जूस। वो कौन कौन से पांच जूस हैं जिसके बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, और जूस पीने का सही तरीका भी। चलिए विस्तार से बात करते हैं। खराब डाइजेशन कई बीमारियों का कारण बन सकता है, इसलिए डाइजेशन को दुरुस्त रखने के लिए पांच हेल्दी जूस जरूर पिए। बेहतर पाचन के लिए हेल्दी जूस बहुत आवश्यक है। पाचन से जुड़ी समस्याएं बहुत असहज हो सकती हैं, काफी दर्दनाक भी, लेकिन बहुत से तरीकों से इन समस्याओं से छुटकारा पाया जा सकता है। ऐसा करने का एक सबसे आसान तरीका है हेल्दी जूस पीना, जो विटामिन मिनरल्स और डाइजेस्टिव एंजाइम से भरपूर होते हैं। आइए जानते हैं कुछ ऐसी हेल्दी जूस के बारे में जो आपके पाचन तंत्र के लिए काफी लाभदायक हो सकते हैं। बात करते हैं अदरक का जूस के विषय में, तो बात सामने आती है कि अदरक का जूस एंटी इंफ्लेमेटरी गुणों से भरपूर होता है, जो पेट के डिस्कम्फर्ट से राहत दिलाता है और हेल्दी डाइजेशन होने में मदद करता है। अदरक का जूस बनाने के लिए आपको अदरक छील लेना है और उसे छोटा छोटा काट लें। अब थोड़े से पानी के साथ इसे ब्लेंड कर लें और इसके पल्प को छान लें। आप स्वादानुसार नींबू का रस या फिर शहद भी मिला सकते हैं, इससे ये आपको कड़वा नहीं लगेगा। अब बात अनानास का जूस। जी हाँ, अनानास में ब्रोमेलिन नाम का तत्व अधिक मात्रा में होता है, जो प्रोटीन को ब्रेक डाउन कर सकता है और इन्फ्लेमेशन कम करने में सहायक होता है। अनानास के जूस का सेवन करने से पाचन में लाभ मिल सकता है और ब्लोटिंग जैसी समस्याओं से भी छुटकारा मिल सकता है। आपको केवल ताजा अनानास लेना है, उसे थोड़ी से पानी के साथ ब्लेंड कर लेना है, अब इसे छानकर पी सकते हैं। अब बात नींबू के रस की। नींबू का रस भी प्रकृति में अम्लीय होता है और इसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। नींबू की साइट्रिक प्रकृति गुर्दे की पथरी की संभावना को कम करने में मदद करता है। बात एलोवेरा जूस की। एलोवेरा अपनी हीलिंग गुणों के लिए जाना जाता है, इससे इन्फ्लेमेशन कम होने में मदद मिलती है। इससे पेट में हेल्दी बैक्टीरिया का उत्पादन बढ़ता है और पाचन में भी मदद मिलती है। आपको केवल एलोवेरा जेल को थोड़े से पानी के साथ ब्लेंड कर लेना है। गाजर का जूस। गाजर में फाइबर अच्छी खासी मात्रा में पाया जाता है और ये पाचन तंत्र को रेगुलेट करने में मदद करता है। इससे हेल्दी बाउल मूवमेंट्स में भी मदद मिलती है। अगर आप इसे नियमित रूप से पीते हैं तो पेट में इन्फ्लेमेशन भी कम हो सकती है और पेट में हेल्दी बैक्टीरिया के उत्पादन में भी मदद मिलती है। आपको केवल गाजर को थोड़े से पानी के साथ ब्लेंड करके छान कर पी लेना है। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम।
1: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो।

0: Sharda School of Media, Film and Entertainment is a temple of creativity. यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट. ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, ओटीटी प्रोडक्शन, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग.
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM. ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन. आर्जिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है. तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in. शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश.
2: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM.

0: भाई, भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम। सुनो
1: शारदा। पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन VFX गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University. Sharda School of Media, Film and Entertainment, जहाँ सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: हाय, मैं अरुण विजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो? तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया, फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
4: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशाद 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजेइंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: So, where are you? The world is here at Sharda University.
5: Hi, this is Shalmali.

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.
2: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
3: बिल्कुल सोचा है पापा।
2: क्या सोचा है?
3: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
2: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
3: जी पापा।
2: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
3: हाँ पापा बिल्कुल।
4: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
0: So where are you? The world is here at Sharda University.
5: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, ओटीटी प्रोडक्शन, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन, आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।

0: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: भाई,
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।
2: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
3: रोहन अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
2: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
3: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं
2: समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो? तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
3: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
2: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
3: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
2: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
4: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
5: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुनो शारदा 90.8 एफएम कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजेइंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
4: So, where are you? The world is here at Sharda University.

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है, और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
0: So where are you? The world is here at Sharda University.

दिल तेरा लेके ही तो लिख बेबी, किसी से भी पूछ लौंडा टू मच है। बोली में थोड़ा रियान ही टच है। जितने भी रूमर सुने तूने अपनी सहेलियों से मेरे बारे में वो सारे सच है। बेबी मैं हूँ वो जिसके बारे में चेतावनी देती होगी तुझे तेरी माँ। BADSHA नाम बदल दियो मेरा बेबी, जो ना कर रहा दी तेरी ना।

0: हाय, मैं हूँ रणविजय। आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है, और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.
5: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: I'm sorry, Nami. मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे प्लीज माफ कर दो।
1: It's over. अब सब कुछ खत्म हो चुका है शेर। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन अब तुमसे शादी नहीं कर सकती।

0: What is this shit? मैं 3 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ.
1: So what? मैं काम में बिजी था यार. तुम मुझसे मिलना चाहती थी. मैंने तो नहीं बोला मेरी वेट करो.
0: You know, Shail, it really hurts. Anyway.

गर्भ के चौथे महीने से प्रसव के 6 महीने बाद तक हर माँ ले रोजाना संतुलित भोजन के साथ आयरन की एक लाल गोली। एनीमिया मुक्त भारत, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। सही।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम। मेरे यानी गगन के साथ स्मार्ट संस्था के साथ मिलकर हम एक खास कार्यक्रम चला रहे हैं जिसका नाम है सेहत से ही लाभ गई। इसी के अंतर्गत एक खास बात मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। दोस्तों, जब भी हम सफर पर निकलते हैं या निकलने से पहले हर चीज की प्लानिंग करते हैं, नया स्कूटर या कार खरीदने से पहले हर विकल्प पर सोचते हैं, तो फिर अपने परिवार की योजना बनाने से पहले क्यों नहीं सोचते? ये तो जिंदगी भर का फैसला है। आपके परिवार को नियोजित रखने के लिए आपके पास गर्भ निरोधक के कई विकल्प हैं। जब आपके पास सही जानकारी होगी तभी आप अपने स्वास्थ्य, अपने शरीर, अपने जीवन और अपने भविष्य के बारे में सही फैसला ले पाएंगे। तो झिझके नहीं, आज ही अपने डॉक्टर या आशा दीदी से बात करें और अपने सभी गर्भ निरोधक विकल्प जानें। ये खास जानकारी सुनो शारदा 90.8 एफएम के माध्यम से स्मार्ट के सहयोग से सेहत सही लाभ कई के अंतर्गत मैं आप तक पहुंचा रहा था। अधिक जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम।
1: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: भाई?
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM। सुनो
2: शारदा। नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। में आज हम बात करने जा रहे हैं किडनी पेशेंट के लिए बेस्ट है 5 फूड। आइए जानते हैं कि गुर्दे की बीमारी में किस तरीके से ये फायदा पहुंचाता है। जी हाँ, एक संतुलित शाकाहारी डाइट गुर्दे के स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। और गुर्दे की बीमारी के खतरे को कम कर सकता है। बात करते हैं किडनी पेशेंट के लिए डाइट क्या है। तो बात सामने आती है कि बेहतर स्वास्थ्य के लिए किडनी को स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है और संतुलित आहार किडनी की बीमारियों को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि आप शाकाहारी हैं तो ऐसे कई पोषक तत्व युक्त खाद्य पदार्थ हैं जो किडनी के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में सहायता कर सकते हैं और किडनी रोग के खतरे को कम कर सकते हैं। बात करते हैं कि हम 5 शाकाहारी खाद्य पदार्थों के बारे में जानेंगे जो किडनी पेशेंट के लिए फायदेमंद हो सकते हैं और जरूरी पोषक तत्व भी प्रदान करते हैं। तो बात पत्तेदार साग के विषय की। पालक, बथुआ, करीमुआ, सरसों, केल, कोलार्ड ग्रीन्स जैसी पत्तेदार हरी सब्जियां किडनी के स्वास्थ्य के लिए बेहतर विकल्प हैं। इनमें पोटेशियम की मात्रा कम होती है और आवश्यक विटामिन, खनिज और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं। इन सागों में डाइटरी फाइबर भी अधिक होता है जो ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करने और वजन को नियंत्रित रखने में मदद करता है। अपने आहार में पत्तेदार सब्जियां शामिल करने से किडनी की कार्य क्षमता में मदद मिल सकती है और क्रॉनिक किडनी रोग का खतरा कम हो सकता है। अब बात करते हैं बेरीज की। स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, रॉस्पबेरी और क्रेनबेरी जैसी बेरीज एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन और फाइबर से भरपूर होते हैं। इनमें पोटेशियम भी कम होता है जो उन्हें किडनी के लिए अनुकूल फल बनाता है। बेरीज में एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं और ये ऑक्सीडेटिव तनाव को कम करने में मदद कर सकता है जो किडनी के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। नाश्ते के रूप में मुट्ठी भर फ्रेश बेरीज का आनंद लें या पौष्टिकता बढ़ाने के लिए उन्हें स्मूदी, सलाद या दलिया से जोड़ें। बात फलियों की। दाल, छोले, काली बीन्स और राजमा सहित विभिन्न फलियां प्रोटीन और फाइबर के उत्कृष्ट स्रोत हैं। उनमें सोडियम की मात्रा कम होती है और मैग्नीशियम, पोटेशियम और फास्फोरस जैसे आवश्यक खनिजों की अच्छी मात्रा प्रदान करते हैं। फलियों में संतृप्त वसा और कोलेस्ट्रॉल भी कम होता है जो उन्हें हृदय के लिए स्वस्थ विकल्प बनाता है। अपने आहार में फलियां शामिल करने से ब्लड प्रेशर के स्तर को बनाए रखने और गुर्दे की बीमारी के खतरे को कम करने में मदद मिल सकती है। बात साबुत अनाज की। किनोआ, ब्राउन राइस, जौ और ओट्स जैसे साबुत अनाज किडनी के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होते हैं। इनमें फाइबर की मात्रा अधिक होती है और ये मैग्नीशियम, आयरन और विटामिन बी जैसे आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करते हैं। साबुत अनाज में ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है जो ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करने में मदद करता है और टाइप 2 डायबिटीज के खतरे को कम करता है जो किडनी रोग का एक प्रमुख कारण है। बात फूल गोभी की। फूल गोभी एक बेहतरीन सब्जी है जो किडनी के लिए फायदेमंद हो सकती है। इसमें पोटेशियम कम होता है और विटामिन सी, फोलेट और फाइबर का अच्छा स्रोत होता है। फूल गोभी का उपयोग आलू जैसे हाई पोटेशियम खाद्य पदार्थों के विकल्प के रूप में किया जा सकता है जिससे ये किडनी की समस्या वाले लोगों के लिए एक अच्छा विकल्प बन जाता है। फूल गोभी को भूनकर या भाप में पकाकर साइड डिश के रूप में खा सकते हैं। शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: हाय मैं हूँ रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
2: पौष्टिक आहार है टीबी के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार। पौष्टिक आहार से उपचार परिणाम बेहतर होते हैं और स्वास्थ्य में तेजी से सुधार आता है। इसीलिए तो निक्षय पोषण योजना के अंतर्गत इलाज के दौरान हर रोगी को मिलते हैं 1,000 रूपए प्रतिमाह पोषण सहायता के रूप में और सभी टीबी रोगियों के लिए न्यूट्रिशन सप्लीमेंट देने का प्रावधान है। साथ ही टीबी रोगियों के इलाज के दौरान हजारों निक्षय मित्र उन्हें पोषण किट प्रदान करते हैं। आप भी निक्षय मित्र बनकर टीबी रोगियों की सहायता कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए निक्षय.in पर जाएं। आइए हम सब साथ मिलकर देश को टीबी मुक्त बनाएं।
3: निक्षय मित्रों से मिली शक्ति टीबी के मरीजों को नई ऊर्जा दे रही है।
4: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
5: हाय, दिस इज शालमली खोलगड़े एंड यू आर लिसनिंग टू मी ऑन 90.8 FM सुनो शारदा।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.
2: क्या आपको पता है जन्म के एक घंटे के अंदर नवजात शिशु को माँ का दूध पिलाना चाहिए। माँ का पहला गाढ़ा पीला दूध नवजात शिशु को बीमारियों से बचाता है।
3: जन्म के बाद नवजात बच्चे को केवल माँ का दूध ही देना चाहिए। उसे शहद, पानी, घुट्टी या अन्य कोई पेय या खाद्य पदार्थ बिल्कुल नहीं देना चाहिए। ऐसा करने से नवजात शिशु बीमार हो सकता है।
2: स्तनपान कराते समय मास्क तथा सैनिटाइजर या साबुन और पानी से हाथ की धुलाई जैसी कोविड उपयुक्त व्यवहारों का पालन करना मत भूलिएगा।
3: संक्रमित माता भी अपने बच्चे को स्तनपान करा सकती हैं।
2: स्तनपान संबंधी अधिक जानकारी आप आशा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या नर्स दीदी से प्राप्त कर सकते हैं।
3: जब होगी सही देखभाल तभी तो आएगी खुशियां बेमिसाल।
2: शिशु की सही देखभाल से फर
3: पड़ता है। यूनिसेफ के सहयोग से सुनो शारदा 90.8 FM द्वारा जनहित में जारी।
4: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: mixing in the house.
1: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: स्मार्ट के सौजन्य से प्रोजेक्ट सेहत सही लाभ कई में आपका स्वागत है। इसका उद्देश्य है आपको स्वस्थ रखना और आपकी उन्नति प्रगति और खुशहाली में योगदान देना। यह एक विशेष सामुदायिक रेडियो पहल है जिसके अंतर्गत हमारा उद्देश्य है समुदाय तक सही और सटीक जानकारी पहुंचाना। तो आइए हाथ मिलाएं और सरकार द्वारा की गई इस पहल को सफल बनाएं।
1: नमस्कार श्रोताओं, हमारे साथ है डॉक्टर कालिंदी और जानते हैं हम उनसे कि इस बदलते मौसम में अपनी सेहत का बचाव कैसे कर सकते हैं।
2: हेलो, मैं हूं डॉक्टर कालिंदी सूद, सीनियर रेसिडेंट इन डिपार्टमेंट ऑफ डर्मेटोलॉजी। मैं आपको बताऊंगी कि आप क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं ड्यूरिंग चेंजिंग वेदर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको थोड़ा स्मार्टली ड्रेस करना है। प्लीज वेयर लेयर्स सो दैट आपको अगर तो ठंड लगती है, यू आर इजीली एबल टू पुट ऑन अ जैकेट। देन स्टे हाइड्रेटेड टू कीप योर स्किन एज वेल एज योर इम्यून सिस्टम हेल्दी। सो प्रॉपर हाइड्रेशन इज इम्पॉर्टेंट। अपने साथ पानी हमेशा कैरी कीजिए। अपनी डाइट का ध्यान दीजिए, इंक्लूड विटामिन सी रिच फ्रूट्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज इस टाइम पे वायरल इन्फेक्शन आर वेरी कॉमन। अपनी इम्यूनिटी का ध्यान रखिए, रेगुलर एक्सरसाइज जरूर कीजिए, वो भी आपकी इम्यूनिटी के लिए इम्पॉर्टेंट है। अपार्ट फ्रॉम दैट, टेक केयर ऑफ योर स्किन, बिकॉज वेदर कभी भी ड्राई हो सकता है। आपको मॉइस्चराइजर जरूर यूज करना चाहिए ऐसे टाइम में। बाहर जाने से पहले हमेशा सनस्क्रीन यूज करें। अगर आपको कोई सीजनल एलर्जीज हो जाती हैं तो इट विल बी बेनिफिशियल कि आप एक एयर प्योरीफायर में भी इन्वेस्ट करें अपने घर में। हाइजीन हमेशा मेंटेन करें। फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। जब आप बाहर होते हैं अपने फेस पे आईज पे कहीं पे भी टच ना करें। अपने साथ एक हैंड सैनिटाइजर रखें एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली गेट एडिक्वेट स्लीप। थैंक यू।
1: तो ये थी हमारे साथ डॉक्टर कालिंदी जिन्होंने हमें बताया कि बदलते मौसम में अपने स्वास्थ्य का बचाव कैसे करें।
0: आप सुन रहे थे स्मार्ट के सौजन्य से हमारा विशेष कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई, जिसका उद्देश्य है आपको स्वस्थ रखना और आपकी उन्नति प्रगति और खुशहाली में योगदान देना। तो आइए इस मुहिम को सफल बनाएं

0: नमस्कार, मैं श्रुति कीर्ति वर्मा, जिला मलेरिया अधिकारी गौतम बुद्ध नगर। आज मैं सामुदायिक रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM के माध्यम से जागरूक करने के लिए फाइलेरिया के विषय पर बात कर रही हूँ। फाइलेरिया एक मच्छर जनित बीमारी है जिसे क्यूलेक्स मच्छर के काटने पर यह बीमारी फैलती है। इसके लिए जो है एक पैरासाइट जिम्मेदार होता है, निमेटोड है, वो बेसिकली वाउचेरिया ब्रोंकफ्टाई, जिसको ये कैरियर के रूप में मच्छर जो क्यूलेक्स काम करता है। और ये संक्रमित मच्छर अगर किसी स्वस्थ मनुष्य को काटता है तो ये फाइलेरिया रोग हो जाता है। इसके बचाव के लिए बहुत ज़रूरी है, पहले तो मैं ये बताऊँगी कि इसके लक्षण क्या होते हैं। अगर ये मच्छर किसी को काटता है तो पहली बात तो ये तुरंत इसके लक्षण प्रकट नहीं होते हैं, काफ़ी सालों के बाद में, लगभग 4 से 5 साल, कभी इससे भी ज़्यादा लंबा पीरियड लग जाता है, 7 ईयर्स भी कभी कभी देखने में आया है। तो काफ़ी सालों के बाद ये केसेस रिपोर्ट होते हैं। और हाथी पाँव, जैसा कि आप लोगों ने देखा भी होगा कि पैरों में सूजन, लिम्फ नोड्स से प्रभावित हो जाते हैं, एलिफेंटियासिस की तरह इस तरह की बीमारियां देखने में आती हैं। तो हमें करना ये है कि हमें, अगर हम जितना बच सके मच्छरों से बचाव के लिए हमें कोशिश करनी होगी। जैसे डेंगू और मलेरिया का हम जागरूकता अभियान करते हैं, उसी तरह से हमें फाइलेरिया के लिए भी बचाव के लिए आप मच्छरदानी का प्रयोग कर सकते हैं। डिफरेंट तरह के आजकल मार्केट में कॉयल्स आते हैं, उनका भी यूज़ कर सकते हैं, नीम का तेल लगा सकते हैं। और बहुत अच्छा है कि कहीं भी अगर पानी स्टोर है तो अपने घरों के आसपास, अगर आप अपने घर में भी साफ़ सफाई रखते हैं, पानी कहीं भी जमा ना होने दें। ये हमें विशेष रूप से इस तरह की सावधानी लेकर के चलनी है। बेसिकली पाया ये जाता है कि जैसे बारिश स्टार्ट होती है और हमारा मलेरिया विभाग, हमारे मुख्य चिकित्सा अधिकारी, हमारे जिला अधिकारी, हमारा पूरा प्रशासन और ख़ास करके हमारा पूरा मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय, इन सब चीज़ों के लिए हम लोग लगातार अवेयरनेस कैंपेन चलाते रहते हैं कि बारिश के बाद जो पानी इकट्ठा होता है सड़कों पर, घरों के आसपास, छत के ऊपर, कई बार कंटेनर्स, खास करके जो शहरी इलाके हैं उनमें बहुत छोटे छोटे जो हमारे स्थान होते हैं उनमें पानी भर जाता है, तो हमें ऐसे पानी को वहां से निकालना है। और अगर ऐसा पानी अगर हम नहीं निकाल सकते हैं तो वहां पर हमें एंटी लार्वा का छिड़काव भी करवाना है। तो नगर निगम, हमारे यहाँ नोएडा अथॉरिटी, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी, इन सब चीज़ों पर सक्रिय रहते हैं। मलेरिया विभाग भी लगातार छिड़काव और फॉगिंग की व्यवस्था भी करता है। और अगर हम व्यक्तिगत स्तर पर बात करें तो इन जगहों पे हम डीजल और केरोसिन का यूज़ कर सकते हैं, जला हुआ मोबिल ऑयल ऑयल और जला हुआ डीजल का भी प्रयोग करके हम लार्वा को रोक सकते हैं। मेरा आप लोगों से आग्रह है, क्योंकि चाहे डेंगू का एडीज मच्छर हो, मलेरिया का एनाफिलीज हो या क्यूलेक्स हो, हमें इनकी ब्रीडिंग ही स्टॉप करके हम बीमारियों के संक्रमण को रोक सकते हैं। धन्यवाद।
1: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम। सुनो
1: शारदा। नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं आज आपसे टीबी की बात करने आया हूँ। टीबी का पूरा और पक्का इलाज है, लेकिन इलाज में रुकावट करने से टीबी की दवा मरीज पर असर करना बंद कर देती है, इसलिए ड्रग रेसिस्टेंट टीबी की जांच करना आवश्यक है। DRTB की जांच आधुनिक मशीन CBNAT के द्वारा सरकारी और नोटिफाइड प्राइवेट टीबी मरीजों के लिए मुफ्त उपलब्ध है। इस जांच की रिपोर्ट केवल 2 घंटे में दी जाती है, जिससे DRTB और उसके सही उपचार का जल्द पता चल जाता है। आइए मिलकर भारत को टीबी मुक्त बनाएं।
2: अधिक जानकारी के लिए 1-800-11-6666 पर संपर्क करें।
3: टीबी हारेगा देश जीतेगा।
4: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
5: बिल्कुल सोचा है पापा।
4: क्या सोचा है?
5: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन VFX गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
4: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
5: जी पापा।
4: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
5: हाँ पापा बिल्कुल।
6: The programs under

फोटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।